FMN 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: FM 91.2 MHz पर ये आकाशवाणी खंडवा है। सुबह के 6 बजे हैं, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

अभी आपने सुना संवेद स्वर में देशगान। इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। लीजिए अब सुनिए हरिहरन के स्वर में भक्ति रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
2: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
1: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
0: जी हाँ, इस समय आप हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा के साथ। अब सुनिए चिंतन। आलेख है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन का, वाचक स्वर रवि सोनी का है।
3: मनुष्य के लिए एक ऐसा बंधन है जिसे वो स्वयं अपनाता है, और ये बंधन है मर्यादा का। हमारा जीवन मर्यादित होना चाहिए। मर्यादा बंधन नहीं बल्कि विकास का सोपान है। मर्यादा सृष्टि का आधार है, मर्यादा दृष्टि का आकार है। यदि जीवन में मर्यादा है तो जीवन रूपी उपवन लहलहाता है, और यदि जीवन मर्यादाहीन है तो जीवन वीरान नजर आता है। जिस मनुष्य जीवन में मर्यादा होती है वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है। मर्यादित जीवन जीने के लिए सरलता होना आवश्यक है। सरलता का एक नाम ऋजुता और दूसरा नाम अर्जव होता है। सरलता वहीं होती है जहाँ कुटिलता का अभाव होता है। कुटिलता कठिनाई पैदा करती है। कठिनाई से कार्य असंभव जैसे प्रतीत होने लगते हैं, और हमारी प्रतीति, हमारा विश्वास दूसरों से तो क्या, अपने आप से भी डगमगाने लगता है। यह डगमगाने का मार्ग ही अनियमित जीवन है जो अनेक कुटिलताओं से भरा हुआ है। मुझे संसार में आगे बढ़ना है, यदि मेरा ऐसा संकल्प है तो क्यों न मैं कुटिलताओं से बचूं? आर्जव की विरोधी माया है जो स्वयं को ठगती है और दूसरों को ठगने के लिए प्रेरित करती है। मैं इस माया के बंधन को तोड़ना चाहता हूं ताकि छल कपट के घृणित व्यवहार से स्वयं को मुक्त कर सकूं। मेरा यह सोचा हुआ विचार तभी फलीभूत हो सकता है जबकि मैं सरलता को अपना लूं। तो लीजिए, मैं छल कपट के बंधन को काटता हूं और सरलता के भाव को अपनाता हूं। मेरा यही संकल्प है, मेरी यही सरलता है, मेरी यही मर्यादा है। मर्यादित जीवन की पहली शर्त सरलता है तो दूसरी शर्त सदाचार। जिस मनुष्य का आचरण पवित्र होता है उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। सदाचारी पुरुष का समाज में सम्मान होता है। वो अपनी दृष्टि में भी यही होता है और आत्मघृणा से बचा रहता है। जो लोग सदाचार रूपी श्रेष्ठ मार्ग से अपने आप को अलग कर लेते हैं वे अपने जीवन में अपयश और अपमान को आमंत्रित करते हैं। सदाचार सुख संपत्ति का बीज होता है जिससे सुफल की प्राप्ति होती है। कदाचरण या दुराचरण अनेकानेक आपत्तियों विपत्तियों को उत्पन्न करता है। अतः अपने आचरण की देखरेख करना, उसमें विवेक को सम्मिलित करना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। ये सदाचरण ही नैतिकता की पुस्तक का प्रथम वर्ण, प्रथम पद, प्रथम पृष्ठ और प्रथम अध्याय समझना चाहिए। संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही है जिसने सदाचार को अपनाया है। मर्यादित जीवन की तीसरी शर्त है कृतज्ञता। दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को मानना कृतज्ञता कहलाती है। इसमें मनुष्य की लघुता छिपी होती है जो किसी बड़प्पन से कम नहीं होती। किसी के उपकार को भूल जाना या किसी के प्रति अपकार करना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अतः संकल्प होना चाहिए कि ना हम किसी के उपकार को भूलेंगे और ना ही किसी का अपकार करेंगे। वे लोग बड़े अभागे समझे जाते हैं जो किए हुए उपकार को नहीं मानते। हमारी परंपराओं में तो जन्म जन्मांतर तक उपकार को मानने की बात कही जाती है। यहाँ ये भी संभव है कि कोई हमारी भलाई के बदले बुराई करे। ऐसे ही लोगों के लिए कुपित होने से बचने के लिए कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल। ऐसे लोगों के विषय में न तो विवाद की आवश्यकता है न विसंवाद की, क्योंकि हमारे समय जो है वो मूल्यवान है, हम उसे व्यर्थ क्यों खोएं। मर्यादित जीवन की तीन शर्तें सरलता, सदाचार और कृतज्ञता ठीक उसी तरह से हैं जैसे सूर्य के साथ प्रकाश का संबंध होता है, बादलों के साथ बिजली का संबंध होता है, चंद्रमा के साथ चांदनी का संबंध होता है, जल के साथ शीतलता और भाग्य के साथ पुरुषार्थ का संबंध। इसलिए हम अपने जीवन में कभी भी कहीं भी अमर्यादित न हों। जीवन का संबंध मर्यादा से बनाएं तो विकास के मार्ग से हमको कोई भी विचलित नहीं कर सकता।

ये था आज का चिंतन। आलेख था डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन का, वाचक स्वर रवि सोनी का। FM में 101.2 MHz पर इस समय आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान।

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।

0: 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं निर्माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 6:45 हुए। अब सुनिए कृषि चर्चा। जैविक खाद से अतिरिक्त आय, वाचक स्वर है तरुणा शुक्ला का।
1: किसान भाई बहनों राम राम। आज की कृषि चर्चा को विषय छे जैविक खाद से अतिरिक्त आय, वाचक स्वर तरुणा शुक्ला को। भाई बहनों, हमारा कुछ किसान भाई खेती का साथ साथ जैविक खाद बने न अतिरिक्त आय अर्जित करे। जैविक खाद का अंतर्गत कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, बीजामृत न बायोगैस स्लरी हम बने सकें। कंपोस्ट खाद रसोई का कचरा, गोबर, पत्ती न जैविक पदार्थ न मिले न बनाई जाए। वर्मी कंपोस्ट बनावना काले केचुआ न को उपयोग करे जाए। ये केचुआ जैविक कचरा का खाद में बदली रहे न यह खाद बहुत पौष्टिक हो, एकी मांग भी अधिक रहे। वर्मी कंपोस्ट बनावना काले केचुआ की आइसिनिया फेटिडा प्रजाति बहुत उपयुक्त मानी जाए। वर्मी कंपोस्ट बनावना काले सबसे

0: कालेन केचुआ ना को उपयोग करे जाए। ये केचुआ जैविक कचरा का खाद में बदली रहे, नया खाद बहुत पौष्टिक हो, एक ही मांग भी अधिक रहे। वर्मी कंपोस्ट बनावना कालेन केचुआ की आइसिनिया फेटिडा प्रजाति बहुत उपयुक्त मानी जाए। वर्मी कंपोस्ट बनावना कालेन सबसे पहला ताजो गोबर की जरूरत रहे। यो गोबर 7 दिन से अधिक पुरानो नहीं होना चाहिए। इना गोबर को 1 फीट ऊंचो ढेर हम बना सका, ज्यादा ऊंचो ढेर भी नहीं होना चाहिए। न गोबर की खाद गीली नम करी ना ओका अंदर केचुआ डाली दिया जाए। केचुआ जमीन में नहीं जाता, वो खाद का खाए, उनको भोजन खाद मज रहे। वर्मी कंपोस्ट बनाना कालेन 4 फीट चौड़ाई की जगह चाहिए, या तो सादो बेड बनाई सका या फिर थोड़ी सी ऊंचाई हम करी सका न ओका बाद ओका में गोबर की लंबी लेंथ बनाई सका। 4 फीट चौड़ाई 10 फीट लंबो होनु चाहिए। अपना हिसाब से हम जितनी जगह लेनु चाह लंबाई की उतनी ले सका, लेकिन चौड़ाई जो चे वो 4 फीट रखनु जरूरी रहे। बेड बनाना का बाद ओम गोबर भरी दिए जाए न ठंडा करना का बाद ओम वर्म यानी की केचुआ डाला जाए। वर्म डालना का बाद करीबन 2 से 2.5-3 महीना में खाद तैयार हो जाए। केचुआ डालना की मात्रा की यदि हम बात करा तो वर्म डालने के लिए 1 फीट बाय 4 फीट यानी 1 किलो से 2 किलो, यदि 10 फीट बेड छे आपका पास तो ओम 10 किलो वर्म आपका लगेगा, नहीं यदि 20 फीट को बेड छे तो ओम 20 किलो वर्म लगेगा। पहले शुरुआत में केवल 1 फीट पर 1 किलो का हिसाब से हमको केचुआ डालना पड़े। वर्म तो एनजीओ या आत्मा विभाग से आप केचुआ ले सको। एक बार केचुआ डालने का बाद वापस आपका केचुआ खरीदनु नहीं पड़ता, ओम केचुआ अपना आप बढ़ता जाए। वर्मी कंपोस्ट जब हम बनावा तो बेड का एक साइड ढलान टाइप बनानु पड़े न उन्हें ढलान में आखिरी में एक गड्ढो करी देनु जेमे वर्मी वाश तैयार हो जाए। यो वर्मी वाश भी बहुत अधिक लाभदायक रहे, खाद का रूप में हम काम में ले पाए। वर्मी वाश का हम स्प्रे भी करी सकें पौधा का ऊपर। वर्मी कंपोस्ट 2-3 महीना में तैयार हो जाए। वर्मी कंपोस्ट खाद खेत में तब डालनु चाहिए जब जमीन में नमी हो। नमी बनेल रहेगा तो वर्मी कंपोस्ट डालने का बाद ओमा जो बैक्टीरिया रहे वो गर्म कर दे, जमीन में भी वो काम करनु चालू कर दे। यदि आपने एक गर्म जमीन में डाल दियो तो गर्मी से वर्म मरी जाए न फिर ऐसी खाद उपयोगी नहीं रहती। एकालेन जब भी वर्मी कंपोस्ट खेत में डालो तो इन बात को ध्यान रखना चाहिए कि जमीन में नमी होनी चाहिए, तब हमको को लाभ मिलेगा। एक अलावा जैविक खाद में जीवामृत भी बनाया जाए। जीवामृत बनाने का लिए 10 किलो गोबर 10 किलो गोमूत्र 2 किलो गुड़ 2 किलो बेसन न 2 किलो बड़ का नीचे की मिट्टी ली जाए न इन्हें 5 चीज नखा 200 लीटर पानी में मिले न डाले जाए न रोज घुमावनो पड़े। अगर हम रोज घुमावांगा तमज उमर जो बैक्टीरिया छे वो अच्छा से काम करेगा। ओका बाद 7 दिन तक बेलर का ढकी न रखी देनु पड़े। 7 दिन का बाद जीवामृत तैयार हो जाए। 7 दिन बाद हम इन जीवामृत का खेत में फसल में डाली सकें। जीवामृत को दवाई का रूप में भी काम में लिया जाए न खाद का रूप में भी ओको उपयोग करी सकें। फाइव नोट वर्मी कंपोस्ट छानी न छाया में रखनु चाहिए न फिर बोरी में भरी न 6 महीना तक भी हम ओका सुरक्षित रखी सकें। लेकिन जीवामृत जो छे वो 7 दिन बाद तैयार हो न 7 दिन का बाद तुरंत ओका उपयोग में लेनु चाहिए। बायोगैस संयंत्र बनाना का लेन आप शासन की योजना को लाभ ले सको। बायोगैस संयंत्र बनाने वाला मिस्त्री रहे वो उनका हिसाब से बायोगैस संयंत्र बनाना आपका देगा। बायोगैस संयंत्र बनाने का बाद आप रोज 20-25 किलो गोबर डालता रहो। बायोगैस संयंत्र से हमारा रसोई बनाने का लेन गैस भी मिली जाए हमका न उमा जो गर्मी रहे ओका से स्लरी भी बहुत अच्छा से तैयार हो। हम इन्हें बायोगैस स्लरी का डायरेक्ट खेत में भी डाली सकें। बायोगैस स्लरी का भी सुखाने का बाद हम लंबा समय तक सुरक्षित रखी सकें। जैविक खाद बने न हम अच्छो आर्थिक लाभ ले सकें। अपनी फसल न की पूर्ति का लेन हम उन्हीं खाद को उपयोग कर सकें न यदि खाद अधिक मात्रा में बनी रहे ओखा आप बेच सको। एका अलावा आप दूसरा किसान भाई न का ट्रेनिंग देना न भी अतिरिक्त आय ले सको। बहुत ज्यादा मात्रा में आपका पास जैविक खाद बनी रहे तो उन्हीं जैविक खाद का आप छोटा पैकेट बने न शहर का ग्राहक न कभी बेच सको न जैविक खाद से अतिरिक्त आय कमाई सको। आज की कृषि चर्चा में बस इतना ही। राम राम।
1: अभी आपने सुनी कृषि चर्चा, जैविक खाद से अतिरिक्त आय। वाचक स्वर था तरुणा शुक्ला का। आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत जल की हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की

अब से कुछ ही देर में 7 बजे विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता, हस्तशिल्प से रोजगार। जानकारी देंगे बांस कला केंद्र गुलाईमाल संचालक मोहन रोकड़े और इनसे बातचीत की है श्वेता सोनी ने। सात बजकर 20 मिनट पर स्वास्थ्य कार्यक्रम चेतना में आज आप सुनेंगे थायराइड रोग के कारण, लक्षण एवं उपचार। इस विषय पर भेंटवार्ता, जानकारी देंगे डॉक्टर बीपी मिश्रा और इनसे बातचीत की है श्वेता सोनी ने। सदाबहार नगमे सुनेगा सुनहरे पल कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर।

सुबह 8:15 पर सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे सोनू निगम के गाए नगमे। फरमाइशी फिल्मी नगमे सुनेगा सुबह 8:30 पर। कार्यक्रम है आपके मीत ये गीत। सुबह 9 से लेकर 10 तक हम अनुप्रसारित करेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम। दस बजे जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। दस बजकर 5 पर एक बार फिर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का।

निमाड़ी लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 10:20 पर और शाम 5:30 पर। दस बजकर 35 पर सुनेगा कोपल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे स्थल रिकॉर्डिंग के अंतर्गत नृत्य एवं संगीत ग्रीष्मकालीन शिविर के बच्चों से बातचीत।

0: दिन में 11 बजे से लेकर शाम 5:30 तक आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
1: इस रविवार सुबह 7 बजे हमारे श्रोता कार्यक्रम में आपकी मुलाकात होगी।
2: समय बड़ा बलवान है। हाँ। जिसने को समय को पहचाना वो समय के साथ चला और कभी तकलीफ नहीं हुई है।
1: हमारे खंडवा के नियमित श्रोता भूपेंद्र सिंह कुकरेजा यानी मिंटू भाई से, तो सुनना ना भूलिएगा रविवार 24 मई समय सुबह 7 बजे कार्यक्रम हमारे श्रोता।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विवरण। शाम 6 बजे युवाणी कार्यक्रम में आज का आकर्षण होगा क्रम साप्ताहिक विज्ञान एवं खेल गतिविधियां। सात बजकर 21 मिनट पर किसान वाणी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता नींबू की किस्मों का चयन, जानकारी देंगे पुष्पेंद्र मौर्य और इनसे बातचीत की है सीमा कराहे ने। रात्रि 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम। ये थी जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।
3: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।

गैस अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। समिति में महापौर, जनपद पंचायत अध्यक्ष, निगम आयुक्त, सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जनपद पंचायत के सीईओ और जिला शिक्षा अधिकारी को भी सदस्य बनाया गया है। शहर में ईद उल जुहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। शहर काजी सैयद निसार अली ने शहर में 28 मई को बकरीद मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ईद उल जुहा पर ईदगाह मैदान सहित 40 से अधिक मस्जिदों में नमाज अदा होगी। रबी सीजन में जिले के 67 उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का आंकड़ा लगभग 2 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। जिले में गेहूं बेचने के लिए 35,502 किसानों ने पंजीयन कराया है, लेकिन इनमें से अब तक केवल 21,102 किसानों का ही उपार्जन हो सका है।

मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों को कैशलेस आयुष चिकित्सा का लाभ दिया जाएगा। यह श्रमिकों के स्वास्थ्य कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है। भोपाल के मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास और तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री की उपस्थिति में यह महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर आदान प्रदान किया गया।

0: अब खबर है कि कल आईपीएल मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रनों से हराया। आज का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट्स और पंजाब किंग्स के बीच श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। एक नजर मौसम के हाल पर। शहर में तेज गर्मी और लू का असर लगातार बना हुआ है। खंडवा में कल दिन का अधिकतम तापमान रहा 42 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान रहा 24 डिग्री सेल्सियस। ये थे समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। संकलन पीयूष कातोरे का।
1: आज की ताजा खबर।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।

0: जी
1: तो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में हम जाएंगे तो बहुत सारी हस्तशिल्प कला हमें देखने को मिलती है, और हस्तशिल्प कला की अब वापस मांग होने लगी है। लेकिन उसके अपेक्षा हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिन लोगों के पास ये हस्तशिल्प कला थी, जो एक पीढ़ी ने संजो कर रखी हुई थी, वो धीरे धीरे वो पीढ़ी विलुप्त होती जा रही है, और जो नई जनरेशन आ रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, और उसे विशेष रूप से ग्रामीण जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जिनका घर में बहुत सारे लोगों का हस्तशिल्प कला में पितृक काम था, वो दीदियाँ भी कहीं ना कहीं इस काम को समझती है कि हम अब पढ़ लिख लग गए हैं, इस काम को हम कैसे करेंगे, ये तो हमारे दादा परदादा या दादियाँ करती थी, हम कैसे
0: जी
1: कर सकते हैं। तो उस तरफ लोगों का ध्यान नहीं है, लेकिन वर्तमान में हस्तशिल्प कला जो है उसकी काफ़ी मांग हो रही है, इसका बहुत बड़ा बाजार है, और बाजार सिर्फ इंडिया स्तर पे नहीं है, विश्व स्तर पर जो भारत के लोगों के द्वारा जो हस्तशिल्प कलाएं बनाई जाती है, उसको भारत को छोड़ के अन्य देशों में भी उसकी मांग होने लगी।
0: जी
1: हस्तशिल्प कला में हम देख सकते हैं कि लकड़ी के खिलौने बनाने का काम, बांस से बहुत सारी सुंदर चीज़ें बनाने का काम, मूर्ति बनाने का काम हो गया, जरी का काम हो गया, जूट से बनाने का काम हो गया, खिलौने बनाने का काम हो गया, ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे हस्तशिल्प कला का काम है कि जिसको महिलाएं घर में करके, इसके लिए कहीं आपको किसी की दुकान पे जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी फैक्ट्री में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद घर पे रॉ मटेरियल लाकर बनाकर और इसको बेच सकती है और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती हैं।
0: सर, आपने जैसे बताया कि हस्तशिल्प कला विलुप्त होती जा रही है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही आता है कि जिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि हम कहाँ से हस्तशिल्प कला के बारे में सीख सकते हैं, उसका काम ले सकते हैं, तो उन्हें जानकारी कहाँ से और कैसे प्राप्त हो सकती है?
1: जी, भारत सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। स्वयं सहायता समूह, जो सभी हमारी दीदियां इस समूह को जानती भी है,
0: जी
1: इनका समय समय पर ग्रामीण स्तर पर और शहर स्तर पर प्रशिक्षण भी होता है। जैसे कि हमारा खुद का सेंटर है, भारत सरकार की स्मृति योजना के तहत बांस कला केंद्र जो हम 2020 से चला रहे हैं, यहाँ हम लोगों ने भी एक बांस कला आजीविका स्वयं सहायता समूह दीदियों का बनाया गया है। ये दीदियों को हम समय समय पर ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिलाते हैं, और दीदियाँ फिर बांस का सामान बना रही है और वो सामान हमारा बिक रहा है। जो दीदियाँ वहाँ नहीं आ पाती, हम कच्चा माल अपने सेंटर से उन्हें दे देते हैं, वो घर पे तैयार करती है और आके सामान जमा कर देती है, और उसके एवज में हमको पैसा दे रहे हैं। तो इसके लिए आप जनपद स्तर पर हमारे जनपद सीओ से, महिला बाल विकास अधिकारी से, जिला स्तर पर जिला पंचायत सीओ से, या NRLM का स्वयं सहायता समूह का जिला स्तर पर भी ऑफिस होता है, आप वहाँ भी जा सकती है और खुद का अपना समूह बनाकर, अकेले नहीं करना चाहे, समूह बनाकर भी आप काम कर सकती है। प्रशिक्षण लेना चाहें तो ये प्रशिक्षण भी समय समय पर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर आयोजित करते हैं, लेकिन इसके लिए तय स्वयं महिलाओं को ही करना होगा, दीदियों को करना होगा कि हम किस प्रकार का क्राफ्ट बनाने जा रहे हैं, हम किस प्रकार की हस्तशिल्प कला को करने जा रहे हैं। कोशिश हम ये करें कि हमारे घर में, हमारे गांव में जो पैतृक हस्तशिल्प कला थी, जो लगता है कि अब ये मार्केट में शायद इसको कोई नहीं पसंद करेगा, लेकिन दौर ऐसा आ गया कि जो चीज़ दफन हो चुकी है, या जो चीज़ दब चुकी है, या जो चीज़ खत्म हो गई है, मार्केट अब उसी चीज़ की मांग कर रहा है। तो हमें आधुनिक दुनिया की ओर नई चीज़ों को देखते हुए या जो नए क्राफ्ट थे उधर नहीं जाना चाहिए, हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं हमको वहां से उनसे सीख के और उसको आगे बढ़ाना चाहिए।
0: अगर किसी ने शुरू भी कर दिया है काम, तो कई बार मन में संशय होता है कि इससे हमें आमदनी किस तरह से होगी, तो आर्थिक रूप से किस तरह से सक्षम बनाती है हस्तशिल्प कला?
1: ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारी दीदियां व्यवसाय तो प्रारंभ करती है बना, लेकिन एक दौर के बाद वो बंद हो जाता है, वो हार जाती है। जिस भी उत्पाद को बना रहे हैं उसको बनाने से पहले हमको मार्केट देखना पड़ेगा कि हम जो क्राफ्ट बना रहे हैं या हस्तशिल्प बना रहे हैं, इसकी बाजार में मांग क्या है, क्या इस प्रकार का क्राफ्ट बाजार में बिक रहा है, बिक रहा है तो उसकी लागत क्या है, क्या उसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, या उसमें कुछ नया चाह रहे हैं, कौन इसको खरीदने वाला है, कितने में खरीद रहा है, ये बनाने से पहले उस क्राफ्ट के बारे में हमको बाजार को रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करने के बाद फिर हम लोगों को उस क्राफ्ट को बनाना पड़ेगा। अधिकांश व्यवसाय या अधिकांश जो क्राफ्ट बनाने के बाद फेल इसलिए हो जाता है कि हम बाजार को पहले माप नहीं पाते, बाजार के बारे में हम जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, और कभी कभी होता है कि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो ऑलरेडी बाजार में बिक रहा है, हम शायद उस चीज़ को 10 रुपये में बेच रहे हैं लेकिन बाजार में 5 रुपये में बिक रहा है। इस कारण से कई बार दीदियाँ जो अपना व्यवसाय प्रारंभ करती है उसका फेल होने का या सफल होने का मुख्य कारण यही रहता है कि हम बाजार का अध्ययन नहीं कर पाते। यदि हम प्रॉपर बाजार का अध्ययन करके और फिर हम क्राफ्ट बनाए, उस पर फिर हम हमारी

0: साइट से बिक रही है और वो एक बड़े बड़े कंपनी वाले लोग बेच रहे हैं,
1: जी
0: जबकि वो सामान हमारे गांव में या जो वस्तुएं हमारे गांव में निःशुल्क रूप में पड़ी हुई है उस वो बेच रही है। तो दीदियाँ इस तरफ भी पहल करें कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर कैसे बेचें क्या बेचें, उसके लिए NRLM स्वयं सहायता समूह की मदद करता है, दीदियों को ट्रेनिंग करवाता है। तो वो एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल विश्व स्तर का प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी अपने वो उत्पाद को रख के बेच के और आर्थिक रूप से वो संपन्न हो सकती है।
1: हस्तशिल्प कला में बाजार का क्या महत्व है?
0: बाजार का महत्व यह है कि हम जो बना रहे हैं उसका सबसे बड़ा मार्केट तो बाजार ही है जहाँ वो बिकेगा।
1: जी
0: अब बाजार में इसकी मांग भी बहुत है हैंडीक्राफ्ट की, लेकिन सवाल यह है कि लोगों को पता नहीं कि मिलेगा कहाँ पे।
1: जी
0: तो पहले से हमको बाजार ढूंढने की इसलिए आवश्यकता है कि कहाँ कहाँ क्राफ्ट का सामान बिकता है ज़्यादा, ये देखने की आवश्यकता है। किस शहर में लोग क्राफ्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन सा ऐसा दुकानदार है जो होलसेल में क्राफ्ट को बेचता है। तो हस्तशिल्प कला में बाजार का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। बहुत सारे गिफ्ट हाउस ऐसी दुकानें हैं जहाँ सबसे ज़्यादा क्राफ्ट का सामान रहता है। आजकल बड़ी बड़ी सिटियों में क्राफ्ट की स्पेशली दुकानें हैं कि वहाँ सिर्फ हस्तशिल्प बनी हुई वस्तु ही मिलती है।
1: जी
0: तो बाजार का इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व हो जाता है कि हम पहले से जाके ये तय कर लें कि ऐसे कहाँ का कौन कौन सी सिटियों में इस प्रकार के क्राफ्ट सेल की दुकानें हैं जहां हम यदि संपर्क करते हैं और वहां से हमको ऑर्डर मिलता है बल्क में तो हम बनाकर दे सकते हैं।
1: जी
0: तो बाजार एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी उत्पाद को बनाने से पहले बेचने के लिए उसके बारे में जानकारी लेना। इसमें योग्यता की तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हस्तशिल्प कला है तो हमें इसमें पढ़ा लिखा होना कोई आवश्यकता नहीं, ये हाथ से बनाना है, इंसान देख कर बना रहा है, देख कर सीख रहा है और हाथ से बना रहा है। तो इसमें किसी प्रकार की एजुकेशन की कि भाई इतना ही पढ़ा लिखा होना जरूरी है ये कोई ऐसी इसमें बाध्यता नहीं है। जो दीदियां हैं जो भले ही कभी स्कूल नहीं गई हो या 5वीं तक पढ़ी हो 8वीं तक पढ़ी, जिनको पढ़ना नहीं आ रहा और लिखना नहीं आ रहा है वो दीदी भी इसको आसानी से सीख सकती है। और देश दुनिया में से कई दीदियों के उदाहरण हैं जिन्होंने एक छोटे से स्तर पर घर पर ऐसा अपना व्यवसाय प्रारंभ किया है और आज बड़ी बड़ी कंपनियां बनाकर देश दुनिया में उनके द्वारा बनाए गए क्राफ्ट का आइटम बिक रहा है। तो एक साधारण सी दीदियाँ भी बस आवश्यकता है कि आपके अंदर एक संकल्प होना चाहिए, आपके अंदर एक साहस होना चाहिए, आपके अंदर कुछ करने का जुनून होना चाहिए, बस इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है। बाकी इससे एजुकेशन का कोई नाता रिश्ता नहीं है क्योंकि हमारे बांस कला के अंदर में जो बांस कला आजीविका स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ हैं वो सभी जनजाति समाज की दीदियाँ हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन बांस के बहुत सुंदर सुंदर से आज आर्टिकल बनाकर वो आर्थिक रूप से संपन्न हो रही है।
1: जी सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी इस विषय पर, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
2: अभी विशेष कार्यक्रम में आपने सुनी भेंटवार्ता हस्तशिल्प से रोजगार, जानकारी दे रहे थे मोहन रोकड़े।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 47 शहरों में एक साथ

0: होगा आयोजन। देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त, पेट्रोलियम मंत्रालय की लोगों से अपील, खपराहट में ईंधन न खरीदें। भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का हुआ आयोजन, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा जीडीपी का आधा हिस्सा जैव विविधता से जुड़ा। और त्विशा शर्मा मौत मामले में पति समर सिंह ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित होगा। चुने गए युवा रेल, गृह, स्वास्थ्य और वित्त समेत कई सरकारी विभागों में काम संभालेंगे। श्री मोदी इस मौके पर युवाओं को संबोधित भी करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त और स्थिर है। कुछ जगहों पर अस्थायी दबाव को तेल कंपनियां निगरानी और समन्वय से दूर कर रही हैं। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में ईंधन न खरीदें और केवल जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करें। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कल भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट हुआ। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की जीडीपी का आधे से अधिक हिस्सा जैव विविधता से जुड़ा है और इसे बचाना जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के आसपास वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे ताकि घायल जानवरों को भोपाल न लाना पड़े।
1: तो हमारा कान्हा वैसे तो दुनिया का सबसे बढ़िया टाइगर रिजर्व के रूप में उसको नंबर वन का स्थान मिला है और उसकी नई शोभा बढ़ गई। हम अपने जंगली बफेलो को लेकर के वहाँ आज एक अलग प्रकार के दौर में पहुंचे। प्राणी जिनके कारण से जंगल की शोभा बढ़ती है वो सब हमारे यहाँ होना चाहिए। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर भी तीनों साल तीसरा साल चल रहा है अपने प्रदेश भर के अंदर इसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने दोनों मंत्रालयों में 10-10 अधिकारियों की टीम बनाने का निर्देश दिया जो नागरिकों की शिकायतों की भी रोज समीक्षा करेगी। बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में AI और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर जनता के सुझाव लेने के लिए कल ucc.mp.gov.in नाम से वेबसाइट लॉन्च की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में इस वेबसाइट का विमोचन किया। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और भरण पोषण जैसे पारिवारिक कानूनों पर 15 जून 2026 तक सुझाव दिए जा सकते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मॉडल और एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में उसका पति समर्थ सिंह कल शाम जबलपुर जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। त्विशा की मौत के बाद से वो फरार था। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत न मिलने के बाद उसने आत्मसमर्पण किया। वहीं दूसरी तरफ कल हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए त्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स से कराने का आदेश दिया है। त्विशा की 12 मई को संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को भी सौंप दी है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एनटीए की विशेषज्ञ मनीषा हवलदार को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, पुणे, लातूर समेत कई शहरों में कुल 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई ने लातूर के 2 डॉक्टरों से भी पूछताछ की है। इन पर बच्चों के लिए लीक पेपर खरीदने का संदेह है। जांच में और अभिभावकों, छात्रों, बिचौलियों के नाम सामने आने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि ड्रोन से पेट्रोलिंग के जरिए बिजली लाइन ट्रिपिंग 35% कम हुई है। वहीं समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं के 473 करोड़ रुपए के सरचार्ज माफ कर दिए गए हैं और 40 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। बालाघाट की सांदीपनी विद्यालय वारासिवनी के 12वीं के छात्र मयंक मात्रे ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रतियोगिता में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है।

15 मई को जूम पर हुए लाइव फाइनल में मयंक ने 155 अंक लेकर ग्रैंड विनर का खिताब जीता। इस जीत के साथ उनका चयन सितंबर 2026 में होने वाले नासा एजुकेशन टूर के लिए हुआ है। इस दौरान वे कैनेडी स्पेस सेंटर समेत कई शैक्षणिक स्थलों का दौरा करेंगे। प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए राज्य सरकार $40,000 यानी करीब 36 लाख रुपए तक की मदद देगी। इसके लिए 25 मई शाम 6 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। योजना के तहत हर साल 20 छात्रों का चयन होता है। इस योजना में आवेदन के लिए परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए और आवेदक किसी भी नौकरी में नहीं होना चाहिए। स्वर्णिम 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल आज शाम 7 बजे रविन्द्र भवन में एक खास संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में पुष्पलता शर्मा लोकगीत और उस्ताद मुनव्वर मासूम कव्वाली पेश करेंगे। वहीं कल इंदौर केंद्र के 71वें स्थापना दिवस पर मालवा हाउस में जबरदस्त जश्न मनाया गया। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इस साल से क्लर्क और स्टोरकीपर पदों के अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट भी ऑनलाइन केंद्र पर ही लिया जाएगा। प्रदेश में राज्यव्यापी गिद्ध गणना कल से शुरू हो गई है। पहले दिन 8,748 स्थानों पर गणना हुई, जिसमें 8,810 गिद्ध मिले। ये गणना 24 मई तक सूर्योदय से सुबह 9 बजे तक चलेगी। इस बार ऑनलाइन ऐप के जरिए गणना हो रही है, जिसमें वन कर्मचारियों के साथ पक्षी विशेषज्ञ, छात्र और स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। प्रदेश में मछली पालन उत्पादन बढ़ाने को लेकर कल भोपाल में हितधारक सम्मेलन हुआ। निवेशकों ने 2 लाख केस लगाने के प्रस्ताव दिए हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य पहले साल सिर्फ 10,000 केस का था। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केस कल्चर के आवेदन की कोई समय सीमा न रखी जाए। सरकार कोल्ड चेन, हैचरी और फिश फील्ड के लिए सब्सिडी देगी। नौतपा शुरू होने से पहले ही प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। कल प्रदेश के 10 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार रहा। नौगांव में गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला, वहां पारा 46.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज 42 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में लू का रेड अलर्ट है। आईपीएल में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रनों से हरा दिया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में आरसीबी 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। आपको समाचार संक्षेप में। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत इंदौर जिले में 25 मई को विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा जिले के ग्राम मामाडोह में कल हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के बाद जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने मामाडोह पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। आगर मालवा जिले के लिए प्रेक्षक कृष्णमोहन गौतम ने कल जिले सहित बड़ौद के विभिन्न वार्डों के मतदान केंद्रों के साथ ही जिले के विभिन्न गांवों का निरीक्षण किया। मंडला में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी है। झाबुआ कलेक्टर ने ग्राम समोई में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब से गाद निकासी कार्यों का निरीक्षण किया। बैतूल कलेक्टर ने कल खोड़ा डूंगरी जनपद पंचायत कार्यालय में बैठक लेकर विभिन्न गांवों में नियुक्त जिला अधिकारियों से ग्रामीण समस्याओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 7:21 हुए हैं। अब चेतना कार्यक्रम में सुनिए भेंटवार्ता, थायराइड रोग के कारण, लक्षण एवं उपचार। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर बीपी मिश्रा और इनसे बातचीत की है श्वेता सोनी ने। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का चेतना कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको स्वास्थ्यगत जानकारी देते हैं और इसी संदर्भ में थायराइड विषय के बारे में जानने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर बीपी मिश्रा को। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार मैडम।
1: सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि थायराइड रोग होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है।
2: जी, थायराइड एक चिकित्सा स्थिति के लिए एक सामान्य शब्द है जो आपके थायराइड को सही मात्रा में हार्मोन बनाने से रोकता है। आमतौर पर थायराइड हार्मोन बनता है जिससे आपका शरीर सामान्य रूप से कार्य करता रहता है। थायराइड रोग दो तरह के होते हैं
1: जी।
2: एक हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा हाइपोथायरॉयडिज्म। जब थायराइड बहुत अधिक हार्मोन बनाता है तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है
1: जी।
2: और जब शरीर बहुत कम थायराइड का हार्मोन बनाता है तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है।
1: सर, आपने दो तरह के थायराइड बताए, लेकिन इस रोग के होने की मुख्य वजह क्या होती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके?
2: कारण में एक तो ऑटोइम्यून डिसीज ही होती है, अपने शरीर के अंदर ही इस तरह की डिसीज हो जाती है
1: जी।
2: जो थायराइड को बनने से रोकता है या बढ़ाता है
1: जी।
2: और हाइपो, जैसे अभी ज्यादातर देखने में आ रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म
1: जी। जी,
2: हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है, बीमारी होती है थायराइडाइटिस
1: जी।
2: ये थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। उस सूजन के कारण जो हार्मोन निकलना चाहिए थायराइड से
1: जी,
2: वो कम मात्रा में निकलता है। दूसरा, जो मैंने आपको पहले बताया, हाशिमोटो थायराइडाइटिस
1: जी,
2: एक दर्द रहित बीमारी होती है और ऑटोइम्यून डिसीज है, जो शरीर की कोशिकाएं थायराइड पर हमला करती है और उसे नुकसान पहुंचाती है। ये एक तरह से अनुवांशिक स्थिति भी। तीसरा, महिलाओं में देखने में आता है पोस्टपार्टम, मतलब डिलीवरी होने के बाद में 5-9% महिलाओं को बच्चे के जन्म के बाद होती है। ये आमतौर पर अस्थायी स्थिति है, लेकिन उसमें भी हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण मिलते हैं। इसके आगे आयोडीन की कमी, हार्मोन उत्पादन करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। आयोडीन की कमी होने से भी ये देखने में आता है कि थायराइड की मात्रा कम निकलती है। और चौथा यह है कि थायराइड में नॉन फंक्शनिंग थायराइड ग्लैंड होते हैं
1: जी, जी,
2: जो जन्म से ही सही ढंग से काम नहीं करता। ये करीब करीब 4,000 शिशुओं में से एक को होता है
1: जी,
2: पर यह भी एक कारण है उसके।
1: तो सामान्यतः हम किन लक्षणों को देखकर पहचान सकते हैं कि व्यक्ति को थायराइड की संभावना हो सकती है?
2: बात करें पहले हाइपर थायराइडिज्म को
1: जी।
2: ये एक, इसको ग्रेव्स डिसीज भी बोलते हैं
1: जी।
2: इसमें जो थायराइड की जो ग्रंथि है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है और बहुत अधिक हार्मोन्स उत्पादन करती है
1: जी।
2: और ऐसी स्थिति में मरीज को घबराहट होती है, उसकी आंखों में आंखें थोड़ी फैल जाती है, इसको एक्सोप्थैल्मस बोलते हैं
1: जी।
2: घबराहट होती है, रात में सोता है तो पसीना हो जाता है, घबराहट के मारे उसकी नींद खुल जाती है
1: जी।
2: उसका जो मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ जाता है।
1: अच्छा,
2: इसलिए उसकी नाड़ी गति भी बहुत तेज हो जाती है। ये हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने में आता है
1: जी।
2: और हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है उसके अंदर मात्रा कम निकलती है, और कम निकलती है तो शरीर में सूजन आ जाती है और थकान महसूस होता है, उसका वजन बढ़ने लगता है। इसको मैंने बताया, भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी हो जाती है महिलाओं में बार बार, और भारी मासिक धर्म होता है
1: जी।
2: बाल भी बड़ा रूखे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, आवाज में भी चेंज आ जाता है, कर्कश आवाज आ जाती है और ठंड सहन नहीं कर पाते।
1: कहा जाता है कि एक बार थायराइड हो गया तो इसकी दवा आपको हमेशा लेनी होती है, क्या ये सही है?
2: देखिए, थायराइड यदि हो गया तो हाइपर थायराइडिज्म में हम लोग देते हैं दवाई, उससे काफी कुछ ठीक हो जाता है
1: जी।
2: और हाइपोथायराइडिज्म में मतलब शरीर की अंदर से जो थायरोक्सिन थायराइड हार्मोन है
1: जी,
2: वो कम निकल रहा है, तो उसको ऊपर से सप्लीमेंट करना तो बहुत जरूरी हो जाता है।
1: अच्छा,
2: और यदि आयोडीन की कमी है तो आयोडीन की मात्रा देने से में भी लाभ होता है।
1: अच्छा सर, जब थायराइड का चेकअप हम कराने जाते हैं तो डॉक्टर्स हमेशा T3, T4 ऐसे टेस्ट लिखते हैं, कहीं कहीं पर TSH भी सुनने में आता है, तो ये असल में T3, T4 टेस्ट क्या होते हैं, TSH क्या होता है?
2: ये अपन ब्लड जो एग्जामिनेशन करते हैं
1: जी,
2: उसके अंदर T3, T4, TSH देखा जाता है
1: जी।
2: तो ये एक ब्लड में अपने को ये उससे पता चलता है। जैसे मान लीजिए TSH की बात करें
1: जी,
2: TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग

0: बोलते हैं इसको।
1: अच्छा,
0: तो वो जो हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड में से थायराइड हार्मोन वो निकालने में उसको बोलता है कि इस तरह से आप यहाँ से निकालिए, मतलब वो उसको स्टिमुलेट करता है तो थायराइड हार्मोन निकलता है
1: जी।
0: तो यदि बढ़ा हुआ है ये
1: जी,
0: तो इसका मतलब ये है स्टिमुलेट है मतलब वो
1: जी जी।
0: और यदि वो कम है और T3 T4 ज्यादा है
1: जी,
0: तो इसका मतलब होता है कि थायराइड के फंक्शन जो है
1: जी
0: वो जरूरत से ज्यादा हो रहा है, उसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: इसके अलावा इमेजिंग परीक्षण किया जाता है, सीटी स्कैन और दूसरे जांच
1: जी।
0: तीसरी है कि शरीर में जैसे गले के पास एक ग्रंथि होती है तो यहाँ पर सूजन आ जाती है।
1: अच्छा।
0: तो उसको अपन परीक्षण से ही पता चल जाते हैं, इसको गॉटर बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: इसके अलावा और यदि अपने को इसके आगे की जांच करना है तो FNAC एक जांच होती है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी टेस्ट
1: जी।
0: तो सुई अपन डाल करके उसमें से जो उसका फ्लूड निकालते हैं उसका टेस्ट करते हैं, इससे अपने को थायराइड के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं।
1: सर, ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए जिससे हम इस रोग से बचे रह सकें?
0: जी हाँ, कुछ क्षेत्रों में आयोडीन मात्रा की कमी पाई जाती है
1: जी,
0: तो वहाँ हाइपोथायरॉयडिज्म मिलता है
1: जी।
0: तो किसी व्यक्ति को सोया खाद्य पदार्थों के सेवन को सीमित करने की सलाह दी जाती है
1: जी।
0: यदि वो ऐसे क्षेत्र में रह रहा है जहाँ आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों की कमी है
1: जी,
0: तो सोया खाद्य पदार्थ थायराइड हार्मोन के विकास को सीमित करते हैं जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। इस प्रकार उसको सलाह दी जाती है कि भाई आयोडीन की उसके अंदर मात्रा आयोडीन वाला ले
1: जी।
0: और किसी आहार में आयोडीन की अत्यधिक मात्रा होती है
1: जी,
0: तो ऐसे मरीजों को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है
1: जी।
0: इसलिए उनको सलाह दी जाती है कि उचित मात्रा में थायराइड हार्मोन की दवाएं यदि वो कहीं ले रहे हैं तो सेवन करें। बहुत अधिक आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे नमक, समुद्री सैलाव, मछली आदि खाने से बचें
1: जी।
0: और तीसरी चीज है, यदि कोई व्यक्ति बहुत धूम्रपान करता है तो उससे भी थायराइड की बीमारी हो सकती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके धूम्रपान छोड़ना चाहिए क्योंकि धूम्रपान थायराइड को डायरेक्ट प्रभावित करता है।
1: सर, जैसे किसी को पता नहीं है कि उस व्यक्ति को थायराइड हो और उसके जो लक्षण है उसको भी अवॉइड करते जा रहा है वो, तो ऐसी स्थिति में कि अगर थायराइड का इलाज न किया जाए तो क्या ये कोई गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकता है?
0: बिल्कुल ले सकता है, गंभीर बीमारी में भी पलट सकता है आदमी। बहुत जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में मोटापा बढ़ते जाता है और उसके बाद में दूसरे जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं जिस भी ग्लैंड से
1: जी,
0: ये अपने पूरे शरीर के सारे ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं। जैसे ऊपर पिट्यूटरी है
1: जी,
0: है ना, महिलाओं में ओवरी है, पुरुषों में प्रेस्टिस है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, फिर सब जगह उसका असर आने लग जाता है। तो ये बीमारी तो वैसे तो खतरनाक ही होती है, इसको तो इलाज तुरंत करना चाहिए
1: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह लेकर के उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए।
1: जैसे आपने कहा कि डॉक्टर्स की सलाह लेकर ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, तो क्या इसका पूरी तरह से इलाज संभव है, मतलब इसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है इस बीमारी को?
0: देखिए, हाइपर है तो उसके अंदर जो अपन दवा देते हैं उससे अधिकतर मरीज ठीक हो जाते हैं
1: जी,
0: और फिर भी उस पर ध्यान तो रखना पड़ेगा आपको कि आगे भी वैसी स्थिति न आए
1: जी।
0: और हाइपोथायरॉयडिज्म तो है ना, शरीर में थायराइड की मात्रा ही कम निकल रही है
1: जी।
0: तो उससे ऊपर से सप्लीमेंट तो थायराइड के हार्मोन्स को देना पड़ता है, ये देखने में आया है, जनरली थायरोक्सिन वगैरह दिया जाए। इसके अलावा जैसे कई थायराइड की ग्लैंड होती है उसके अंदर जैसे गढ़ान जो होती है उसके अंदर एक पिंड बन जाता है
1: जी,
0: इसको नोड्यूल हम लोग बोलते हैं
1: जी।
0: तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको निकाल सकते हैं। उसमें कई बार अंदर कैंसर के ट्यूमर हो जाते हैं तो उसका उस हिसाब से इलाज करना पड़ता है,
1: मतलब इससे पहले कि गंभीर रूप ले ले डॉक्टर की सलाह लेना।
0: सलाह लेकर के यदि थोड़े से भी लक्षण दिखते हैं
1: जी,
0: तो डॉक्टर से सलाह लेकर के अपना रक्त परीक्षण T3 T4 TSH करवा लें
1: जी,
0: और उससे अपना इलाज जो भी जो आवश्यक इलाज है वो ले
1: जी। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, अब चलते चलते इस बारे में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: बस ये मैं श्रोताओं को यही सलाह देना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, और थायराइड के विषय में यदि जो मैंने आपको लक्षण बताए इसमें से कुछ भी कहीं नजर आते हैं तो उसके बाद तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर के अपना रक्त परीक्षण जो इजीली सभी जगह हो जाता है वो करवाएं
1: जी,
0: और अपनी बीमारी का निदान करें यदि हो तो उसका इलाज लें
1: जी। सर, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम।
1: अभी चेतना कार्यक्रम में आपने सुनी भेंटवार्ता, थायराइड रोग कारण लक्षण और उपचार, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर बीपी मिश्रा।
2: इछे निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
1: जी हां श्रोताओं, आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा। अब सुनिए सदाबहार नगमों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का सुनहरे पल कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए श्वेता सोनी का नमस्कार। श्रोताओं, यूं तो ईश्वर ने हमें बहुत सी चीज़ें प्रदान की हैं और ईश्वर के द्वारा मिली हर चीज़ अनमोल भी है, पर वो चीज़ सबसे ज़्यादा अनमोल है जिससे हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, उसे महसूस कर पाते हैं, उसे पहचान पाते हैं, और वो है हमारी आँखें, खूबसूरत आँखें जिससे हम खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं।

अदाए मोहब्बत शराफत सब समेटे रहती है। अदाए मोहब्बत शराफत सब समेटे रहती है। कैसे सुलझाए अनकहे शब्दों की पहेली, कैसे सुलझाए हम अनकहे शब्दों की पहेली, ना जाने तुम्हारी आंखें क्या क्या कहती है।

क्या कशिश है तुम्हारी आंखों में, देखते ही क्यों न कोई दीवाना हो जाए। लाख गुस्ताखियां कोई कर जाए, लाख गुस्ताखियां कोई कर जाए, कैसे ना कोई परवाना हो जाए।

यूं ही गुजर जाती है शाम अंजुमन में, यूं ही गुजर जाती है शाम अंजुमन में, कुछ तेरी बातों के बहाने, कुछ तेरी आँखों के बहाने।

आंखों से गुजरकर कुछ यूं दिल तक जाती है, जहां तक पहुंचे नजर बस कयामत ही ढाती है। रब बचाए इन कातिल निगाहों से, रब बचाए इन कातिल निगाहों से, जो मेरी जागती आंखों को भी हजार ख्वाब दिखाती है।

और अब चलते चलते बस इतना ही, आँखों को आँखों के पास ही रहने दो, बिन कहे बिन बोले हर सितम सहने दो। चले जाएगी उल्फत में एक दिन जान हमारी, चले जाएगी उल्फत में एक दिन जान हमारी, आँखों से ही आँखों की हर बात कहने दो।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार नगमों का कार्यक्रम सुनहरे पल। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजे हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की

0: चार दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जानचीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में

0: खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
3: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस की महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
4: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया।

0: हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे 100% त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए की अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.2 MHz पर यह है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 8:15 हुए हैं, आप सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम के गाए नगमे।

0: इसी गीत के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम ही संपन्न होता है। सुगम संगीत में आज आपने सुने सोनू निगम के गाए नगमे।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
0: इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
2: आपके मीत ये गीत।
0: आपके मीत ये गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को श्वेता सोनी का नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों को, शामिल करते हैं आपके ईमेल्स को और सुनाते हैं आपको आपकी पसंद के गीत। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की हमारे इन श्रोताओं के ईमेल्स के साथ। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू।

खंडवा से ही हमारे श्रोता है दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता, गौरव, ईशान, कार्तिक सैनी, लकड़ बाजार खंडवा से ठाकुर भवानी सिंह बेज, रिया, रोहन और अंगद ठाकुर, दिल्ली से है बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल, खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा, ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी, उदयपुर से है बाबू भाई और भारती देवी, जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां, ओडुंडी लोहारा, बालोद से है प्रभा जटोलिया, मक्का जटोलिया और स्नेहा, मोटा कमाफी खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल, रायगढ़ से उमा रानी, अजनबी बेबी, जोई और डोली बेलदार जाडव, छत्तीसगढ़ से है प्रभा रानी गोंडिया, चंद्रनगर से है आशा जटोलिया और देवशंकर जटोलिया, दिल्ली से दीपा भारती और डुमराव से है वलीउल्लाह अंसारी, उमाराज, अनिल कवचाले और सबीहा और सुषमा है, इंदौर से दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर किशोर कुमार की आवाज़ में हिंदी पर का लिखा गीत। धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म है जॉनी मेरा नाम।

अब शामिल करते हैं हमारे श्रोताओं के फरमाइशी ईमेल्स को। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू, मजनू कटियाला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना से है उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, नर्मदा नगर से है सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, खेगांव महेश्वर से है प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममता वे वर्मा, जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाक से साक्षी, ऋतुराज और पूर्णिमा पटेल, जिन्या रतनपुर से जितेंद्र सिंह गौड़, नरेंद्र सिंह, सचिन, प्रीति, भावना, अंतिम, श्रुति, यशराज सिंह गौड़, दीपराज, किट्टू, सावी, पारी, परी और रिद्धिमा, संभाजी नगर से है राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि और शीतल राजेश, नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत सिंह और स्वीटी छाबड़ा, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, डॉक्टर सुहानुभूति, चक्रधर, आदेश कुमार काले और वसुधा वज्रसेन, महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, बिहार से है शेख जफर, हसन और नरगिस जफर, संबलपुर काकेर से है फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, छत्तीसगढ़ से है चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरोल, यवतमाल से है राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और बीबी प्रियांशी, छत्तीसगढ़ से ही है हमारे श्रोता मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में मजरूह का लिखा गीत, संगीत राजेश रोशन का है और फिल्म है दूसरा आदमी।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अब सुनिए मान्य श्रोताओं के अनुरोध पर कार्यक्रम का अगला गीत। जगराव से है सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, पानीपत से भावना मल्होत्रा, नरेश, नीटू, लक्ष्य, कोयल और नानक चंद जी मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुगुर, भाविका सिक्का, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर, अब्दुलक डाबर, जियावलक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर, राजेंद्र कटारे, बाटापारा छत्तीसगढ़ से है भी हमारे श्रोता है सोहन जोशी, पायल जोशी, कोलासुर तालेकाल से है प्रमोद बगाड़े, हर्षा, प्रतीक और संकेत बगाड़े, सनावत से है दगड़ू सेन, धर्मेंद्र सेन, राम सेन, कलाबाई, सावित्री, निशा, आयुष, दीपांशु, आरुषि और लक्षिता सेन, सनावत से मोहम्मद जावेद खत्री, सबीना, मोहम्मद जैद और मुनीरा खत्री, मोहम्मद इकबाल खत्री, इस्लामपुर सनावत से है सायना बी खत्री, रानी और बीनू खत्री, खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनीता, उदय, उज्जवल और मितांश कटारे, वाशिम महाराष्ट्र से है मास्टर बिट्ठल सुरेशे, सुषमा, परिधि और मायरा सुरेशे, झारखंड से उत्तर कुमार, भगत, श्वेता, किसु, ताशु, अर्णव, आनंद, सत्यम और बंगाल से है मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, मेरठ केंट से है दिग्दर्शन और कविता गौड़, पंडरपुर सिटी से है प्रशांत संदेश, तुनीता, यशराज, ऋषि और कृष्णा घोड़के, सनावत से है मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमस, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद गोगावा से है हाजी इसहाक लोला मानी, मोहम्मद उमर कासमी, फारूक जमादार, हाजी अयूब शेरी, मारवाड़ जिला राजस्थान से है रमेश चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान, नाथघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत को किशोर कुमार की आवाज़ में। धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म है ब्लैकमेल।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी मेहत ही गीत। अब सुनवाते हैं श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत। उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिल और प्रगति नाचानी। कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, सानिया राठौर, मसरूर खान, अवधेश गुप्ता और साबित खान है कमरिया छत्तीसगढ़ से। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख और रहीम मन्ना। पांडा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगा, निशांत, लखनलाल और सावित्रीबाई देवांगन। नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और छत्तीसगढ़ से है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, शिवांश वर्मा। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान। पैठन से है डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल और बीबी सिया जाधव। दुर्गा कॉलोनी हांसी से है राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। मुंबई से अहमद भाई फुलवाले, दुखनी सदफ, आरजू जूही, इकबाल, इमरान फुलवाले। कापसहेड़ा नई दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया, मंतशा, आशु, अहमद फुलवाले और लखमीनिया। जिला बेगूसराय से है शमीम अहमद राइन, अखलाक अहमद और इनके परिवार के सदस्य। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी है हमारे श्रोता जिन्होंने कार्यक्रम में अगले गीत को सुनना चाहा है। ग्राम नागर कोरा राजनाथ गांव से है बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्राजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, कल्पित, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। कोरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर किशोर कुमार की आवाज़ में नीरज का लिखा गीत। संगीत है एस डी बर्मन का और फिल्म है गैम्बलर।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में सुनिए श्रोताओं की फरमाइश पर गीत। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया गुजरात गांधीनगर से है, प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोरी, तालुका श्रीरामपुर से है हरिभाव बिड़वे, श्रावण और अनीता, कुमारकली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत, रोहिणी और ऋषिकेश दले, जीविका दले, पुनावले पुणे से है अजय सोनवनी, करिश्मा अविका और विशाखा सोनवनी, इताला महाराष्ट्र, शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद और कुमारी दुर्गेश्वरी, खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना बी अलमास बानो और सबीना जहीर पवार, खंडवा से ही हमारे श्रोता है मोहम्मद हसनैन, हसू बाबा, बेबी हमीना, फातिमा मोइन, छोटू मोहम्मद, फाजिल जामा, मस्जिद बिकनगांव से है साफिया अरहान खोकर, अनस शिफा खोकर और अयान खोकर, अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना ताई, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गुंडाने, इंदौर से है रायनारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी, स्वाति खर्चे, प्रयाग चौधरी और देविका चौधरी, शिवकोटी ओंकारेश्वर से राकेश, पप्पू सेन, ओम कुमारी, सपना, धर्मेश और मुकेश सेन, लिम्बोदी से गिरधारी लाल चौधरी, मनीषा भाई चौधरी, खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, साकिब पवार, बेबी हमीना, फातिमा, मोहम्मद हसनैन पवार, दीवार से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता, वामिका गंगराड़े, जामनी कला से मानचंद राठौर, पुष्पबाई राठौर और चंडीगढ़

सतीश, अनिजा, विमला, अनिजा, तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। शब्द रचना और संगीत निर्देशन है रविंद्र जैन का और फिल्म है सौदागर।

0: इसी गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत संपन्न करने की अनुमति दे श्वेता को। नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। अब से लेकर 10 बजे तक हम अनुप्रसारित करेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम।

0: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में।
1: सा धा

अभी आप सुन रहे थे रंजना फिल्म का गाना, आवाजें थी मधुश्री आंचल सेठी और सखियों की, रियाज कामिल ने लिखा था इसे और संगीत से संवारा था एआर रहमान ने। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं जॉनिटा गांधी की आवाज में दंगल फिल्म का गाना। अमिताभ भट्टाचार्य हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

दोस्तों, आज मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति फिस्टुला उन्मूलन दिवस। इसका उद्देश्य महिलाओं में प्रसव के दौरान होने वाली गंभीर बीमारी प्रसूति फिस्टुला के प्रति जागरूकता फैलाना तथा इसके उन्मूलन के लिए प्रयास करना है। इस रोग के कारण महिलाओं को शारीरिक पीड़ा के साथ साथ सामाजिक उपेक्षा और मानसिक कष्ट भी सहना पड़ता है। ये समस्या विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है जहां उचित स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और प्रशिक्षित चिकित्सकों की कमी होती है। समय पर चिकित्सा सुविधा, सुरक्षित प्रसव तथा महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता से इस रोग को रोका जा सकता है। इस वर्ष की थीम है हर हेल्थ इज अ राइट, इन्वेस्ट इन एंडिंग फिस्टुला एंड चाइल्ड बर्थ इंजरीज। तो दोस्तों, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपको पालोमे की आवाज में हेलीकॉप्टर इला फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

तेरी धड़कनों की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है, मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही सजती है, मेरे ख्याल में हर पल तेरे।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भूल भुलैया 2 फिल्म का गाना अरिजीत सिंह की आवाज में। समीर ने लिखे थे बोल और तर्ज बनाई थी प्रीतम ने। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मंच म्यूजिक हरबी सहारा और नेहा कक्कर की आवाजों में गुड न्यूज फिल्म से। तनिष बागची, हरबी सहारा ने लिखा इससे और संगीत से संवारा तनिष बागची, मंच म्यूजिक और हरबी सहारा ने। लाल घाघरा

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। एक अभिनेत्री जो अपने अभिनय की शुरुआत स्कूल और कॉलेज के थिएटर से करती है, धीरे धीरे टीवी सीरियल की ओर बढ़ती है, बॉलीवुड में आकर अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाती है और आज OTT की क्वीन कहलाती है, वो है शेफाली शाह।

बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 22 मई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी शेफाली बचपन से ही अभिनय करना चाहती थी। वे एक मॉडल, अभिनेत्री और चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। उनके पिता का नाम सुधाकर शेट्टी और माता का नाम शोभा शेट्टी है। वे अपने माता पिता की इकलौती लाडली संतान हैं और उनका पालन पोषण एक गैर फिल्मी पृष्ठभूमि में हुआ। साल 2000 में उन्होंने निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह से शादी की, जिनके साथ उनके दो बेटे आर्यमन और मौर्य हैं।

शेफाली शाह का अभिनय करियर गुजराती मंच से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें कला की ओर बहुत झुकाव था, जिसमें गायन और नृत्य शामिल थे। उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया। उनकी अभिनय यात्रा 10 वर्ष की आयु में गुजराती मंच पर किए नाटक द ओमेन से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने डेमियन थॉर्न पर आधारित चरित्र को बखूबी निभाया। इंटर कॉलेजिएट नाटकों में काम करने के साथ साथ उन्होंने गुजराती रंगमंच में काम करके अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दे दिया था।

शेफाली शाह ने थिएटर करने के बाद साल 1993 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। बनेगी अपनी बात सीरियल से छोटे पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया, फिर आरोहण, हसरतें, पतझड़, कभी कभी, सी हॉक्स, राहें और रामायण जैसे सीरियलों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेफाली शाह कमाल की एक्ट्रेस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उनके नाम 25 से ज्यादा फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में उनका काम बोलता है। उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी।

1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीकू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज बाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला।

सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में शेफाली को एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका

के ठीक एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई पुरस्कार

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त माँ की थी जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला।

मिलने के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाल दी।

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माई फादर का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया, जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं, और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्याले की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आईं। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

करण मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घाइवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से

बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों समडे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

0: शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी, ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

FM 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे कुछ ही पलों में जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

बात सबसे पहले मौसम की। नौतपा शुरू होने में अभी दो दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही दमोह जिले में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले साल 2022 में इतना तापमान रिकॉर्ड किया गया था। भीषण गर्मी के बीच जिले में जल संकट भी लगातार गहराता जा रहा है। जिला मुख्यालय से लगे हृदयपुर, इमलाई, आमचोपड़ा, बरमासा, सिंहपुर, खजूरी समेत दर्जनों गांवों के लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच पिछले दिनों मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत दमोह रेलवे स्टेशन से यात्रियों को माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए रवाना किया गया। प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने तीर्थ यात्रा के लिए विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वातानुकूलित ट्रेन से जिले के 263 यात्री माता के दर्शन के लिए रवाना हुए। जिले के प्रभारी मंत्री ने जिला जेल पहुंचकर नवनिर्मित डबल स्टोरी बैरक का लोकार्पण किया। करीब 1,18,00,000 रूपये की लागत से तैयार इस बैरक का उद्घाटन कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए कलेक्टर प्रताप नारायण यादव लगातार शासकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम, तहसीलदार समेत कई अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिन पर शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जिले में वृद्धावस्था, पेंशन से वंचित बुजुर्गों की समस्या को देखते हुए कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने सेवा और आशीर्वाद अभियान शुरू किया है। जिले में 1664 ऐसे पात्र प्रतिजन चिन्हित किए गए हैं, जिनकी समग्र ईकेवाईसी लंबित होने के कारण पिछले 8-9 माह से पेंशन बंद है। अभियान के तहत ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां वृद्धजनों के निशुल्क ई केवाईसी कर पेंशन शुरू कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दूसरी ओर दमोह नगर के खजरी मोहल्ला निवासी समीर अहिरवार अपनी अनोखी खोज किसान मित्र छड़ी को लेकर चर्चा में है। ये छड़ी मिट्टी परीक्षण के साथ साथ कंपन पैदा कर किसानों को सर्प दंश से बचाने में भी मदद करती है, जिससे करीब 3 मीटर दूर तक सांप भाप जाते हैं। समीर के इस खोज का लोकार्पण केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। वहीं उन्हें स्टार्टअप के लिए 5 लाख रूपये की ग्रांट भी मिली है। अब वे पराली से पेपर, पेन और पेंसिल बनाने पर भी काम कर रहे हैं। रासायनिक खेती के दौर में ग्राम बांसा कला के सीमांत किसान परसादी पटेल ने जैविक खेती अपनाकर मिसाल पेश की है। 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन में वे घर पर तैयार केचुआ खाद से गेहूं, उड़द, चना, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें बाजार में बेहतर दाम मिल रहे हैं। सांसद राहुल सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास और समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किनबेतवा लिंक परियोजना, मेडिकल कॉलेज, सड़क और पुल निर्माण सहित किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा संचालित ज्ञान भारतम पांडुलिपि मिशन के तहत जिले में पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान अब तक जिले में 97 पांडुलिपियों को चिन्हित किया जा चुका है। इनमें से 63 पांडुलिपियों को ज्ञान भारतम मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड भी किया जा चुका है। खेल जगत से अच्छी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश हैंडबॉल संघ के तत्वाधान में 10 से 12 मई तक अशोकनगर में राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें दमोह जिले की बालिका टीम ने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। इसी तरह धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी जिले में उत्साह देखने को मिला है। श्री दिगम्बर जैन श्रवण संस्कृत संस्थान सांगानेर और श्री दिगम्बर जैन पंचायत तथा स्थानीय केन्द्रों के तत्वाधान में श्रवण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिले के 3 केन्द्रों पर हुआ। इसमें 500 से ज्यादा शिविरार्थियों ने भाग लिया। शिविर में 22 कक्षाएं संचालित की गई हैं, जिनमें संस्कार, स्वाध्याय, पूजा, संगीत, व्यक्तित्व विकास और जैन संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं दमोह जनपद के पास स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में पिछले दिनों 35 ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में 8 वर्ष के बालकों से लेकर 26 वर्ष तक के युवाओं का यज्ञोपवीत संस्कार आचार्य पंडित द्वारा विधि विधान से सम्पन्न कराया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: लीजिए प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी, आलेख है अनिल जैन का, वाचन स्वर दीपा सिंह के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी, आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह।

0: अभी आप सुन रहे थे दमोह जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित जिले की चिट्ठी, FM 101.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह के गाए नगमे।

0: इसी गीत के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुगम संगीत में अभी आपने सुने भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की गाए नगमे।
1: इच्छे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

ये लोकगीत अभी आपने सुना कांता चौहान और साथियों की आवाज में। लीजिए अब सुनिए साधना उपाध्याय का गाया ये लोकगीत।

0: हेमलता उपाध्याय के गाये लोकगीत के साथ निमाड़ी लोकगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: ईछे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी खंडवा निमाड़ की सुरीली धड़कन। सुबह के 10:35 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कोपल।

कार्यक्रम सुनने वाला सभी बच्चा न होनी कार्यक्रम में आज आपका साथ छे आपकी दीदी प्रतिमा, तो स्वीकार करो हमारी राम राम। बच्चा न होनी आज 23 मई छे ना आज का दिन ख विश्व कछुआ दिवस का रूप में मनायो जाए। आज का दिन ख कछुआ न की दुर्लभ प्रजाति का संरक्षण और उनका प्राकृतिक आवास की रक्षा का प्रति जागरूकता का बढ़ावना कलेन मनायो जाए। बच्चा न होनी आज समय छे कि हम अपना वन्य जीवन का बारा में जाना न उनका संरक्षण का लेन आगावा। बच्चा न होनी कदी आपना सोचियो कि हमारा जंगल में शेर नहीं होए, पेड़ न पर चिड़िया चहचाती नहीं होए, न तालाब न में रंग बिरंगी मछली नहीं होए तो हमारी दुनिया कसी दिखेगा। हाँ एकदम सुनी, तो बच्चा न होनी आओ जाना वन्य जीव संरक्षण का बारा में, जेको मतलब छे हमारी धरती का जीव जंतु न पक्षी न पेड़ न की समूह की रक्षा करनु। बच्चा न होनी जंगल सिर्फ पेड़ न को समूह नहीं आए बल्कि हमारा वन्य जीव न को घर आए, जेम बाघ हाथी हिरण बंदर अरु कई अन्य वन्य जीव रहे। बच्चा न होनी ई सबई हमारी प्रकृति का सिपाही रहे। मधुमक्खी अरु तितली फूल न सी रस लेज न हमारा लेन मीठो शहद तैयार करज। पक्षी दूर दूर तक बीज ले जाए चेकासी नया पेड़ उगज। बच्चा न होनी काई आप जानोज कि जीव बिना बोले हमारी कई तरह की मदद भी करज, पर हम देख ही रहे आज कि आज धीरे धीरे वन्य जीव न की संख्या कम होती जा रही जेकासी प्रकृति को संतुलन बिगड़ी सकज। एकालेन आज हम सबई ख मिली न छोटा छोटा प्रयास करनु चाहिए। अब आप सोच ही रहा होगा कि हम बच्चा काई करा, तो बच्चा न होनी अभी गर्मी छे तो गर्मी में आप सबई अपना घर में पक्षी नकालेन पानी रखी सकोज। कदी बाजार जाओ तो प्लास्टिक को उपयोग नहीं करा है, न घर में भी थैली न को उपयोग नहीं करा है। ये हमारी प्रकृति का साथ साथ हमारा वन्य जीव नकालेन भी हानिकारक रहे। साथ ज हम ई प्रयास भी करा कि साल में कम से कम एक पौधो जरूर लगावा। पेड़ लगाना कालेन हम एक प्रयास करी सकांच कि जब हम कहीं दूर गांव में जावा तो रास्ता में अपना साथ फल का बीज न गुटली न खा ले न जावा, उनका सफर में रास्ता में रोड का किनारा पर फेंकता जावा। फिर जब बारिश को मौसम आवेगा तो बीज अंकुरित हुई न छोटा छोटा हरा भरा पौधा नसी पेड़ को रूप ले लेगा। तो हम सभी इन्हीं बात का समझा कि पेड़ लगावा न अपना जीवन का साथ साथ अपना वन्य जीवन का लेन भी प्रयास करा। बच्चा न होनी वन्य जीव हमारा पर्यावरण का संतुलित रखज, साथ ही पर्यावरण का स्वच्छ रखने में भी अपनो सहयोग देज। वन्य जीव पर्यावरण का स्वच्छ अरु स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभावज। वन्य जीव धरती पर से अपशिष्ट निपटान करज। गिद्ध कौआ सियार लकड़बग्गा जैसा जीव मृत जीव न ख खाई कना पर्यावरण का साफ करज। कदी ऐसो नहीं होए तो मृत शरीर सी कई प्रकार की खतरनाक बीमारी न भी फैली सकज। मेंढक छिपकली चमगादड़ जैसा पक्षी हानिकारक कीड़ा और मच्छर न खाए न जेका खाए जेका सी हमारी खेत की फसल की सुरक्षा होए और फसल पर बीमारी न नहीं लगती है। वांच बाघ शेर और तेंदुआ जैसा मांसाहारी जीव शाकाहारी जीव जैसो कि हिरण खरगोश की आबादी का नियंत्रित रखज। बच्चा न होनी आप न केचुआ चीटी अरु अन्य छोटा छोटा जीव देखा होएगा। ये छोटा जीव माटी का खोदी का न ओखा हवादार अरु उपजाऊ बनावज। वान जीव न का मल मूत्र सी माटी का प्राकृतिक खाद मिलज। त बच्चा नौनी आज सी आप सबई भी प्रयास करा कि जीव न का लेन दानो पानी रखा, उनका घोंसला का तोड़ा नहीं है। कदी कोई घायल जीव या पक्षी होए तो की मदद करा। वांच वन्य जीव न का संरक्षण का लेन पर्यावरण का लेन भी कुछ बात न को ध्यान रखा। कदी भी कचरा का खुली जगह पर नहीं फेंका, कचरा का हमेशा कचरा घर में डाला। आप सभी लिखना का लेन कागज को उपयोग करता होएगा तो ध्यान रखा कागज को कम उपयोग करा, कोरा कागज का फाड़ी न नहीं फेंका है। बच्चा न होनी आप सभी पानी न बिजली की बचत भी करी सकोज। बिना कारण थी बिजली को उपयोग नहीं करा है। कदी खाली कमरो होए नौ में पंखा कूलर चलता होए तो उनका बंद करा। आप सभी पर्यावरण न वन्य जीव का

0: रक्षण को संकल्प लेवा, न अपना साथ का दोस्त, न कभी वन्य जीव, न पर्यावरण का महत्व का बारे में जरूर बतावा। न बचन होनी आ व स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित ई भेंट वार्ता सुना।
1: प्यारे बच्चों, अभी आप सभी की गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और इन गर्मी की छुट्टियों में जगह जगह समर कैंप यानी कि ग्रीष्मकालीन शिविर लगे हुए हैं। तो आओ आज स्थल रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हम आपको मिलवाते हैं संगीत एवं नृत्य के ग्रीष्मकालीन शिविर के कुछ बच्चों से। आप सभी बच्चों का आज के हमारे कार्यक्रम कोपल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आप लोगों की छुट्टियां चल रही हैं, तो छुट्टियों को आप किस प्रकार से एंजॉय कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप अपना नाम बतलाइए।
2: मेरा नाम दक्ष सिंह फरे है। मैं 8th क्लास में होली स्पिरिट स्कूल कॉन्वेंट में पढ़ता हूँ।
1: तो म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट कब से था?
2: म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट बचपन से था और मेरे को 4 साल हो गए बजाते बजाते। हाँ, हमारी छुट्टियों को मतलब यूटिलाइज कर रहे म्यूजिक क्लास आके, और हमारे जो सर है वो हमको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं उस, क्योंकि मैं तो पियानो सीख रहा हूँ तो मेरे को सर से बहुत प्रेरणा मिलती है और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है।
1: अच्छा, आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम जोयल कनाडे है।
1: आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पर?
3: मैं भी यहाँ पे पियानो सीख रहा हूँ सर के द्वारा। सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाते सर, गाने सिखाते और क्लासिकल सब सिखा।
1: जैसा कि आपने बताया कि आप पियानो सीख रहे हैं, तो क्या छुट्टियों के बाद भी इसकी तैयारी करेंगे आप?
3: हाँ, मतलब पहले से ही मतलब मेरा इंटरेस्ट था उसमें और सर के द्वारा मतलब उसको और बढ़ावा मिला है, तो मतलब मैं उसको कंटिन्यू करूँगा।
1: बहुत अच्छी बात। अच्छा, आपका नाम क्या है? आप क्या सीखने आ रही हैं यहाँ पर?
4: मेरा नाम जैना मेहता है। मैं यहाँ पर डांस सीखने आई हूँ और यहाँ मैम सिखाती है, बहुत अच्छा सिखाती है मैम।
1: आप कब से सीख रही हैं डांस?
4: मेरे को अभी 1 महीना हुआ है।
1: आप कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं?
4: मैं सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ती
1: हूँ। तो डांस में आपकी रुचि मतलब बहुत पहले से है, तो इसको आगे आप किस प्रकार से कंटिन्यू रखेंगे?
4: मुझे अच्छा लगता है डांस, इसलिए
1: जी। अच्छा, आप कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं और आपका नाम क्या है?
5: मेरा नाम आयुषी पाचोले, मैं 7th क्लास में हूँ और मेरे स्कूल का नाम प्रेमशिक्रेन विद्यालय।
1: तो आप छुट्टियों में क्या सीख रहे हैं?
5: डांस
1: सीख रहे हैं। डांस करना अच्छा लगता है आपको?
5: हाँ।
1: अच्छा, आप सभी बच्चों में कोई कुछ गाकर बताएगा? आपका नाम क्या है?
6: मेरा नाम श्रीदी गुजर है। मैं कक्षा 11th में हूँ और केंद्रीय विद्यालय में हूँ।
1: आपका नाम क्या है?
7: मेरा नाम एंजल अटूट है और मैं क्लास 9th में हूँ।
1: क्या आप हमें कुछ गाकर सुना सकते हैं?
7: जी जी,
1: दोनों साथ में।

0: बढ़िया, आप सभी जरूर एक न एक दिन कामयाब जरूर होंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है?
1: माय नेम इज नुपुर बघेल एंड माय क्लास 3rd C।
0: आपको कैसा लग रहा है इस बार छुट्टियों में?
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: क्या क्या सीख रहे हैं आप छुट्टियों में?
1: डांस
0: सीख रहे हैं। तो आप जैसे यहाँ से सीख के जाते तो घर पे उसकी प्रैक्टिस करते हैं?
1: हाँ।
0: और आपको कैसा लग रहा है? आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम श्रेया निनोरिया है, मैं क्लास 4th B में पढ़ती हूँ।
0: आप भी यहाँ पर डांस सीखने आए या म्यूजिक सीखने आए?
2: डांस सीखने आई हूँ।
0: कैसा लग रहा है छुट्टियों में आपको?
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम युलालिया अटूट है, मैं कक्षा 7th में पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, छुट्टियों में आप इस बार अभी क्या कर रहे हैं?
3: मैं डांस सीख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अच्छे से डांस सीख रही हूँ। मैं घर पर जाके अच्छे से प्रैक्टिस भी करती हूँ।
0: क्या आप आगे छुट्टियों में भी सीखना चाहेंगे डांस?
3: हाँ बिल्कुल।
0: कई ऐसे दोस्त हैं आपके बराबर के बच्चे हैं जो चाहते होंगे डांस सीखे, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि छुट्टियों को कैसे वो एंजॉय करें?
3: कुछ अच्छा करके।
0: अच्छा एंजल, आप हमारे श्रोताओं को और आपके साथियों को क्या बोलना चाहेंगी?
4: मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हम तीनों

0: बहनों को इस समर क्लास में ज्वाइन करवाया और सभी पेरेंट्स को वो भी मतलब समर क्लास में सभी को भेजे और उनके बच्चों को समर क्लास में एक्टिव करा।
1: दक्ष, आपने कभी स्टेज पर अपनी प्रस्तुति दी है?
2: हाँ, पहले तो मुझे डर लगता था लेकिन अब मेरा डर खुल चुका है क्योंकि मैं 2 से 3 बार गया और पहली बार मैं जीत नहीं पाया लेकिन दूसरी और तीसरी बार मैं जीत गया, तो उससे मेरा डर खुल गया।
1: अच्छा श्रीधि, आप हमारे श्रोताओं और आपके साथियों को क्या कहना चाहेंगे?
3: कि मेरे जैसे पेरेंट्स ने मेरे अंदर एक टैलेंट देखकर हमारे को समर क्लासेस पियानो क्लास में भेजा, तो मैं यही एकदम प्राउड करती हूँ कि मेरे पापा मम्मी ने मेरा टैलेंट देखकर हमारे को पियानो क्लास में भेजा। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि बाकी सब पेरेंट्स हो ना अपने बच्चों को टैलेंट देखकर बाकी जो भी अलग अलग कैटेगरीज के जो समर कैंप होते हैं उसमें भेजे करें।
1: बच्चों, हमारे साथ में संगीत शिक्षक एवं नृत्य शिक्षिका भी है, तो हम उनसे आगे बात करते हैं। जैसे कि सर, आप यहाँ पर इतने बच्चों को डांस और म्यूजिक सिखाते हैं, तो इसमें किस प्रकार की परेशानियाँ आती हैं?
4: मैम, परेशानी तो नहीं आती है, बच्चों को पेशेंस रखना होता है एक प्रकार से, कि कुछ टाइम उनको लगता है कुछ सीखने के लिए। पेरेंट्स या फिर बच्चे ये सोचते हैं कि 10 दिन में 15 दिन में उनको रिजल्ट मिल जाए, लेकिन उनको साल दो साल मतलब हर साल समर कैंप में उसी चीज को पॉलिश करने के लिए, अच्छा सीखने के लिए 2-3 साल तक कम से कम वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि वो उसमें थोड़ा सा सक्षम हो सके बजाने में या कोई भी चीज को हासिल करने में वो लोग सक्षम हो सके।
1: मैडम, जैसे कि यहाँ पर कई बच्चे हैं जो संगीत और नृत्य सीखते हैं, तो आप जैसे आगे उसमें नृत्य और संगीत में क्या स्कोप है?
5: मैम, डांस सीखने में या म्यूज़िक सीखने में बहुत सारे स्कोप है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो हमारे म्यूज़िक टीचर है वो ऑलरेडी स्कूल में एक म्यूज़िक टीचर है, मैं हूँ, मैं भी स्कूल में डांस सिखाती हूँ। साथ ही साथ आजकल जो हमारा ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बोल सकते हैं, वहाँ पर कंटेंट रील्स वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, है ना, तो उसमें हम एक कंटेंट के थ्रू हमारी जो चीज़ें, जो हमारी क्रिएटिविटी है, हम उसको दे सकते हैं। साथ ही साथ स्टेज परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं, फिर जो बच्चे अभी डांस सीख रहे हैं वो बड़े होकर कोरियोग्राफर बन सकते हैं, तो बहुत सारे स्कोप है जिनसे ये लोग आगे बढ़ सकते हैं।
1: जैसे कि आपके पास डांस करने के लिए बच्चे भी आते होंगे, हर उम्र के लोग डांस सीखना चाहते हैं, तो सभी को सिखाने में कुछ परेशानियां होती होंगी, और उनको कैसे आप बताते हैं कि इसमें आगे क्या स्कोप है?
5: मैम, परेशानियां तो इतनी नहीं होती है, पर जैसे कि मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ, बड़ों

0: कुछ परेशानियाँ होती होंगी और उनको कैसे आप बताते हैं कि इसमें आगे क्या स्कोप है?
1: मैम, परेशानियाँ तो इतनी नहीं होती है, पर जैसे कि मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ, बड़ों को भी सिखाती हूँ, तो उनके अकॉर्डिंग मेरे को बच्चों के साथ मैं बच्ची बनती हूँ, बड़ों के साथ बड़ी बन जाती हूँ। पर इसके फायदे बहुत है, जैसे कि जो हमारे अभी के बच्चे हैं वो नॉर्मली हम देखते हैं कि फोन्स में बिजी रहते हैं, तो समर वेकेशन में एनरोल होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उन लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ती है, वो लोग एक्टिव होते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी आंटी लोग है जो सीखने आती है, वो लोगों की हेल्थ इश्यूज कम होते हैं, वो लोगों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। That's
0: all. सर, आप हमारे श्रोताओं और बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे?
2: मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अपने अंदर की कला को पहचानना है। हर बच्चा संगीत नहीं कर सकता, हर बच्चा डांस नहीं कर सकता, हर बच्चा स्पोर्ट्स नहीं कर सकता। सबसे पहले अपनी कला को पहचाने, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत वो कला पहचान में आ जाएगी, आपको कुछ समय लगेगा, आप कुछ टाइम चीज़ों को सीखना पड़ेगा। अगर आप उसमें नहीं सक्सेस हो रहे हैं तो उसमें मेहनत करना है, या फिर सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो फिर अपनी कला या हो सकती है दूसरी जगह हो, तो उसमें आपको जाना है। तो मेन बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि बचपन से अपनी कला को पहचाने और उसमें आगे बढ़ने के लिए अपने माता पिता का सपोर्ट लेकर जहाँ पर भी आपको सीखने को मिले, स्कूल में, अपने समाज में, जहाँ पर भी सीखने को मिले वहाँ पर सीखे।
0: अच्छा बच्चों, आप सभी ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी और अपने बारे में बताया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू।
4: बच्चा नहोनी, अभी हम स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित भेंट वार्ता सुनी रहा था। तो बच्चा नहोनी, अब जानी ले जिज्ञासा। बच्चा नहोनी, कदी कदी आप सभी का मन में ये बात जरूर आती होएगा कि मोबाइल जादूगर डाकिया की तरह हमारी बात ख तुरंत दूसरा व्यक्ति तक कसो भेजज। तो जानी ले कि जब हम बोलांज तो मोबाइल हमारी आवाज ख अदृश्य रेडियो तरंग न बदली कर हवा का माध्यम से तेजी से पास का मोबाइल टावर तक पहुंचावज। फिर टावर से ये आवाज तार अरु इंटरनेट का जरिया दूसरा व्यक्ति का मोबाइल तक पहुंचज, जी उनका सिग्नल रख फिर आवाज में बदली देज। तो बच्चा नहोनी, अब आप जानी गया होएगा कि किना प्रकार ये जादुई डाकियो हमारी आवाज का तुरंत दूसरा व्यक्ति तक पहुंचावज। न बच्चा नहोनी, अब आप सभी का इंतजार होएगा आज की कहानी को। तो आओ चला कहानी की ओर। कहानी छे आरव नामक बच्चा की, जी तीसरी कक्षा में पढ़तो थो। वो अपनी कक्षा को सबसे होनहार बच्चो थो, पर ओ में एक कमी ही थी कि उस सबई काम नख बाद में करना की सोचतो थो, न कल पर टाली देतो थो। जब भी ओका घर वाला आरव ख पढ़ना का लेन कहता था तो बोलतो थो कि पढ़ाई काल करी लेऊंगा, न आज का काम ख कदी भी आज नहीं करतो थो। आरव धीरे धीरे बड़ो हुयो, नव को जन्मदिन आयो। जन्मदिन पर आरव का दादा नव ख घड़ी लाई न दी। दादाजी ने आरव ख घड़ी दई न कहो, आरव ई कीमती घड़ी छे, कदी तू में चलना वाला समय की कीमत समझी गया तो जीवन में कदी भी पीछे नहीं रहोगा। आरव न हसी न घड़ी पहनी ली न खेलने चली गयो। अगला हफ्ता में आरव को विज्ञान को टेस्ट थो, जेमा आरव ई सोचतो रहो कि कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा। न टेस्ट की तारीख का एक दिन पहले जब वो ऊपर न बैठे हो तो घर में बिजली चली गई, जेका सी वो पढ़ी नहीं पायो। न की परीक्षा में कम अंक आया, जेका सी इना बार वो कक्षा में अपनी जगह नहीं बनाई पायो। न रोतो रोतो घर आयो, न दादाजी सी लिपटी गयो, न दादाजी सी कहो कि हूँ समय की दौड़ में हारी गयो, न आगा का लेन दादाजी सी कहो कि अब हूँ कभी भी आलस नहीं करूँगा, न आज को काम काल का ले नहीं छोड़ूंगा। न धीरे धीरे ओणा ई आदत अपना भीतर डाली ली, न वो हर काम में समय पर करने लगयो, न जीवन में एक बड़ो अधिकारी बन्यो। तो बच्चा नहोनी, आप सभी भी समय की कीमत का समझो। बच्चा नहोनी, कदी कहानी सी हमख सीख मिलज कि समय सबसे कीमती चीज आए, समय का हम दोबारा वापस नहीं लाई सकता है, एकालेन आज का काम ख आज अज करनू चाहिए। ना बच्चा नहोनी, आओ अब सुना जीवन लता खेड़े को गायली सिंगाजी भजन।

बचनौनी अभी हमने जीवनलता खेड़े को गायल सिंगा जी भजन सुनियो। नए बचनौनी ई गीत का साथ है। आज का कार्यक्रम को समय भी पूरा हुयो, तो आज्ञा देव अपनी बहन प्रतिमा खर राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कोपल कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे है। अब हम अनुप्रसारित करेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
1: तहे दिल से स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

कार्यक्रम का आगाज हमने किया फिल्म गमन की इस गजल के साथ। गायिका थी छाया गांगुली। इसे लिखा था मखदूम मोहिउद्दीन साहब ने और धुन बनाई थी जयदेव ने। जगजीत कौर की आवाज में हम आपको फिल्म बाजार की ये रचना सुनवा रहे हैं। मिर्जा शौक की रचना है और खयाम साहब की धुन।

जगजीत कौर को अभी आपने सुना फिल्म बाजार में। और लीजिए अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना, आवाज चित्रा सिंह की है और फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म गजल का ये गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और धुन बनाई है मदन।

ग्यावस थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आवाज लता मंगेशकर की फिल्म का नाम है लेकिन। गीत को गुलजार साहब ने लिखा है और धुन बनाई है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

मैटिनी शो के इस ताजा तरीन अंक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आज के इस अंक को लेकर दोस्तों, फिल्मी दुनिया में फिल्मी पर्दे पर फिल्मी गीतकारों ने हमारे आभूषणों पर बहुत सारे गीत लिखे और नायिकाओं को वो आभूषण पहनाकर हमें बहुत ही आनंदित किया है ना। तो ऐसा ही एक आभूषण है झुमका। जी हाँ, झुमका, जिस पर हमारे फिल्मी यानी यूं कहीं फिल्मकारों ने और फिल्मी गीतकारों ने बहुत सारे गीत लिखे और पर्दे पर फिल्माए। तो आज उन्हीं गीतों को लेकर हमने इस मैटिनी शो को आपके लिए चुना है। जी हाँ, झुमका। झुमका शब्द आते ही कितने सारे गीत आपके कानों में गूंज गए होंगे ना। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, और न जाने ऐसे कितने सारे गीत। जी हाँ, तो झुमका एक आभूषण नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सौंदर्य का प्रतीक भी है। कानों में झूमते हुए और छन छन की आवाज करते हुए ये सुंदर झुमके हर पहनावे की शोभा बढ़ा देते हैं। तो आज मैटिनी शो में ये झुमके कहर ढाने वाले हैं।

जी हाँ, मिला है किसी का झुमका, तो ये झुमका मिला था फिल्म परख में और आवाज लता मंगेशकर ने दी थी, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत दिया था सलील चौधरी ने। अब जब बात झुमकों की चली है तो ये तय है कि आपने एक झुमके के बारे में जरूर सोचा है। वही गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो जाहिर है जब झुमका बरेली के बाजार में गिरा होगा तो फिर उस बाजार में जाकर हम झुमका जरूर खरीदेंगे। तो आप भी बरेली के बाजारों से झुमका खरीदने की अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ कई खास डिजाइन के झुमके हमें मिल जाते हैं। अगर हम फिल्मी इतिहास की बात करें तो झुमका गिरा रे गाने ने बरेली के झुमकों को दुनिया भर में मशहूर कर दिया था, है ना। और ये गाना 1966 की फिल्म थी मेरा साया, अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया ये गीत था। और सच पूछा जाए तो ये झुमके आमतौर पर जो बरेली के झुमके हैं काफ़ी बारीक नक्काशी और रंग बिरंगी मीनाकारी मोती और कुंदन के काम के साथ पेश किए जाते हैं। तो झुमका गिरा रे गाने ने बरेली के झुमकों को दुनिया भर में मशहूर कर दिया था, है ना। और ये गाना 1966 की फिल्म थी मेरा साया, अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया ये गीत था। और सच पूछा जाए तो ये झुमके आमतौर पर जो बरेली के झुमके हैं काफ़ी बारीक नक्काशी और रंग बिरंगी मीनाकारी मोती और कुंदन के काम के साथ पेश किए जाते हैं।

0: स्थिर रहती है।
1: वो क्या? वो ये कि नारीत्व संस्कृति और परंपरा के प्रतीक के रूप में झुमकों का जो आकर्षण है वो हमेशा नारी के मन में बना रहता है। और जब हम झुमका शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्लासिक घंटी के आकार के आमतौर पे सोने चांदी या बारीक कारीगरी से भरपूर झुमके याद आते हैं। और आजकल तो बहुत सारे जो हैं आर्टिफिशियल झुमके भी हमें मार्केट में मिल जाते हैं। आप चाहें तो कोई भी झुमका अपनी पसंद का ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। हाँ, ये याद रखिएगा, पारंपरिक झुमके कभी पुराने नहीं होते।

निगाहों ने मार डाला है जान मन तेरी, निगाहों ने मार डाला, निगाहों ने मार डाला, होए होए धूप है चंदा, जुल्फ है फंदा, बंदा बेहाल है, हाथ में छल्ला, सर पर पल्ला।

बिन दिल का ये बंगला पड़ा है सोना, ये बंगला पड़ा है सोना, तेरे बिन दिल का ये बंगला।

मैगी होती है और एक भारी और भरा हुआ लुक देती हैं। कुंदन और पोलकी झुमके भी आते हैं और ये राजस्थानी और मुगल स्टाइल के शाही झुमके होते हैं जिनमें कीमती पत्थर और रत्नों का काम होता है। इसके अलावा मल्टी चेन झुमका, इसमें झुमके के साथ एक चेन जुड़ी होती है जो कान के ऊपरी हिस्से में पिन हो जाती है, जिससे कानों को एक भारी लुक भी मिलता है और कानों पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ता है। इसके अलावा डेलीवियर झुमके, जिन्हें आप रोजमर्रा के काम में पहन सकते हैं। अगर आप हल्का और छोटा झुमका पसंद करती हैं तो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सबसे अच्छे होते हैं झुमके। और मोती झुमका यानी पर्ल, ये क्लासी होता है और एलिगेंट होते हैं, जिनमें सफ़ेद या रंगीन मोतियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत तरह के झुमके बाजार में मिलते हैं, ये आपको सोचना है कि आपको किस तरह की डिज़ाइन इन झुमकों में पसंद है। पर हाँ, देखिए ना, आपको चाहे कोई भी झुमका पसंद हो, लिखने वाले ने यानी फिल्मी गीतकार ने झुमकों के बारे में बहुत खूब लिख दिया है।

जी हाँ, ये गीत फिल्म पायलट ऑफिसर से हमने लिया था और सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया था। आनंद बख्शी के बोल थे, रोशन की धुन थी। तो बात चल रही है आज झुमकों पर, और झुमके तो कई तरह के डिज़ाइन और स्टाइल में आते हैं और हर मौके और आउटफिट के अनुसार चुने भी जाते हैं। जब बात स्त्री की आती है, औरत की पसंद की आती है, तो नारी इन झुमकों को हमेशा प्राथमिकता देती है। और ट्रेंडी झुमके बहुत तरह के बाज़ार में हमें मिलते हैं, जिसे आप खरीद सकते हैं और अपने कहना चाहिए आउटफिट में धारण कर सकते हैं। जैसे चांद वाली झुमका, ये चांद के आकार का होता है और इसके नीचे सुंदर घुंघरू या मोतियां लटकी होती हैं। साड़ी या लहंगे के साथ ये बहुत अच्छा लग सकता है। टेंपल झुमका, ये साउथ इंडियन स्टाइल के झुमके होते हैं जिन पर देवी देवताओं या पारंपरिक आकृतियों की नक्काशी भी होती है। एक मीनाकारी झुमका है जिन पर रंग बिरंगे फूल और डिज़ाइन की पेंटिंग या नक्काशी की जाती है। एक आता है लेयर्ड झुमका, इनमें एक के नीचे एक कई परतें, लेयर्स या घंटियाँ

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2:00।
1: जय घोष वंदे मातरम।
0: लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: दोस्तों, हमारी फिल्मों में, हमारे फिल्मी गानों में हमारी संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। हमें हर गहने पर कई फिल्मी गीत सुनने को मिलते हैं, पैरों से लेकर सिर तक। न जाने कितने महत्वपूर्ण अलंकारों पर हमारे गीतकारों ने गीत लिखे हैं। अब देखिए ना, हम बात कर रहे हैं झुमके की, साथ ही अगर हम बात करें पैरों में पहने जाने वाली चांदी की पायल की, तो ये भी एक लोकप्रिय आभूषण है जिस पर काफी गीत लिखे गए हैं। नहीं नहीं, हम आपको पायल से संबंधित कोई भी गीत नहीं सुनवा रहे फिलहाल, तो हम आपके लिए आज झुमका ही लेकर आए हैं। लेकिन हम बता रहे हैं कि कितने सारे अलंकारों पर हमारे फिल्मी गीतकारों ने इन गीतों को लिखा और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को यूं आगे बढ़ाया।

कहते हैं झुमका गिरना आसान है, लेकिन झुमके को ढूंढना बहुत गंभीर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम आपको बता दें, एसडी बर्मन का संगीत था, आनंद बख्शी के बोल थे, युगल स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के थे फिल्म जुगनू के लिए। तो बात चल रही झुमकों की, अगर आज के इस माहौल में हम बात करें तो बहुत तरह के झुमके हमें फैशन के तौर पर मिल सकते हैं। ऑफिस के लिए अगर हम चाहें तो हल्के झुमके जो रोजाना हम पहन सकते हैं, छोटे छोटे झुमके लाइट वेट गोल्ड के, या जो है आर्टिफिशियल झुमके भी आप पहन सकते हैं, पसंद किए भी जा रहे हैं, कुंदन के, पर्ल के, शादी लहंगे, शादी में खास तौर पर लहंगे और खास जो कपड़े आप पहनते हैं उसमें आप कुंदन का वर्क किए छोटे छोटे मोती जड़े जो है झुमके भी पहन सकते हैं। इसके अलावा सुई धागा ईयरिंग्स भी मिल रही हैं, और ये जो डिज़ाइन है लंबी पतली चेन और नीचे छोटे डिज़ाइन के साथ साथ आती है, जो इंडियन और इंडो वेस्टर्न दोनों तरह का लुक देती है और हमें अच्छी भी लगती है, खासतौर से यंगस्टर्स के कानों में तो ये बहुत अच्छी लगती है। और कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं और कैजुअल जो आउटिंग्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो काले और सिल्वर मेटल के बड़े झुमके मिरर वर्क वाले भी पहन सकते हैं और अपनी सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग मिडिल सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया

0: है कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए गीतकार कैफी आजमी के कुछ गीत चुने हैं।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था हंसते जख्म। गीतकार कैफी आजमी थे और संगीतकार थे मदन मोहन।

ये स्वर लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है आखिरी खत। कैफी आजमी के बोलों को संगीत से सजाया है खयाम साहब ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नौनिहाल से लिया है। गीतकार कैफी आजमी के बोलों को संगीत में ढाला है मदन मोहन ने।

0: यह आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की और फिल्म का नाम था नौनिहाल।
1: अरे सुनो।
2: हाँ?
1: सावधान रहना।
2: क्यों, क्या हुआ, कोई चोर डाकू आगे हैं क्या?
1: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
2: अच्छा।
1: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
2: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
1: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
2: तो?
1: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
2: अच्छा,
1: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
2: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
1: क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतकार कैफी आजमी की गीत रचनाएं। आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म गोरा का ये गीत।

हेमंत कुमार को अभी आपने सुना फिल्म कोहरा में। कार्यक्रम का अगला गीत कमल मित्रा के संगीत निर्देशन में आशा भोंसले और हेमंत कुमार का गाया हुआ है। फिल्म का नाम यहूदी की बेटी।

कार्यक्रम में आप सुनिए खय्याम साहब का संगीत, कैफी आजमी की बोल, सुलक्षणा पंडित की आवाज और फिल्म का नाम संकल्प।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म क्षमा से, आवाज सुमन कल्याणपुर की। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की, फिल्म का नाम है अर्थ।

फिल्म अर्थ की गजल अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। हेमंत कुमार का संगीत, कैफी आजमी की बोल, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम अनुपमा।

लीजिए, कार्यक्रम में आप सुनिए खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। ये फिल्म है शोला और शबनम।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था शोला और शबनम। लीजिए अब सुनिए मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है हकीकत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। जी हाँ, हम आ गए हैं आपका अपना कार्यक्रम लेकर सुरीला सफर। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सुरीला सफर में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जिंदगी का ये सफर उतार चढ़ाव भरे एक खूबसूरत सुरीले गीत जैसा ही तो है, जो अपने अनोखे तजुर्बों और अनुभवों से भरा हुआ है। यानी हर लम्हा एक नई धुन की तरह आता है, जिसमें सुख दुख के सुर मिलकर इस यात्रा को यादगार बना देते हैं, है ना? तो आज का ये सुरीला सफर कितना यादगार बन जाएगा, क्योंकि आज हमारे श्रोताओं ने उस सफर में घुसकर उन गीतों को ढूंढ लिया है जो गीत आज हमने आपके लिए चुने हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमने आपको थोड़ा सा क्लू दे दिया था ताकि सरल हो जाए वो बात जो आप चाहते थे, और आपने वो कर भी दिखाया, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम दो महिला गायिकों द्वारा गाए गए गीत पर आधारित है। यानी इनमें दो महिला गायिकाओं ने अपनी आवाज़ दी है, और आप सभी जानते हैं कि हमारी फिल्मों में एक खास जगह रखते हैं वो गीत जहाँ दो अलग अलग महिला आवाज़ें आपस में मिलती हैं और वे गानों में एक अलग ही ऊर्जा और मस्ती और भावुकता भर देती हैं। तो ऐसे कई शानदार गीत हैं महिला जुगलबंदी से में, जो गायिकाओं में अनोखा तालमेल हमें देखने और सुनने को मिलता है। लता जी की बात करें, आशा जी की बात करें, उषा जी की, गीता दत्त की, सुमन कल्याणपुर की, कमल बारोट की, न जाने कितनी ऐसी आवाजें हैं आज इस सुरीले सफर में हमारे साथ। और ये सभी गीत, जैसा कि हमने आपको बताया, एक ही संगीतकार चित्रगुप्त साहब यानी

महान संगीतकार चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में गाए गए गीत हैं। तो हमने आपको थोड़ा सा जब ये बता दिया था तो आपने उन गीतों को ढूंढ भी लिया है। हाँ, कुछ श्रोताओं ने कहा है कि भाई अभी भी हम इन गीतों को नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई बात नहीं, आज इस सुरीले सफर में आप शामिल हुई ना हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। चित्रगुप्त साहब का संगीत, प्रेम धवन के बोल, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजें। फिल्म का नाम है तूफान में प्यार कहां।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था तूफान में प्यार कहां। हमारे श्रोता आज बहुत खुश हैं और लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आपने विविध भारती के सुरीले सफर में आज की इबारत को कुछ स्पष्ट करके आसान कर दिया है। जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं, बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और बजने वाले गानों का निर्णय हो ही गया समझो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने इबारत की जगह खुद गीतों के शब्द लिख दिए और उसमें यह भी लिख दिया कि सभी गीतों के संगीतकार एक ही हैं और ये सभी गीत दो महिला गायकों के स्वर में होंगे, तो वैसे बहुत मुश्किल तो हो गया है। इबारत में शब्दों को ढूंढकर हम कई गीत सही लिख देते थे, लेकिन आज की परीक्षा मुझे लग रहा है और कठिन है। मैं दावे के साथ लिख रहा हूं कि बहुत ही कम श्रोता ढूंढ पाएंगे। बस एक शब्द गोरी पे दो महिला गायकी ढूंढ पाया हूं, बाकी गीतों पर नजर दौड़ाई तो संगीतकार भी अलग अलग दिमाग में आ रहे हैं। उफ, कर दिया दिमाग का दही। अरे इतना दिमाग को खराब करने की जरूरत थोड़ी है, ये कार्यक्रम तो मनोरंजन का कार्यक्रम है, मनोरंजक कार्यक्रम है आपके लिए, है ना। इसमें हमें अपने दिल और दिमाग को बहुत ही शांत और सुकून से भरा रखना है, तभी तो ये सफर सुरीला बन पाएगा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने इबारत पर से इबारत न लिखकर सभी श्रोताओं की इच्छाओं

वो साकार कर दिया है, खूब अच्छा लगा। जो बात हम चाहते थे वही हो गई। आज मैं गीत सूची तैयार न करते हुए सिर्फ जो गीत बजने वाले हैं उसे सुनने का लुत्फ उठाऊंगा, क्योंकि जो गीत सुनवाए जाने वाले हैं उसके संगीतकार चित्रगुप्त होंगे, जो मेरे पसंदीदा संगीतकारों में से एक है। बचपन से इनके रचे गीत सुनकर मेरे दिल की धड़कन रंग लाती है, आपके दिल की धड़कन भी रंग लाती होगी। ये विविध भारती के दायरे, ये दोपहर का समा, ऐसे में क्यों न जुड़ जाए हम वहां, मिलते हैं दोपहर एक बजे। क्या बात है, हमारे जो श्रोता है वो गीतकार भी बन गई है लगता है, और शायर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ श्रोताओं के और हम पढ़ेंगे विचार, जहां उन्होंने कुछ गानों को बिल्कुल सही रूप से समझा है। ये गाना है फिल्म परदेसी का, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की ही हैं, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार वही चित्रगुप्त साहब।

जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने अपने विचार लिखे हैं और खुश भी हैं कि आज थोड़ी सी तब्दीली उन्हें अच्छी लगी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, उन्होंने अपनी हर एक फिल्म को अद्वितीय ढंग से मेलोडी प्रदान की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज हम आपके साथ रहेंगे, अभी हमारा मन कुछ उदास सा है, क्यों भाई? तो लिखने का मन नहीं है, पर हाँ, आज के पेपर को सरल कहें या कठिन समझ में नहीं आ रहा है। ये जरूर है कि यदि हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पेपर सरल हो ही जाएगा, और अगर साथ में आप हैं तो इतने काबिल श्रोताओं का तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वैसे भी हम सब विविध भारती की पाठशाला में रोज इतना कुछ पढ़ते हैं कि सवाल के जवाब न भी दे पाए ऐसा हो नहीं सकता, जरूर देंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये जो रोचक परिवर्तन किया गया है, इससे श्रोताओं को आसानी हुई है और उनकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी। अब किसी को एग्जाम का अनसीन पैसेज हल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, दो गायिकाएं तो लता मंगेशकर और आशा भोसले ही हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी शंकर जयकिशन में से एक लग रहे हैं, बाकी श्रोता अपना दिमाग लगाएंगे। इस परिवर्तन से मैं आज खुश हुआ हूं और विविध भारती का आभारी हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज एकदम अनोखा, निराला और अभिनव प्रयास किया है आपने, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। कार्यक्रम में विविधता ही उसकी पहचान बनती है, जो बरबस श्रोताओं को खींच लाती है और श्रोतागण भी आनंद पूर्वक हिस्सा लेते हैं। इस कार्यक्रम में हमेशा विविध भारती अव्वल रही है, याददाश्त और दिमाग की कवायद सभी की शुरू हो चुकी होगी। देखें किन किन सौभाग्यशालियों के हाथ बटेर लगती है। दिलचस्प कार्यक्रम का बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने संगीतकार चित्रगुप्त के संगीत से सजे लग रहे हैं। तेरी आंखों में प्यार मैंने देख लिया, गौरी तू लाख छुपा, आपने कई गानों का यहाँ जिक्र किया है, तो सुनिएगा आज की गीतमाला आपकी गीतमाला से मिलती है कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर लगता है बहुत आसान है पर बहुत कठिन है। मुझे ज्यादातर गानों के बारे में पता चल गया। एक बात बता दूं, सभी गानों के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, अब गाने और फिल्मों के नाम भी इन्होंने बताए हैं, तो आप देखिएगा आपकी जो ये प्लेलिस्ट है उससे हमारी प्लेलिस्ट कितना मिल खाती है, बताइएगा और लिखिएगा, हमें इंतजार है, ठीक है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़ा अलग सा दिमाग की परीक्षा लेने वाला सुरीला सफर है। ये अंदाज है कि आज चित्रगुप्त जी के संगीत निर्देशन से हमारा सुरीला सफर तय होने वाला है। आपने भी कुछ गीतों के नाम लिखे हैं और उनका जिक्र किया है, तो पता लगाइए आज हमारी पसंद क्या आपकी पसंद से मिलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस भीषण भरी गर्मी में विविध भारती के नीचे मधुर गीतों के जरिए शीतलता मिलेगी और ये सफर सुहाना होगा, बिल्कुल सुहाना होगा ये सफर इस गीत के साथ। और इस गीत के बाद मैं आपसे दो सवाल पूछूंगी जिसका उत्तर भी आपको तैयार रखना है। उषा मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है नई जिंदगी, प्रेम धवन की बोल और चित्रगुप्त का संगीत।

तो ये गीत आपको कैसा लगा? सुंदर गीत लगा ना, बहुत ही खूबसूरत गीत था। और हमारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं। आप लिखते हैं कि संगीत का ये सफर वाकई बहुत सुरीला और दिलचस्प है। आपने जो सुराग दिए हैं, एक ही संगीतकार, दो महिला गायिकाएं और ये 12 विशिष्ट शब्द, ये सीधे तौर पर भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम यानी गोल्डन एरा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन शब्दों और शर्तों को जोड़ने पर जो नाम सबसे ऊपर उभरता है वो है संगीतकार ओपी नैयर साहब का या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जी नहीं, आज हम आपको एक ही संगीतकार जो कि चित्रगुप्त साहब हैं, उन्हीं से जुड़े गीत सुनवा रहे हैं। यानी चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में आज जिन दो महिला गायिकाओं ने जुगलबंदी की वो गीत हमने आपके लिए चुने हैं। फिर भी आपने प्रयास किया, सबसे बड़ी बात यह है। आप लिखते हैं कि आशा भोंसले और गीता दत्त की जोड़ियां हैं, इस तरह के बहुत सारे सदाबहार गाने हैं जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है। और आपने कुछ गानों का जिक्र किया भी है। देखिए आपके गाने हमारे गानों से कितना मेल खा रहे हैं, गौर कीजिएगा और हमें लिखिएगा जरूर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चित्रगुप्त सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वे उस सुकून, ठहराव और मेलोडी का नाम है जो आज भी रेडियो पर बजने पर हमें एक खुशनुमा जमाने में वापस ले जाते हैं। महान संगीतकार चित्रगुप्त भारतीय सिनेमा के वे अमर गायक शिल्पी थे जिन्होंने बिना किसी भारी भरकम वाद्य यंत्रों के शोर के अपनी सादगी और दिल को छू लेने वाली धुनों से संगीत को नवाजा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार तो चित्रगुप्त हैं और प्रत्येक गाना दो फीमेल सिंगर्स का गाया हुआ है। आपने भी कुछ गाने लिखे हैं। बिल्कुल, आपके गाने हमारे कुछ गानों से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। देखिए कौन कौन से गाने हैं, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती के सुरीले सफर में इबारत से कुछ चीजें स्पष्ट करके आसान किया आपने, जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं, बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और गानों का निर्णय हो ही गया, समझो। अरे वाह, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, सरल नहीं कठिन।

है आज की गीतमाला, आपके दो प्रश्नों से ज्यादा भी कठिन है। अरे अभी तो दो सवाल हमारे आए ही नहीं है, कैसे कठिन हो सकती है। आज तो हमने आपको शब्द दे दिए थे और साथ ही बता दिया था कि एक ही संगीतकार पर केंद्रित है ये शब्द और दो गायिकाओं पर, मतलब दो जो जुगलबंदी है महिला गायिकाओं की जुगलबंदी होगी। कितना सारा तो बता दिया था आपको और हमारे कई श्रोताओं ने पकड़ भी लिया है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज का सुरीला सफर ने दिमागी तापमात्रा बढ़ा दी है, संभावित गानों का शब्द अनुरूप कयास लगाना कष्टप्रद है, इन्हें ढूंढने में श्रोता बंधुओं के कमेंट्स कारगर सिद्ध हो रहे हैं। आज श्रोता बंधुओं के लिस्ट के अनुसार ही हम भी चलने वाले हैं। चलिए तो आज के दो सवाल, वैसे दो सवाल नहीं है लेकिन इन्हीं सुरीले सफर से जुड़े ये सवाल हैं। चूंकि आज आप सुन रहे हैं कुछ गीत, तो इनसे इतर आपसे कुछ पूछ लिया जाए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसे मुझे एक गीत बहुत पसंद है, जब जब तुम्हें भुलाया तुम बहुत याद आए, है ना ये गीत, जहां आ रहा फिल्म का, लता मंगेशकर और आशा भोंसले की जुगलबंदी है। तो इस तरह के और भी गीत जो हैं महिला जुगलबंदी वाले गीत, वो आपको कौन कौन से गीत पसंद हैं या याद हैं उसका जिक्र जरूर करें। और एक सवाल हमारा ये है कि संगीतकारों के बारे में बताइए, ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो गीत आपको पसंद हैं। जैसे कि आज हमने चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जुगलबंदी गीत लिए हैं। ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे गीत गवाए हैं। आप बताइए कौन से ऐसे संगीतकार हैं जो आपको पसंद है या उनके गाने आपको याद हैं। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर के इस गीत की ओर। चित्रगुप्त साहब का संगीत, पंडित भरत व्यास के बोल हैं, सुमन कल्याणपुर और कमल बारूट की आवाजें हैं। इस बार फिल्म का नाम है महाभारत।

आज की सवाल एक बार फिर से दोहराए देते हैं। पहला सवाल हम आपसे ये कर रहे थे कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने अपनी पसंद का गीत आपको बताया, फिल्म जहां आरा का लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाए वो गीत जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, है ना। ठीक उसी प्रकार और भी बहुत सारे गीत हैं, तो आपको कौन सा गीत पसंद है या बताइए कौन कौन से गाने पसंद है। और एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं इसका जवाब कि संगीतकारों में बताइए ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो आपको याद हैं वो गाने, या वो गाने आपको बहुत पसंद हैं। जैसे आज हम चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जो महिला जुगलबंदी वाले गीत लेकर आए हैं, ठीक उसी प्रकार और भी संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गीतों की रचना की है। बताइए वो कौन कौन से गीत हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि 1 बजे जब सुरीला सफर शुरू होगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और श्रोता दिमाग पर कम जोर डाले, सुरीले गीतों का आनंद लें और गीत भी पहले से अधिक बजेंगे। धन्यवाद विविध भारती, धन्यवाद मुझे। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं लगाना है कि हमें बुरा लगे या हमें गुस्सा आ जाए या हम तनावग्रस्त हो जाए। बिल्कुल मनोरंजक कार्यक्रम है ये, आपके मनोरंजन के लिए इसका आनंद उठाइए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये बहुत अच्छा नया प्रयास है, शब्द आपने दे दिया और हिंट भी दे दिया है, तो कोशिश भी हमारी बनी रहेगी। और वही आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि लगता है आज आपने यू टर्न मार दिया है, सुरीला सफर का ये पैटर्न भी अच्छा है, अब फिर परीक्षा होगी जानकारी बता पाएंगे, चलो चले सुरीले सफर पर मंदाकिनी जी के साथ। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गेंद आपने डाली है वो गुगली जैसी लग रही है, लेकिन यॉर्कर भी हो सकती है या फिर वाइड हो सकती है, बाहर निकल जाएगी, ज्यादातर बल्लेबाज असमंजस में है। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, आज तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आप लोग, देखिए ना फटाफट हमारे कुछ श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही गाने चुने हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं होता उन सभी गानों का जिक्र यहाँ करने का, वरना आपको बताते कि आज बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने सही चुने हैं। एक श्रोता ने लिखा है आज शायद यही गाने बज पाने वाले हैं, बेहद अच्छा, आज शायद यही गाने बजेंगे, आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, बेहद हिम्मत वाला काम है, अगर ऐसे गाने शामिल होंगे तो कार्यक्रम की रोचकता बनी रहेगी और कुछ हर रोज बजने वाले गानों से अलग सुन सकेंगे, बेहद नायाब चयन है, आपने हमें धन्यवाद दिया है। और बिल्कुल आपके कुछ गीत तो हमारे प्लेलिस्ट से बिल्कुल मेल खा रहे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, आप सभी श्रोताओं को जो आज की जो सुरीला सफर की ये प्लेलिस्ट है उसमें आप शामिल हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार चित्रगुप्त मखमली धुनों और सादगी के मसीहा थे, भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में जहां एक तरफ शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, SD बर्मन जैसे दिग्गजों का दबदबा था, वहीं एक ऐसा संगीतकार भी था जिसने बिना किसी तामझाम के बेहद सादगी और गहराई से भरपूर संगीत दिया, उनका नाम था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त श्रीवास्तव हिंदी सिनेमा के उन अनमोल रत्नों में से एक हैं जिनके गीतों की मिठास आज भी कानों में मिश्री घोल देती है। बिल्कुल सही कहा, और वही मिश्री घोलने वाले गीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगला गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है, इस बार आवाजें हैं गीता दत्त और उषा मंगेशकर की, और ये फिल्म है माँ बाप।

जी कितना खूबसूरत गीत था, है ना। अच्छा, इस गीत को आपने पहले कभी सुना था बताइएगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वे आज तो भैया इस भरी गर्मी में थोड़ी सी भी यदि ठंडाई की बात करूं तो वो है विविध भारती, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में अच्छा मैं आई हूं तो गानों की बौछार होगी। गानों की बौछार तो हमेशा ही होती है और मन आनंदित होगा। सचमुच ही कल की गीतों भरी कहानी सुनी जिसमें एक ऐसा प्रसंग आया जहां मुझे रोना ही आ गया था। धन्य विविध भारती जो ऐसे प्रसंग लाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला गाना एकदम अनसुना सा था, यहाँ तक कि सिनेमा का भी नाम नहीं सुना था। तूफान में प्यार कहां, सिर्फ विविध भारती के पास ही ऐसा कलेक्शन हो सकता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सबसे अलग होता है, इस महारथी आपको ये महारत आपको हासिल है। अच्छा, मुझे बहुत शानदार सुंदर, क्योंकि सुने कौन सा संगीत, गीतों से हम भीषण गर्मी में ठंडक महसूस कर रहे हैं, मस्ती और आनंद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं आपको मुझे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार और सभी मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज परीक्षा में पेपर अनुमान से ज़्यादा आसान आ जाता है तो खुशी के मारे जो याद किया था वो भी भूल जाते हैं। दूसरे आसान पेपर की मार्किंग भी हार्ड होती है। श्रोताओं में बहुत से शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वे सब मेरी बात का समर्थन करेंगे। अब नंबर देना आपके हाथ में है, देखें आप कितना लिबरल रहती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने आज सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सुरीला सफ़र की पोस्ट का इंतज़ार किया, फिर मैं अपनी नौकरी के लिए निकल गया। 10:30 बजे नौकरी पर पहुंचकर कुछ घंटे काम किया, उसके बाद 12 बजे मैंने सुरीला सफ़र की देखी, फिर श्रोता मित्रों की पोस्ट देखी, तब मालूम पड़ा आज सुरीला सफर महान और अमर संगीतकार चित्रगुप्त जी पर केंद्रित है, साथ में 2 गायिकाओं पर भी। दुकान पर पहुंचकर गीतों को, शब्दों को पढ़ा, मेरे लिए समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने हमारे इस सवाल का जवाब देते हुए बहुत सारे गीत लिखे हैं, गोरे गोरे और बांके छोरे, लता मंगेशकर और समाधि फिल्म का आपने ये गाना लिखा है, बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ में प्रेमलता हैं इनके, जिसका जिक्र आपने नहीं किया है। वहीं एक श्रोता ने दूसरे गाने लिखे हैं, लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज़ में जो जुगलबंदी वाला गीत है, लिखते हैं ये गाना मेरा फेवरेट है, फिल्म उत्सव का, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा और मेरे महबूब में क्या नहीं अपलम चपलम, ये सभी गीत मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। बहुत सही आपने गीतों का चयन किया है। जी हाँ, तो हमारे श्रोता बताएं कि कौन से ऐसे गीत हैं जुगलबंदी वाले, महिला जुगलबंदी वाले जो उनको पसंद हैं, उनका जिक्र वो करें, साथ ही उन संगीतकारों के बारे में बताएं जिन्होंने अपने संगीत निर्देशन में ये महिला जुगलबंदी वाले गीत लिए हैं और संगीतबद्ध किए हैं।

जैसे आज हमने चित्रगुप्त साहब को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रेम धवन का लिखा ये गीत सुनते हैं। चित्रगुप्त साहब की संगीत रचना है, सुमन कल्याणपुर और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं। ये फिल्म है गेस्ट हाउस।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा लता जी और कमल बारोट की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में है। वहीं मन क्यों बहका लता जी और आशा जी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। और काश किसी दीवाने से हमको भी मोहब्बत हो जाए। अच्छा, काश किसी दीवाने को है हमसे भी मोहब्बत हो जाए। आप में से और को का थोड़ा सा अंतर कर दिया है। और ये गीत भी आपको पसंद है, लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ है। वहीं आप लिखते हैं, तुमको पिया दिल दिया और कजरा मोहब्बत वाला और तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। ये सभी गीत आपको बेहद पसंद है, बहुत सुंदर गीतों का चयन आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन रात जले अखियां परदेसी, उषा मंगेशकर और आशा भोंसले, ये गीत हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत निराला है और बहुत बढ़िया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपने कमाल की गुगली फेंकी है। अच्छा, आपने हम तो क्लीन बोल्ड हो गए, आज हमारी बत्ती गोल डब्बा गोल है। आप तो बस मधुर गीतों का रसा स्वादन कराइए और हम मधुर गीतों का आनंद लेने वाले हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है

कि हमें सफर में, तो सफर सुरीला कैसे नहीं होगा अगर आप हैं हमारे साथ। तो आज आप आई प्रोग्राम में तो गीतों की बहार आ गई है। आप लिखते हैं कि ओ गोरे बांके छोरे गीत पसंद है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कजरा मोहब्बत वाला, ये सभी गीत हमें बेहद पसंद है जो दो गायिकाओं द्वारा गाए गए हैं। साथ ही आपने लिखा है एक श्रोता ने कि मनभावन के घर गाए जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, लता जी और आशा जी की आवाज में। शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी गीतों की चॉइस कितनी बड़ी है, मन बहुत खुश हुआ। अच्छा, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही बढ़िया है, दो फीमेल गायिकाओं के गीत कितने बढ़िया और कितने ताल सुर में। परदेसी का गाना सुन के बहुत ही बढ़िया लगा, चित्रगुप्त जी का संगीत बोले तो बहुत मधुर संगीत, क्या कहने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी थीम कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी हो हम आपको विविध भारती जरूर सुनेंगे, इस तपतपाती गर्मी में गानों के जरिए ठंड का एहसास हमें थोड़ा तो होगा। आप इतनी शिद्दत और प्यार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, सराहते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। चलिए अगला गीत सुनते हैं, चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में। इसे आर कृष्णा ने लिखा है, इस बार स्वर है गीता दत्त और उषा मंगेशकर के, और ये फिल्म है कंगन। हमने शब्द दिया था लिख पढ़, वही है ये गीत।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अभी जो गीत हम सुन रहे थे फिल्म गेस्ट हाउस का सबसे शानदार गाना शीला वाज और अन्य अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। कितनी खूबसूरत और गहरी जानकारी आपने हमें दी है, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप चाहे मना करें, मैं आपकी तारीफ करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि आज यादों की महफिल में मेरे तीन पसंदीदा गाने

एक साथ सुनवाए गए। कुछ दिल ने कहा जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, और मैं ये सोचकर जा रहा था। बिल्कुल, ये गाने तो बहुत ही खूबसूरत थे और कैफी आजमी की रचनाएं थी, तो पसंद तो होंगी आपको। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदगी के महिला युगल गीत में एक इन्होंने कुछ गानों का जिक्र किया है, सखी रे सुन मोरी पपीहा उस पार। अच्छा, फिल्म मिस मैरी का ये गाना आपको बहुत पसंद है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि जिस देश में गंगा बहती है का क्या बात तू मुझे क्या बताइए गाना पसंद है। गर्जत बरसत सावन आयो रे और बरसात की रात फिल्म का जो एक जमाने में उसका अंश संगीत रचना के परिचित धुन में शामिल था। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मैडम काफी खुश है और काफी हंसमुख लग रही है। अच्छा और वही एक श्रोता ने लिखा है कि एक परिवर्तन से ही कार्यक्रम में श्रोता फ्रेंडली हो गए हैं, आगे गीतों के लिए दिलचस्पी और उत्सुकता बढ़ गई है। और आज का ये कार्यक्रम चित्रगुप्त साहब और दो गायिकाओं तक ही सीमित है, इससे हम बड़े खुश हो गए हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि अपलम चपलम और मन भावन के घर जाए गोरी ये गाने बहुत पसंद है हमें। वही एक श्रोता ने मन क्यों बहका रे सखी ये गाना पसंद किया है, चुपके कौन आया मेरे अंगना, काश किसी

श्रोता लिखते हैं कि जिस देश में गंगा बहती है का क्या बात, तू मुझे क्या बताइए गाना पसंद है, गर्जत बरसत सावन आयो रे और बरसात की रात फिल्म का, जो एक जमाने में उसका अंश संगीत रचना के परिचित धुन में शामिल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मैडम काफी खुश हैं और काफी हंसमुख लग रही हैं। अच्छा और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक परिवर्तन से ही कार्यक्रम में श्रोता फ्रेंडली हो गए हैं, आगे गीतों के लिए दिलचस्पी और उत्सुकता बढ़ गई है और आज का ये कार्यक्रम चित्रगुप्त साहब और दो गायिकाओं तक ही सीमित है, इससे हम बड़े खुश हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपलम चपलम और मन भावन के घर जाए गोरी ये गाने बहुत पसंद है हमें। वहीं एक श्रोता ने मन क्यों बहका रे सखी ये गाना पसंद किया है, चुपके कौन आया मेरे अंगना, काश किसी दीवाने को और आएगा हमारे गांव कोई आएगा, इन सभी गीतों को पसंद किया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है मन क्यों बहका रे बहका और हुजूर आला जो इजाजत हो, ये युगल महिला गीत वाले जो स्वर गीत हैं ये हमें बेहद पसंद आते हैं। जी तो आज के सुरीला सफर में हमने आपके सफर को थोड़ा सा आसान कर दिया और आप लगभग हमारे साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत।

जी तो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मेरे पास करीब 20,000 गानों का संग्रह है और लगातार पुराने गीतों को ढूंढकर संग्रह को मैं और बढ़ा रहा हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ताथैया करके आना मेरे जादूगर, ओ सैया, गीता दत्त, लता मंगेशकर, इकबाल कुरैशी, फिल्म पंचायत का गीत और कौन रंग मुंगवा लता मंगेशकर और सुधा मल्होत्रा का, संगीतकार रोशन साहब और रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, ये गीत इन्हें बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गीत तो पहली बार सुना है, वैसे मुझे डोला रे डोला फिल्म देवदास का गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वाह वाह, मेरा एक गीत मैच कर गया है, निकला है गोरा गोरा चांद रे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कचरा मोहब्बत वाला आंखियों में ऐसा डाला शमशाद बेगम और आशा भोंसले की गायकी बहुत पसंद है। युगल गायिकाओं में कुछ लोगों ने अपलम चपलम, हंसतावा नूरानी चेहरा, तेरी महफिल में किस्मत आजमाकर, मन क्यों बहकाई सभी गीतों को पसंद है किया है। और वहीं एक श्रोता ने कहा, आपने पूछा कि कौन से युगल गीत पसंद है, फिल्म शिकारी का युगल गीत तुमको पिया दिल दिया, फिल्म पारसमणि का गीत हंसतावा नूरानी चेहरा, उत्सव का गीत मन क्यों बहकारी बहका हमें बेहद पसंद आता है। चलिए तो आपकी पसंद को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी पसंद इतनी लाजवाब है। और अब कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को फिल्म हम मतवाले नौजवान में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है चित्रगुप्त।

तो दोस्तों आज का सुरेला सफर यहीं तक, और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज लाखों करोड़ों की भीड़ में भी कई बार इंसान अपने को अकेला पाता है। आधुनिकता के इस दौर में छोटे होते जा रहे परिवार के कारण अकेलेपन की समस्या आम बात हो गई है। ऐसे में अगर हम अपने लक्ष्य पर, अपनी प्रगति पर ध्यान देंगे तो हमारा अकेलापन हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी शक्ति बन जाएगा। देखिए ना, चांद रोज रात को आकाश में अकेला ही अपने सफर पर निकल पड़ता है, बिना थके, बिना हारे।

अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के अलावा अकेलापन दूर करने का एक सरल उपाय है। अपने जीवन में किसी को अपना हम ख्याल बना लें, हम सफर बना लें, ऐसा प्रयास करके तो देखें। जिंदगी एक नए रूप में, नए रंग में मुस्कुराती नजर आएगी।

लेकिन आज के जीवन की आपाधापी में कोई आपका साथ न दे, कोई आपकी पीठ न थपथपाए, आपकी सफलता पर तालियां न बजाए, तो फिक्र की क्या बात है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका सच्चा हितैषी तो ऊपर वाला होता है। ऐसे में अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिए, आप अकेले ही पूरी दृढ़ता के साथ प्रगति के पथ पर बढ़ सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, जो दितोर डाक्षुने के उनाशे तबे एकला चलो रे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें।
1: साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा, यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहाँ तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे।
0: आज 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। पूरे देश से चुने गए यह नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे कई अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिंगरौली जिले के प्रवास पर हैं। वह यहां जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे और भव्य सिंगरौली महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का

0: भूमि पूजन करेंगे और भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में सम्मिलित होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री एनटीपीसी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान जिले के विकास के लिए 513 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में तीव्र लू को लेकर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं ग्वालियर सहित 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल प्रदेश के 10 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। छतरपुर जिले का नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा खजुराहो में 46.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों से लू से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने से बिजली बिल अधिक आता है, लेकिन कुछ तरीके अपना कर बिजली बिल में कमी की जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि एक शोध से यह साबित हुआ है कि एसी का तापमान 26 डिग्री पर सेट करने से बिजली बिल में 30% तक की कमी हो सकती है। शोध के अनुसार प्रत्येक डिग्री तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्पिल्ट एसी की ऊर्जा खपत में 6% की कमी आती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आगरमालवा जिले में गंगा दशहरा के अवसर पर जल स्रोत पूजन एवं कलश यात्राएं निकाली जाएंगी। शिवपुरी जिले में विकासखंड कोलारस, नरवर, पिछौर, खनिया धाना समेत अन्य स्थानों पर जन अभियान परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर जल स्रोतों के बचाव को लेकर जागरूक किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
3: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत

0: बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को

0: उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च

0: क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये था पहला गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और धुन बनाई थी SN त्रिपाठी ने।

0: साहिर लुधियानवी की लिखी यह कव्वाली अभी आपने सुनी। मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ें थीं। एन दत्ता का संगीत था और फिल्म नाम था साधना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
3: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
4: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आशा भोंसले, शमशाद बेगम और साथी फिल्म का नाम हम पंछी एक डाल के। गीतकार हैं पी एल संतोषी और संगीतकार एन दत्ता।

0: हम आएंगे तुमको वहाँ बचाने को।
1: हम आएंगे,
2: हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे।
3: लेकिन सब में था होशियार एक बूढ़ा सा सियार, बोला अपनी दुम

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज और ये फिल्म है मधुमती, शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी।

मधुमति फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और सैक्यू की आवाजों में सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत, आवाज आशा भोंसले की, शब्द हसरत जयपुरी के हैं और धुन ओपी नैयर की है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की रचना सुनिए। गायक गायिकाएं हैं आशा भोसले और गीता दत्त, और ये फिल्म है अदालत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। हेमंत कुमार का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर हैं। फिल्म का नाम है चंपाकली।

प्रस्तुत है कार्यक्रम मनचाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके मनपसंद गीतों का। तो पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं ये। कहाँ से लिखा है आपने? आपने लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से, पूजा खटक बिमला देवी शंभुदयाल खटक ने। और इसी ये खत हमें मिला है कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से, योगेश गुजराती, रेखा गुजराती। और ये खत हमें मिला है बीकानेर से और राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान के थे श्रोता जिनका नाम हमने पढ़ दिया है। आप है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनगर, रेणु जीनगर, अजय, प्रिंस और कुलदीप। आप सभी सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद पक्षी का लिखा गीत, आवाज़ मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है जीने की राह।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है। और उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी। नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पमार, डैनी पमार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीपल्स पद्मा आकाशवाणी, या आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड।
1: आप हैं लिखने वाली गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ से, जिला धमतरी से, चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू। यानी ये खत है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। हमें उम्मीद है आपने अपना नाम सुन लिया होगा। और ये खत मिला है गाजियाबाद से, नंदग्राम गाजियाबाद से, बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद का। और वनुजा तांडा से सानिका राठौड़, एस आर टेलर, जय राठौड़, सुनील राठौड़, इंदुबाई राठौड़ और कुमार आशीष का। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले को फिल्म परवाना में। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और संगीत

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडोसरा ने प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: आदि की जय।
1: आप सब यथास्थान विराजें, कार्यवाही आरंभ की जाए।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
1: आने दिया जाए।
4: महाराणा की जय।
5: राणा हाड़ा जी ने ये पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
1: मंत्री जी,
2: अन्नदाता,
1: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
2: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अतीत सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
1: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
2: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
1: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
2: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
1: महामंत्री जी, ये क्या कह रही हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
2: महाराज,
1: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
2: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस उगते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। बानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं भी नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
1: चूड़ावत जी।
6: महाराणा,
1: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
6: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया। पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है। वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा स्वीकार कर लूं इस चुनौती को।
1: हम आपको ये चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
7: जी। महाराज,
1: राणा हाड़ा को यह शुभ संदेश दे दो कि हमें यह संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी।
2: जी महाराणा।
1: सामंत चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
2: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगे तो पागल हो जाओ।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखलावनी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल कहाँ है तेरी भाभी।
2: अरे तारा, कहाँ चली गई?
0: सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा तारा
2: आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
3: आइए सामंत, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?

0: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
2: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ, ऐसे
3: यहाँ। यहाँ क्या करना होगा मुझे?
2: ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
3: अच्छा,
2: नववधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
3: अच्छा
2: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
3: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
2: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
3: इसके सिवा और मैं मांग ही क्या सकती थी?
2: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
3: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
2: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर, यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरू, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठाकर ले जाएंगे। हाँ,
3: अरे रे,
2: बुलाओ भैया।
3: मैं जाती हूँ।
2: तारा सुन
4: जी,
2: भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
4: जी हाँ, सामंत तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे।
2: बस खूब मजा आएगा।
3: कितना सुंदर कक्ष है ये, पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है। और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी, प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है। आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई। अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं।
1: नहीं।
3: कौन?
1: स्वागत है।
3: ओह, आप यहाँ?
1: हाँ प्रिय, मैं यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भरी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा, तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे
3: ना,
1: हाँ, अब ठीक है। हाँ, देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख पर ये मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
3: स्वामी, मेरे देवता,
1: सच
3: मैं तुम्हारी पुजारी।
5: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
1: तुम सच मुझे कितनी सुंदर हो
5: नगर की राजकुमारी
1: चंद्रमुखी।
5: और मैं तुम्हारा
1: पागल चकोर,
5: अपनी विशाल सेना
1: जी चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहूं।
5: नगर के राजा ने
3: स्वामी
5: हमारे महाराणा से
3: पागलपन
5: सहायता की रानी,
3: और सुनिए
1: रानी, महाराणा के तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं। मेरी रानी।

0: मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया।
1: स्वामी,
0: कमल के कोमल संपुट में बंद भंवर की तरह हैरान हूँ, मुक्त हूँ।
1: सुना आपने?
0: इधर
1: स्वामी।
0: प्रिय,
1: छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ।
0: प्रिय, मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी अप्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई है?
1: स्वामी, सुनिए नगाड़े की ध्वनि। राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
0: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
1: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
0: प्रियतम,
1: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
0: प्रिय, जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं, कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो, विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अट्ठास और संगीत की मधुर लहरी में यह भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था, तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका, सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगी।
1: स्वामी, ये केवल आपका मोह और वासना है।
0: रानी,
1: प्रेम प्रेरणा देता है, मोह विचलित करता है।
0: रानी,
1: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
0: हाँ रानी, मैं विचलित हो रहा हूँ। मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी ना हुई थी। क्या करूं?
1: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
0: रानी ठहरो,
1: आप इस पुष्पशैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती
0: हूँ। ठहरो रानी,
1: यह हरवंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है, मैं जाती हूँ।
0: रानी ठहरो।
1: नहीं
0: रानी, सुनो तो।
1: नहीं सामन, नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर यह कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था, रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मधुर सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं नहीं सामंत, नहीं, मैं आप पर एक कलंक का नहीं सह।
0: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
1: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी, एक राजपूत बाला के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी, कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामंत की वीरता कायरता के बंदी खाने में बड़ी तड़प रही है।
0: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा?
1: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके भाल पर रक्त तिलक कर दूंगी। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
0: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा, तुम मेरी रग रग में समा गई हो, मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ, सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा
1: ना, ना।
0: तो तुम्हारा ये रूप यौवन
1: ऐसा न कहिए प्रियतम, यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी, आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
0: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
1: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आपको यह शौर्य विजय दे।

0: जितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में, पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका, क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ये यौवन रूप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है, साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओह, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृकुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: वह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित हो उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, तारा देख तो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
2: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रही है? इस हाड़ जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रणसिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी। ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को न दी होगी। विजय मार। तारा, तारा
3: आई। आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
2: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार तेरी सहायता चाहती हूँ।
3: ये क्या कर रही है?
2: तारा, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे। मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर तारा।
3: रानी जी, मुझे छोड़कर मत जाओ।
2: पगली, रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिकता कर, रणसिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला, ला सिंदूर ला। अरे, तेरे हाथ कांप रहे हैं, ठीक से मांग तो भर दे। ऐसे, दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे, अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था

लग रही हूँ। पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता बता ना। अरे फिर रोती है ला ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सामंत की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शीश रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस अब बहुत विलंब हो रहा है, जल्दी कर लाकर ठहरिए रानी जी, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए।

सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सावन की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शीश रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस अब बहुत विलंब हो रहा है, तारा जल्दी कर लाकर ठहरिए रानी जी, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है, मेरा भग्न शीश रण सिंह को दे देना। और कहना कहना रानी ने हमें विजय माल समझ के लिए दी है। विजय माल

0: तारा, तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी, लीजिए, हाड़ी रानी ने सामन के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख लें और सामन तक शीघ्र पहुंचा दें।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं तारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
2: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
0: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
2: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
2: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
2: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
2: हमें सब स्वीकार है, पर सेनानी तो दिखाओ।
0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
2: रण सिंह जी, क्या लाए हो? ये क्या किया तुमने रण सिंह?
0: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक न लगे।
2: रण सिंह, मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया। हाड़ी रानी, तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण सिंह। मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो। मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है। भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों, आगे बढ़ो।

0: अच्छा की सेना उल्टे पैर भाग रही है।
1: सच रण सिंह, हम विजयी हुए?
0: हाँ सामंत, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामंत,
1: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। मैं चाहता हूँ मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी। मैं चाहता हूँ
0: सामंत, आप कहाँ दौड़े जा रहे हैं? सामंत ठहरिए, ठहरिए सामंत।
1: रानी सुना तुमने, हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो, रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा।
2: जी सामंत।
1: रानी जी कहाँ है? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
2: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
1: हाँ, रानी, मेरी हाड़ी रानी, मेरी विजय माल

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना। प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
0: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
1: जी जी।
0: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
1: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था। लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफ़ी छोटा तब से काम कर रहा हूँ, और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था, 120 बहादुर के लिए ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन लिया, पर वो उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था, और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया, जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने, और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ।
0: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था, और अपने माता पिता के बारे में बताइए।
1: जी जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
0: क्या बात।
1: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था, और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं, बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
0: अरे,
1: और मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है, और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश मैं सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। देशर पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने, और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता, और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था। चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे, और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे, और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुस पाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती मैं, आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठते थे, और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिए, 8-10 हज़ार रुपये उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें। हाँ। तो उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
0: अरे वाह वाह।
1: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे, पर हारमोनियम रहता था, बजा तो कोई नहीं था। तो फिर वो हमारा घर जस्ट बगल में था, तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था, और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि गाने के आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है, जिनमें मेरे पिताजी
0: चबूतरे में हुआ,
1: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया, और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए। सो मैं ये बोलूंगा कि मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरी माँ भी किसान है, और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोलें तो हम, बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
0: कितने दूर है छतरपुर से ये गाँव?
1: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पर पड़ता है, तो बसारी के आगे है पहरा।
0: ओके।
1: बहुत ही छोटा सा गाँव है सर। बहुत ही।
0: कितनी क्लास तक वहाँ पढ़े आप?
1: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय, जिसका नाम था जीजा औरे, बुंदेली फिल्म थी। उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव, जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर हुआ करती थी उस समय तक। जीजा औरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आ रे भैया जी जाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका, टाइटल सॉन्ग था उसका।
0: अच्छा, जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि

0: साइलेंस लाइट
1: साउंड
0: कैमरा एक्शन।
2: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने।
3: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ

0: जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है?
1: उस पे ऐसे कुछ कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी,
0: हाँ
1: तो इसी तरह से कि कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा उपटा लगत उंगरिया मेरे, कहाँ ले आए
0: उपटा लगे तुंगरिये,
1: उंगरिया
0: क्या
1: मतलब
0: बात
1: ना,
0: है।
1: कहाँ ले आए राजा
0: क्योंकि
1: पहाड़िया में,
0: मतलब
1: लाइक
0: बुंदेलखंड,
1: कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए, ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है। ये
0: हाँ
1: पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो लंपा लगत चुनरिया मेरे, कहाँ ले आए, कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बम्बई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो
0: हाँ
1: लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
0: तो
1: तो
0: मजा आ गया मुझे सुन
1: बहुत ही
0: के
1: मजा आ गया, वो तो बहुत
0: तो।
1: मजा आ गया। तो
0: हाँ
1: यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
0: हाँ
1: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल, फरवरी में लगभग 1 महीना 21 दिन चलता था वो।
0: अच्छा
1: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे MP के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद,
0: अरे
1: और मैं
0: बाबा,
1: क्लास में पढ़ता था उस समय।
0: ठीक है।
1: उस में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम वो
0: हाँ
1: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे, छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे,
0: तो
1: लाइक
0: बुंदेली में था ये।
1: अब बुंदेली में नाटक था, अब
0: हाँ
1: मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है, क्योंकि मैं एक तो मैं पहला नाटक था मेरा, तो
0: हाँ
1: उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया। और मैंने अभी बात भी किया इस तरह का, जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ।
0: वाह।
1: तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ, फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफ़ी
0: ओ
1: बड़े
0: वो तो
1: एक्टर
0: पन्ना
1: हैं,
0: के ही
1: जो
0: है।
1: पन्ना के ही हैं। तो
0: हाँ
1: वो NSD से पास आउट होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे, हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो अंग्रेज़ आते हैं, गोरे, 5 स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उनने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चलनी है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहाँ पर 1 महीने रहना है।
0: हाँ
1: तो शिल्पग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है,
0: अरे
1: इन्हें
0: वाह,
1: कहीं देखा है, तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना, और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं वो, क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया, और इतना अच्छा काम निकल के
0: और
1: आया।
0: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल है।
1: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफ़ी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मैं मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूँ, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुंचना है।
0: डायरी में लिख गया।
1: हाँ, तो मैं लिख
0: अरे
1: लिया कि
0: क्या
1: अब ये
0: बात
1: मुझे
0: है।
1: पहुंचना है NSD। तो फिर वहाँ
0: अभी
1: से
0: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
1: जी,
0: यहां एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
1: हाँ जी, हाँ
0: तो
1: जी,
0: जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे, आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहां बजाया जाए।
1: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम,
0: गोविंदा
1: गाना
0: की
1: गाना सुनता,
0: फिल्म।
1: तू पागल प्रेमी आवारा, दिल
0: हाँ
1: तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे, ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए
0: क्या बात
1: ओए।
0: है।
1: तो ये कुछ गाने हैं जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
0: बिल्कुल, वो एक जहन में बसे
1: बहुत
0: होते
1: ही,
0: हैं और ये उस दौर की याद लेके
1: जी
0: आते
1: जी
0: हैं।
1: जी हमने
0: बातचीत
1: बहुत देखा
0: करेंगे।
1: है फिल्म को,
0: वाह।
1: बहुत देखा है फिल्म को हम, मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
0: हाँ,
1: गुंडा,
0: क्या
1: जो
0: बात
1: भी
0: है।
1: CD पे जो भी मिलता था देखते, सर जो भी मिलता था देखते, वो

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है जो तब तक NSD में हैं और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए और वो एक शिविर लगाते हैं और वहां से आपको एक राह दिखती है।
1: जी जी।
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा जिसका परिचय नहीं है, उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुंचना है।
0: उसके आगे क्या होता है?
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूँ तो अब मुझे तो कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहां मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस चले
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th-10th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं NSD की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहां पहुंचा। उसमें मेट्रो बन रही थी तो मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिससे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुंचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था। मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया, फिर मैं NSD के गेट पे पहुंचा और मैं NSD मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली है, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है, और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया है। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी, रिटायर्ड फौजी थे वो
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने कि मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। तो कह रहे हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कह रहे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी

0: दस क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा सर नहीं नहीं सर मैं आऊँगा, मैंने बोला कि मैं आऊँगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था,
1: हाँ वो छोटा वाला,
0: छोटा वाला फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी।
1: हाँ
0: तो मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है, बस
1: रिकॉर्ड कर दो,
0: इसमें रिकॉर्ड कर दो, 1 मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो, एक्सेस किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए, जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं।
1: अरे गजब,
0: तो तुम अनुशासित हो।
1: 1 मिनट में सब बोल
0: सब बता दिया, ये करके आना पड़ेगा तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा। तो मैं कॉलेज में,
1: इस शहर में था
0: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा। और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर सत्यनाग नाटक किया, और भी नाटक जो भी वो कराते थे उससे जुड़ गए। और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ है, वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं, इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, हम तो कुछ भी कर देते हैं,
1: बिल्कुल
0: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा, अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो आपको? कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हैं, हेमंत भाई
1: बिल्कुल,
0: हाँ आप जानते होंगे, बहुत बढ़िया कभी,
1: बिल्कुल बिल्कुल, विहान ग्रुप,
0: हाँ विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं, कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर है अलख नंदन सिन्हा जी, मैं अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं एमए के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी, और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं, और मैं वैसे ही जा रहा हूं, मेरे घुटने कांप रहे हैं, और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोच रहा हूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फोन कर रहा हूँ, अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा?
1: बिल्कुल,
0: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूंगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपका फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा, और फिर एक बंदा
1: रोशनपुरा चौराहे,
0: हाँ एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये एक पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने बोले हमारे यहाँ तो पैर बड़ों के पैर छूते हैं, उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया। और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं, और 1 घंटा हो गया,
1: पहले हेमंत आया,
0: हेमंत दादा आए पहले, और अच्छा। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदेले और तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले, और तुमने बोला तुम गाने आने गाते हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले। और मैं अतरंगी था सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहने हुए, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर ही रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बैठे बैठे पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं, और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं बंदा पढ़ ही रहा है आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये, उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूं।

0: सर, मैं बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे को, ये मुझे ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उनने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं सर कुछ भी करूंगा मैं, आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल से साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेटरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहां पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना। और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ, तो उनने बोला कि अच्छा अच्छा तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे, और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई, उस महफिल में सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको?
1: जरूर।
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, वो पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कईया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने,
1: वाह वाह,
0: मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मिला जाने,
1: क्या बात है।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं,
1: बिल्कुल।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेलाना जा पाहो उनखा आके तिनगाने,
1: वाह वाह,
0: आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने,
1: वाह वाह।
0: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए, ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया ले बुआई, और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने,
1: कहते हैं देवेंद्र।
0: उस समय ये बुंदेलखंडी कभी गानों में कभी जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे, छाप है, तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी, और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया बोल ली, और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था, खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस ये खाना हो गया,
0: खाना हो गया। और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल फिर साफ करना है, चढ़ाइयां बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना, और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था कि भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत खराब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे वो करने को मिला, मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो, तो यार ये मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे वो भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के

काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में चल का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी, जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, ऐसे ने अवॉर्डी हैं वो, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में, हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहाँ पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे, सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे, तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया। सर देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया और मैं ऐसे इंस्पायर हो, इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था, दिखती है आस क्यों पाखे पसारे, ऐसे में है मन क्यों

0: क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की और लिखने
1: क्या
0: भी शुरू
1: बात
0: किए,
1: है,
0: क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज
0: और
1: करना शुरू किया या लिखना शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना दिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का 7-8 मिनट का एक 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान
0: हाँ,
1: सुनेंगे।
0: पता चलेगा
1: तो
0: सर।
1: बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा गाना,
1: ओमकारा का गाना
0: ओमकारा
1: है।
0: गाना है
1: बहुत
0: कि बहुत ही
1: शानदार गाना
0: सुंदर
1: है,
0: गाना है, बहुत ही
1: बहुत
0: सुंदर
1: शानदार
0: गाना
1: गाना
0: है।
1: है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र
1: जी।
0: आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा।
1: हाँ,
0: तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया। तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेलवी गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहां पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था। उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है, सुबह का भूला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भूला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था। उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
0: म्यूजिक का सिलसिला चल
1: चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होकर दिल्ली आ जाना, मेरे ग्रुप में काम करना।
0: अच्छा,
1: तो एक ब्रिज में लिया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है
0: डेस्टिनेशन। वो बोर्ड
1: वो तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटे नहीं है।
0: हाँ,
1: वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था।
0: अच्छा,
1: पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ।
0: अरे
1: मैंने कहा अरे यार। तो फिर मुझे पढ़ने का वहां पे मौका मिला और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था। 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए

0: और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ, और तो
1: ओके,
0: उसके बाद मैं दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम
1: लेकिन
0: किया,
1: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
0: हो गया,
1: और वहीं वो
0: और वो
1: धुरंधर जी
0: धुरंधर जी
1: मिले
0: से मिलना हुआ मेरा,
1: मिले धुरंधर जी।
0: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक। मैंने
1: हाँ
0: बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, यार ऐसे वो मनगढ़ंत कहानी सुना रहे थे। वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग
1: हाँ
0: ऐसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहां पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे
1: बिल्कुल
0: दुनिया में होता है।
1: जी,
0: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब आप
1: हाँ,
0: वो
1: परिवार
0: प्यार
1: के एक
0: मिलता, परिवार के
1: सदस्य।
0: सदस्य हो, सीनियर सदस्य हो आप, तो
1: हाँ
0: उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है, और फिर वो रिटायर्ड हो गए, तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहां भी हूँ, बहुत ही अच्छे थे वो।
1: एनएसजी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
0: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे, बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मेरा डायलॉग खत्म, मेरा
1: बस
0: रोल भी खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी, क्योंकि
1: अच्छा,
0: मेरे
1: लेकिन
0: को,
1: ये फिर भाषा पर काम कैसे किया, ये
0: हाँ
1: बहुत
0: मैं
1: महत्वपूर्ण
0: बता
1: है।
0: रहा हूं कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था, शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था, तो लोग हंसते थे, तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मेरा बहुत बड़ा मसला है। हाँ, तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की, मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके, मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा, मैं गलत बोलता था,
1: शक को सा बोल रहे हो।
0: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता, जो राजीव जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया, जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड बैंड है उसमें गाना है ना, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा को सही बोला था, शामिल बोला था। मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोलना था, इतने दिन से तुमसे यही तो बुलवाना चाह रहे थे हम।
1: ओके
0: तो
1: ओके,
0: ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया, और मैंने एक बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया, और डायरेक्ट कर रहे थे अनिरुद्ध खुटवर सर, और मैंने मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया, और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे, और लगातार बोलना है,
1: वाह
0: और
1: वाह
0: कैरेक्टर
1: वाह,
0: बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज जो मैं नहीं करता था सब उसको करना है, मैनरिज्म पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया, और उस समय मुझे समझ में आया कि यार मैं जहां से बिलोंग करता हूं, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूं, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियां कौन कहेगा। तो फिर मैंने वहां से अपना रुझान बदला, और मैंने डिजाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया, सेकेंड ईयर से आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया, और फिर मैं उस तरफ आ गया, और फिर मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ उस जमीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं, और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ, लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते हैं इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
1: बिल्कुल।
0: तुम्हारी एफर्टलेस का मैं दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा
1: तो
0: पूरा।
1: फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर के बाद किए आपने?
0: अभी दिल्ली पहुंचा, उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
1: बंसी कॉल,
0: बंसी कौल जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया।
1: मुखौटा।
0: हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लार्ज लाइव थिएटर करते थे, और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था, और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने, और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने, वाटर स्टेशन, जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे, तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: देखे हमने, अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने, और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं, और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं, और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज़्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं। तो
1: वहां
0: हमने
1: से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?

0: मैं पास आउट हुआ 17 में, और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया, और वो थिएटर ओलंपिक हुआ, उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1,000 लोग देखते थे, और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिजाइन किया था, और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहां से एक रेल की पटरी निकलती है और वहां पे एक गार्ड रहता है और वहां पे फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफी गाने ऐसे पॉपुलर हुए, वो मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिए किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे, वो बहुत बड़ा नाम था उस डायरेक्टर का, और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था, 12 बजे के आसपास, एनएसडी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ, सर सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुंचे, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे, मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं, कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ, पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे, पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया।
1: और यहां से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे ही शुरू होता कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बता था कि वहां हर हाल में पहुंचना है, जहां जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस, जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता है एक आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, हाँ वो क्योंकि रेडियो को अंदा था, तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है, और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये इसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है, तो कांजी हाउस में उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए, और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है।
1: और उसका एक गाना सुनाओ यार,
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको,
1: बिल्कुल
0: सुनाता हूँ मैं आपको, उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, मैं एक इसकी छोटी सी कबीरी बात आ देता हूँ कि
1: बिल्कुल
0: एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है, और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये, एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती, उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के
1: बदल दी
0: बदल दी उस पर एक कहानी है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद
1: वो
0: है,
1: क्या कर
0: तो वो
1: सकता है?
0: क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है, तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है, क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहां कहां पहुंचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या
0: पै
1: बात
0: पै
1: है,
0: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी,
1: वाह,
0: सुबह उठा तो का

0: सुबह उठा तो कान के नीचे गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या
0: अरे
1: बात
0: बता,
1: है,
0: ये
1: क्या
0: टाइटल
1: बात
0: सॉन्ग
1: है,
0: है।
1: बढ़िया गाना है।
0: जी।
1: कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
0: सर जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं। और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने भी बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कोम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो हैं, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, एनएमसीसी में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर।

0: और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कोम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो है, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, एनएमसीसी में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है। अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी
1: वो
0: जी
1: एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब
0: जी
1: सीरीज
0: जी
1: में?
0: स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिगी। जिगी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की को के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिगी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा।
1: बेचारा
0: अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो। अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है। बहुत मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा। वो मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरुजी रोविंद सर
1: बिल्कुल,
0: काम, आशीष विद्यार्थी जी भी उसमें काम कर रहे हैं, तो
1: वाह,
0: काफी लोग उसमें थे। तो उसमें बहुत ही अच्छा था, और उसमें मेरा गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था। गाना उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था।
1: सुनाओ ना।
0: अच्छा, वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है,
1: वाह वाह,
0: काफी ऐसे फन सॉन्ग है। आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या
1: बिल्कुल
0: चाय
1: बिल्कुल,
0: चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह,
0: पी के कहीं तो भूख में फंस गए,
1: वाह क्या
0: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए।
1: सुन
0: उसके
1: रहे थे,
0: लिरिक्स ऐसे हैं, मतलब
1: वाह वाह वाह। देवेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात
0: मेरे
1: करके,
0: को बहुत
1: और
0: खुशी हुई
1: सबसे
0: आपसे।
1: अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए।
0: जी जी जी
1: तो फिर कभी मिलेंगे
0: 100%
1: और आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती
0: बहुत
1: बुलाने
0: बहुत
1: के लिए।
0: शुक्रिया। रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती। मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था, फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर
1: हाँ
0: दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार। और
1: बिल्कुल,
0: बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इतना नहीं है एक रेडियो में, और मैं
1: बिल्कुल,
0: बड़ा मिस करता हूँ इसको। और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जुदैया मैं कहाँ पे कहूँ, जैसे गाने मैंने सुन सुन
1: क्या
0: के बड़ा
1: बात,
0: हुआ हूँ मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ, कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफ़ी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है। और दूसरा, मैं शहर भी रहा हूँ, तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है। और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो
1: क्या
0: गाना नहीं
1: बात है,
0: सुनता, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज
1: वहां
0: आपके
1: से
0: साथ बैठा
1: यहां
0: हुआ
1: तक
0: था।
1: का
0: और
1: सफर है।
0: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके, और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंद दादा ने दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता
1: बिल्कुल
0: रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
1: शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
1: यूपी

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। हवा का एक झोंका पुराने खत खोल गया, भूले बिसरे सारे किस्से आंखों में घोल गया। अब जागते गुजरेगी ये रात हमारी, करवटों में कितनी बातें तोल गया। भीगा हुआ सिरहाना कहता है एक फसाना, जो अब तक कहा ना हमने उसे आंखों से है बहाना।

न होश खुद का न कोई फिक्र है, हर सांस में तेरा ही बस तेरा जिक्र है। फैली कस्तूरी की तरह मेरे आगे पीछे, भटकूं मैं खोजूं कि जाने किधर है। मिलता नहीं सारे बाजार ढूंढा, न जाने खोया कहां मेरा सबर है।

वो गम दिल से लगाए बैठे हैं, हम खुद को भुलाए बैठे हैं। बन गए अजनबी तुम एक पल में, हम सक पकाए बैठे हैं। न कोई शिकवा किया न शिकायत ही कोई, हाथ सीने में छिपाए बैठे हैं। दोष दें भी तो कैसे तुझको, हम खुद चोट किस्मत से खाए बैठे हैं।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। खिलता है चांद रोज, मुस्कुराते हैं तारे, हम इनसे क्या कहें जब तुम ही नहीं हमारे। ना आना था जिंदगी में तो तसव्वुर में क्यों हो आते, कह तो गए थे अब तुम कोई नहीं हमारे। ये बातें तुम्हारी, वो यादें तुम्हारी, करते हैं लाख कोशिश बिसरी नहीं बिसारे, पर तुम हो ही नहीं हमारे।

गम का दिया जला तो जल उठी ये रात, कोई तो पूछे मुझसे मेरे दिल के अब हालात। दिन पत्थर से सख्त लगते, डसे काली नागिन सी ये रात, अब शब्दों में क्या समेटूं मेरे बिखरे हुए जज्बात। आज करो एक वादा मेरे सामने तुम, दिया है गम हमें कोई बात नहीं, पर फिर ना करना ऐसा किसी के साथ।

ये गम किसी का नहीं, खुशी किसी की नहीं, न बहे आंसू मेरे तेरी आंखों से जब तक चोट तुझे लगी नहीं। इस भरी दुनिया में मेरी कोई मंजिल भी नहीं, रास्ता भी नहीं, क्या बताऊं मैं अपनी दास्तां तुझे। तू मेरा दोस्त भी नहीं, हम नवा भी नहीं, मेरा दर्द भी तेरा नहीं और तू मेरी दवा भी नहीं।

0: अभी राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जा रहे थे। शाम के 5:30 होने को है। प्रस्तुत है विभिन्न कलाकारों द्वारा गाए निमाड़ी लोकगीत।
1: आइए चलिए हम कुछ निमाड़ी पारंपरिक सांस्कृतिक गीतों का आनंद लें। सर्वप्रथम गणपति। हमारे देश में कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने से पूर्व गणपति जी का आवाहन किया जाता है, क्योंकि वे अत्यंत सहज सरल और सबकी सहायता करने के लिए तत्पर रहने वाले लोक देवता हैं, जो शीघ्र ही प्रसन्न भी हो जाते हैं और विघ्न बाधाओं को दूर कर कार्यों को सदैव सानंद संपन्न करवाते हैं। इसीलिए कार्य के आरंभ में हम गणेश की पूजा करते हैं और इसीलिए ये मुहावरा है किसी भी कार्य को शुरू करने का, श्री गणेश करना। लीजिए ये पहला गीत।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: बोल गुरु सिंहा महाराज की जय। मानो तेरा गुण।

0: से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: बोल अगर सिंगा

0: अरे बैठना होनी काई हुई गयो आज।
1: हम सुनी रहे आज आकाशवाणी खंडवा निमाड़ की सुरीली धड़कन।
2: न आज तो निमाड़ की सुरीली धड़कन सुनी खना।
3: मजा आ गया।
4: सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।

0: थोड़ा सा इंतजार। गुनगुनाते रहें और सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: अभी आपने सुना निमाड़ी लोक गीतों का कार्यक्रम FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

गुड इवनिंग साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। स्वीकार कीजिएगा विभूति का सस्नेह नमस्कार। दोस्तों, शनिवार का क्रम साप्ताहिक विज्ञान और खेल गतिविधियां लेकर हाजिर है हम आपके साथ आपके रेडियो सेट पर। तो साथियों, जानेंगे क्या कुछ रहा खास इस हफ्ते खेल और विज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। तो साथियों, नोट कीजिएगा आज का पहला प्रश्न। सूरज का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? और साथियों, आज का दूसरा प्रश्न है, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे कार्यक्रम के अंत में। तब तक बने रहिए और सुनते रहिए युववाणी। दोस्तों, बचपन में हम सब ने एक कहानी सुनी थी, खरगोश और कछुए की दौड़। तेज रफ्तार खरगोश को अपनी गति पर घमंड था, जबकि कछुआ अपनी धीमी और स्थिर चाल से आगे बढ़ता रहा और आखिरकार जीत उसी कछुए की हुई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सीख नहीं बल्कि जीवन का संदेश है। धीमी गति से ही सही, लेकिन लगातार बढ़ते रहना ही असली जीत है। दोस्तों, आज है विश्व कछुआ दिवस और इस अवसर पर कछुए को

0: अपनी दृढ़ता, धैर्य और संतुलन के अलावा हम उसके महत्व, संघर्ष और उसके संरक्षण की हमारी जिम्मेदारी की भी बात करेंगे। दोस्तों, धरती पर कछुओं का अस्तित्व करोड़ों साल पुराना है। जब इंसान का नामो निशान भी नहीं था, तब भी ये जीव प्रकृति का हिस्सा थे, जो समुद्र और धरती के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज यही शांत और धैर्यवान जीव कई मुश्किलों का सामना कर रहा है। समुद्र में फैलता प्लास्टिक, नष्ट होते प्राकृतिक आवास और अवैध शिकार, ये सब कछुओं के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुके हैं। जरा सोचिए, जिस जीव ने करोड़ों वर्षों तक प्रकृति का संतुलन संभाला, आज वही मनुष्य की लापरवाही के कारण संकटग्रस्त है। तो आज आइए इस वर्ल्ड टर्टल डे पर संकल्प लें कि इस जीव के संरक्षण के प्रति जागरूकता जरूर फैलाएंगे।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, रुख करते हैं इस हफ्ते की विज्ञान गतिविधियों का। साथियों, भारत की अंतरिक्ष उड़ान के एक बड़े कदम के तहत भारतीय स्पेस स्टार्टअप एस्क्रोवेस अब यूरोप में रॉकेट लॉन्चिंग के लिए कैब बुकिंग जैसा सिस्टम विकसित करने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत दुनिया भर के ग्राहक भारत और यूरोप दोनों जगहों से अपने रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च की ऑन डिमांड बुकिंग कर सकेंगे। यानी जैसे आप मोबाइल से कैब बुक करते हैं, वैसे ही भविष्य में लॉन्च स्लॉट बुक करना आसान हो जाएगा। इटली के वेनिस में हुई अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान भारतीय स्टार्टअप ने यूरोपीय कंपनियों के साथ कई अहम समझौते किए हैं। इनमें वैश्विक ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क, अगली पीढ़ी के स्मार्ट क्यूब सेट, सुरक्षित नेविगेशन सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। खास बात यह है कि इन परियोजनाओं की रिसर्च, डिजाइनिंग और निर्माण भारत में ही होगा। दोस्तों, एक अन्य भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप आका स्पेस अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग और कृत्रिम अंतरिक्ष उड़ान के अभ्यास के लिए देश का पहला अंडर वाटर हैबिटेट प्रोग्राम तैयार कर रहा है। पानी के अंदर बनने वाला यह सेंटर अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां तैयार करेगा। यहां अंतरिक्ष यात्रियों को सीमित जगह में काम करने और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहने जैसे टास्क का अनुभव कराया जाएगा। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने रक्षा क्षेत्र में एक अहम कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने लड़ाकू ड्रोन से दागी जाने वाली एक बेहद आधुनिक मिसाइल का फाइनल टेस्ट पूरा कर लिया है। इस मिसाइल का नाम है ULP-GMV-3। ये मिसाइल किसी भी लड़ाकू ड्रोन से हवा और हवा से जमीन पर लक्ष्य पर सटीक हमला करती है। DIDO ने इस मिसाइल का टेस्ट आंध्र के कुरनूल में किया है। और दोस्तों, आइए आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला गाना।

दोस्तों, भारत ने शुक्रवार को अपनी सामरिक क्षमता को और मजबूत करते हुए अग्नि वन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से शुक्रवार को किया गया। रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक ये परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की देखरेख में 22 मई को संपन्न हुआ। इस दौरान मिसाइल प्रणाली के सभी ऑपरेशनल और तकनीकी मानकों का सफलतापूर्वक सत्यापन किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि रणनीतिक रक्षा क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल देश की निवारक सुरक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाती है और भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूती देती है। दोस्तों, विज्ञान क्षेत्र में अगली उपलब्धि है केरलम सरकार द्वारा देश को समर्पित पहला एआई मंत्रालय। इसकी जिम्मेदारी पी के कुन्हाली कुट्टी को दी गई है। ये मंत्रालय उद्योग और वाणिज्य विभाग के साथ मिलकर काम करेगा। इस पहल का उद्देश्य केरलम को आधुनिक तकनीक और एआई का वर्ल्ड सेंटर बनाना है। दोस्तों, अब बारी एक और गीत की।

दोस्तों इस हफ्ते खेल जगत में भारत ने एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की टीम रैंकिंग में तीसरा और पुरुषों की टीम रैंकिंग में पांचवा स्थान हासिल किया है। ये चैंपियनशिप रविवार को गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में खत्म हुई। ये चैंपियनशिप 11 से 17 मई तक चली और इसमें 30 देशों के करीब 172 एथलीटों ने हिस्सा लिया। चीन महिलाओं और पुरुषों दोनों की ही टीम रैंकिंग में टॉप पर रहा। ओवरऑल मेडल टैली में चीन ने 21 गोल्ड, 12 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज।

मेडल के साथ दबदबा बनाया। उसके बाद डीपीआर कोरिया 18 गोल्ड, 11 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने कुल 10 मेडल जीते, जिसमें एक सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज शामिल हैं। आपको बता दें कि डीपीआर कोरिया की रिसुक को फीमेल बेस्ट लिफ्टर और चीन के यूजी को मेल बेस्ट लिफ्टर चुना गया है। दोस्तों, वेट लिफ्टिंग से बढ़ते हैं फुटबॉल ग्राउंड की तरफ और आपको बताते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन साफ महिला चैंपियनशिप 2026 के लिए प्रारंभिक टीम की घोषणा कर दी गई है। सीनियर महिला राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच क्रिस्पिन छेत्री ने मंगलवार 26 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। ये टूर्नामेंट 25 मई से 6 जून तक पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। टूर्नामेंट के करीब 23 खिलाड़ियों की अंतिम टीम घोषित की जाएगी। ग्रुप बी में शामिल भारत अपने अभियान की शुरुआत उद्घाटन दिन मालदीव के साथ खेलेगा। इसके बाद 31 मई को उसका मुकाबला बांग्लादेश से होगा। वहीं ग्रुप ए में नेपाल, श्रीलंका और भूटान शामिल हैं। दोनों ग्रुप की टॉप टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जो 3 जून को, और उसके बाद 6 जून को फाइनल खेला जाएगा। और दोस्तों, अब एक तड़कता सा गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

दोस्तों, आईपीएल में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया है। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। ईशान किशन ने नाबाद 79 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 56 और हेनरिक क्लासेन ने 51 रन की पारी खेली। जवाब में बेंगलुरु ने 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही

बना सकी। रजत पाटीदार ने सर्वाधिक 56 रन बनाए हैं। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और दोस्तों, चैंपियनशिप में आज लखनऊ सुपर जायंट का सामना पंजाब किंग्स से होगा और ये मैच लखनऊ में आज शाम ठीक 7:30 से खेला जाएगा।

दोस्तों, मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन में भारतीय शटलर अस्मिता चालिया का सफर क्वार्टर फाइनल में हार के साथ समाप्त हुआ। नी इंजरी के कारण 8 महीने बाद खेल में वापसी कर रही 71वीं रैंक की अस्मिता को डेनमार्क की वर्ल्ड नंबर 23 लाइन होजमार्क ने 21-23, 21-18, 21-11 से शिकस्त दी। और आपको बता दें, अस्मिता ने गेम में शुरुआत जोरदार की थी।

दोस्तों, इसी गीत के साथ हमारा आज का साप्ताहिक क्रम साप्ताहिक विज्ञान और खेल गतिविधियां यहीं संपन्न होता है। आपको आज का क्रम कैसा लगा हमें पत्र और ईमेल भेजकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, चलने से पहले आपको बता देते हैं आज पूछे गए सामान्य ज्ञान के दोनों प्रश्नों के उत्तर, जिनमें आज का पहला प्रश्न था, सूरज का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? तो साथियों, इसका उत्तर है रेडिएशन पायरोमीटर से। और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न था, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है, जिसका उत्तर है माउरी। साथियों, अब दे अनुमति आज के कार्यक्रम संपन्न करने की विभूति को। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।

अभी आपने सुना युववाणी FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में

0: आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानो भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के अंदर विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच, पीड़िता की सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास उपायों सहित तत्काल सख्त और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को 27 मई तक केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटवर्ती इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र। सजन रेडियो
2: बजाइयो बजाइयो सारा। जी हाँ साथियों, तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन
1: आकाशवाणी खंडवा।
3: मंगल भवन मंगल हारी।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
1: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
3: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
4: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
3: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
4: क्यों?
3: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
4: वो कैसे?
3: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
4: अच्छा तो इसका फायदा क्या होगा?
3: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे

0: प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं
1: आकाशवाणी खंडवा पर?
2: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
0: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
2: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
0: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
3: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
4: इस रविवार सुबह 7 बजे हमारे श्रोता कार्यक्रम में आपकी मुलाकात होगी।
5: समय बड़ा बलवान है। हाँ। जिसने को समय को पहचाना वो समय के साथ चला और कभी तकलीफ नहीं हुई है।
4: हमारे खंडवा के नियमित श्रोता भूपेंद्र सिंह कुकरेजा यानी मिंटू भाई से, तो सुनना ना भूलिएगा रविवार 24 मई समय सुबह 7 बजे कार्यक्रम हमारे श्रोता।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और आकाशवाणी खंडवा।
2: हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगरौली में 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का मसौदा नियम प्रकाशित किए। और नौतपा से पहले ही प्रदेश में भीषण गर्मी जारी, 31 मई तक और बढ़ेगा पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिंगरौली जिले के प्रवास पर हैं। मुख्यमंत्री ने सिंगरौली में आयोजित कार्यक्रम में 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का पर भी प्रकाश डाला।
2: सिंगरौली की पहचान केवल कोयले से नहीं, अब तो सोने की खदान भी अगर किसी जिले में मिल रही है तो वो सिंगरौली है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, प्राकृतिक रूप से भी सब प्रकार की संपदा के साथ जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे सारी संभावनाओं के बलबूते पर, तो क्या रेल, क्या हवाई जहाज, भविष्य भी आपका और आज भी आपका। ये सौभाग्य अगर किसी का है तो सिंगरौली का है, और अब तो रेल भी चल रही।
0: डॉक्टर मोहन यादव ने इससे पहले बैढ़न में लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमि पूजन किया। यह अत्याधुनिक खेल परिसर क्षेत्र के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रतिभाओं को निखारने एवं खेल संस्कृति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री सिंगरौली महोत्सव एवं नगर गौरव दिवस के आयोजन में भी सहभागिता करेंगे। यह 23 मई से 25 मई तक आयोजित होगा। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री संपतिया उइके, राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया। श्री पुरी ने कहा कि उथले सानू फॉर्मेशन से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रति दिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में गति मिलेगी। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में जुटी है। केंद्रीय मंत्री आज शिवपुरी में आयोजित भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल हुए। श्री सिंधिया ने सोशल मीडिया पर चर्चित कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर तंस कसते हुए कहा कि राजनीति ट्रेंड से नहीं बल्कि जनता के बीच काम करने से चलती है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। यह इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। कृषि कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत

अंतर्गत आगरमालवा जिले में 4 कृषि रथों के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, शासकीय योजनाओं एवं कृषि आधारित नवाचारों की जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में कल जिले के ग्राम निपानिया, बैजनाथ, मालीखेड़ी, कंकडेल, रामनगर, जयसिंहपुरा सहित विभिन्न पंचायतों में तकनीकी टीम द्वारा किसानों को कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने, कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने तथा किसानों की आय दोगुनी करने के उपायों की जानकारी दी गई। अभिनेत्री और मॉडल त्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस ने त्विशा के पति और मुख्य आरोपी समर्थ सिंह को आज भोपाल जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की थी। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज जिले का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने से बिजली बिल अधिक आता है, लेकिन कुछ तरीके अपनाकर बिजली बिल में कमी की जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि एक शोध से यह साबित हुआ कि एसी का तापमान 26 डिग्री पर सेट करने से बिजली बिल में 30% तक की कमी हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया के तहत शहडोल जिले में मकान सूचीकरण और नंबरिंग का काम अपने अंतिम दौर में है। जिले में अब तक 97% काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए संयुक्त टीम ने कटनी जिले के विकास खंड विजय राघवगढ़ के गांवों का भ्रमण कर गर्भवती महिलाओं के ANC पंजीयन, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। देवास जॉब पोर्टल के माध्यम से वेल्सपन लिविंग लिमिटेड द्वारा 3 जून को मल्हार स्मृति मंदिर देवास में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ में गंगा दशहरा पर 25 मई को जिले में जल संरक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैतूल जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 112 संतृप्ति शिविर आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
1: हाँ, जब तक निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा नहीं सुनी लेती है, जब तक तमख चैनन नहीं मिलतो है, तो आप भी सुनी लेओ निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

कार्यक्रम सुनने वाला सबै किसान भाई बहनों का आपका भाई ओम प्रकाश चौरे के राम राम। भाई बहनों ने निमाड़ की खेती हमेशा सी मेहनत मिट्टी और मौसम की साझेदारी रही थी। बदलता जलस्तर बढ़ती लागत और अनिश्चित मौसम न अब खेती में स्मार्ट सोच की जरूरत बढ़ी रही। असो समय ड्रिप सिंचाई पद्धति किसान भाई ना का

ड्रिप सिंचाई पद्धति किसान भाई कल्याण वरदान साबित हुई रही। भाई बहनों ने टपक सिंचाई केवल सिंचाई नहीं है बल्कि सटीक खेती की नई दिशा छे जेमा हर बूंद सीधा पौधा की जड़ तक पहुंचे। ड्रिप सिंचाई से 40-70% तक पानी की बचत, फसल की समान और तेज वृद्धि, उत्पादन गुणवत्ता में वृद्धि करे और इमें एक फायदा और कि इमें कम खरपतवार भी होंगे, बिजली और श्रम लागत में भी कमी आवज न खाद को बेहतर उपयोग भी हुई जाए। गर्मी में भी नमी जी है पौधा का संतुलित मात्रा में मिलती रहे। अपना निमाण क्षेत्र में केला, मिर्च, कपास, पपीता, टमाटर, संतरा और सब्जी फसल में ड्रिप प्रणाली सी किसान भाई ने अपनी कृषि उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोज पारंपरिक सिंचाई में पानी बही जाए और ड्रिप पद्धति से हर पौधा की जरूरत अनुसार नमी मिलज। भाई बहनों ने ड्रिप का माध्यम से घुलनशील खाद सीधा पौधा की जड़ तक पहुंचे जाए। एकासी खाद की बचत और फसल की ग्रोथ दोनों हुई जाए। मल्चिंग प्लास्टिक का साथ ड्रिप उपयोग करना से नमी लेता समय तक बनी रहे और खरपतवार भी कम आवज। टमाटर और जी दूसरी फसल न छे ड्रिप सिस्टम से पानी और खाद दोनों का नियंत्रित न उपयोग संभव छे। ड्रिप का माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्व, जैविक घोल दही करने फसल की गुणवत्ता और बाजार मूल्य बढ़ाई जा सकज। भाई बहनों आने वाला समय में माइक्रो इरिगेशन को होएगा, मतलब एकासी भी कम पानी में हमको खेती करना पड़ेगा और किसान भाइयों ने हर बूंद को मूल्य समझी कर ड्रिप जैसी आधुनिक पद्धति का अपना है तो कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ संभव हो सकेगा। पानी बचेगा तो भविष्य बचेगा, ड्रिप से जुड़ेगा तो खेत की समृद्धि भी बढ़ेगा। भाई बहनों अब सुना एक निमाड़ी लोकगीत जैसे गायज जयराम सावनेर और साथीना।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: भाई बहन नोनी, किसान वाणी कार्यक्रम में हम आपसे एक कृषि संबंधी प्रश्न पूछा है। तो आज को प्रश्न छे, मूंग की फसल का सफेद मक्खी से बचाव का साकारा। इना प्रश्न का उत्तर सोचीगन रखो, वो कार्यक्रम का अंत में हमारा उत्तर से मिलाओ। तो भाई बहन नोनी, आपको जानकारी तो सुना भेंट वार्ता, नींबू की किस्मों का चयन, इना विषय पर प्रगतिशील कृषक पुष्पेंद्र मौर्य से सीमा कर रहे की बातचीत।
7: समय समय पर हम अपने प्रगतिशील कृषकों से उनके कृषि संबंधित अनुभवों से आपको अवगत कराते रहते हैं। इसी क्रम में ग्राम जसवाड़ी के प्रगतिशील कृषक पुष्पेंद्र सिंह मौर्य। पुष्पेंद्र सिंह मौर्य, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
8: नमस्कार
7: मौर्य जी, जैसा कि हमारा विषय है कि नींबू के बगीचे के लिए किस्मों का चयन कैसे करें, आप कितने वर्षों से इन नींबू वर्गीय फसलों की खेती करते आ रहे हैं, नींबू उद्यान की फसल को ही आपने क्यों चुना?
8: वैसे तो मेरे घर पे जो है, मेरे पैदा होने से पहले से ही नींबू की खेती का मतलब बगीचा लगते आया, समझदारी मैंने ली है। तब से मैं देख रहा हूँ कि मैंने एक जो बगीचा तैयार करा है उसको आज से 8 से 10 वर्ष हो चुके हैं। नींबू का बगीचा चुनने का कारण यह था कि हमारे यहाँ का जो मौसम है, हम दूसरे फलों की बात करें, नींबू की खेती के लिए मतलब बहुत

0: अच्छी अनुकूल पाई गई हमें। नींबू का जो बगीचा जो लगाने के लिए उसको कम से कम पानी की जरूरत पड़ती है, तो हमारे निमाड़ में इस समय तक मतलब 10-15 वर्ष पहले थोड़ा पानी की समस्या भी रहती थी, ये भी हमने नींबू का बगीचा चुना। और नींबू जो है वो हर प्रकार की मिट्टी में लग जाता है, मतलब काली मिट्टी में भी लगा लें, लाल मिट्टी में लगा लें, और
1: जी
0: हल्की रेतीली जो होती है जिसको अपन बलुई टाइप की मिट्टी बोलते हैं
1: जी
0: उसमें भी उसको लगाते हैं, तो उसमें भी अच्छे से आ जाती है। और उसके बाद सबसे खास बात तो ये है कि नींबू के जो बगीचे जो होते हैं उसमें फल साल भर लगते हैं, यानी उसमें तीनों बहारें आती है, अंबे बहार, मृग बहार, हस्त बहार, ये 3-3 महीने 4-4 महीने पे बहार आते हैं, मतलब फ्लावरिंग आता है इसके ऊपर, और इसमें
1: जी
0: भी फल भी आते हैं। तीनों बहार भी आती है जिससे हमें साल भर तक पैसा मिलता रहता है, कमाई अच्छी होती रहती है। जो दूसरे जिसे हम फल की बात करते हैं जैसे कि जाम है या आम है,
1: आम है
0: इसमें पंछी बहुत ज्यादा इनको नुकसान करते हैं, या बंदर वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। नींबू पे न तो पंछी नुकसान करते हैं, न बंदर वगैरह इस प्रकार के कोई जानवर इसको नुकसान पहुंचाता है।
1: नुकसान।
0: मतलब ये सब बातों को ध्यान में रख के हमने फिर नींबू के बगीचे का ही चयन कराया।
1: पुष्पेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि यहाँ की जलवायु जो है, यहाँ की मिट्टी कह लें, सभी तरह से जो है नींबू वो हमारे लिए उपयोगी है। तो आपने ये नींबू वर्गीय जो फसल लगाई है, इसकी कौन सी किस्म को लगाया है और इसमें कौन कौन सी किस्में आती हैं?
0: मैंने जो लगाया है कागजी नींबू हमने लगा रखा है, और इसके अंदर कुछ दूसरी वेरायटियों के भी हमने इसमें समावेश किया है, जैसे ट्रायल के लिए कुछ रखी कि वेरायटी का कैसा परफॉर्मेंस है या वो कैसा है, तो कुछ दूसरी वेरायटियां भी डाली हुई है, सीडलेस है, महानींबू है जिसको महानींबू भी बोलते हैं इस तरह की। पर बाकी नींबू में दो तरह की वेरायटियां होती है, चूंकि हम हमारा आज का विषय ही नींबू की किस्मों पे है, तो मैं आपको थोड़ा इसमें विस्तार से बताना चाहूंगा। इसमें एक तो होता है स्वीट लाइम जिसको बोलते हैं, और एक होता है एसिड लेमन। स्वीट लाइम यानी कि वो उस टाइप का फल होता है जैसे आपने देखा होगा कई बार हम गन्ने की गंडेरी वगैरह खाने जाते हैं तो एक प्रकार का मोटा सा नींबू लेते हैं और वो निचोड़ देते हैं, तो वो उस कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिसमें अपने को खट्टापन कम चाहिए होता है नींबू
1: जी
0: में, वो उसका रस मीठा होता है और उसका गूदा जो है वो एकदम सफेद न होते हुए हल्का सा नारंगी रंग होता है या पीलापन लिए हुए होता है उसके अंदर का गूदा, और फल में बीज बहुत कम होते हैं उसके, और वो फल का आकार बड़ा भी होता है, फल गोल होता है और उसका छिलका जो होता है थोड़ा मोटा टाइप में होता है, और ये फल कम खट्टे होते हैं, तो बेकरी में जब जरूरत पड़ती है जहाँ कम खट्टापन चाहिए और नेचुरल चाहिए और प्राकृतिक रूप से ही खट्टा चाहिए होती है, तो
1: जी
0: उस सबके फलों में या उनकी जगह इसका उपयोग करते हैं, तो वहां पे हम ये स्वीट लेमन को बोलते हैं। और
1: जी
0: उसी टाइप में आता है एक अपना वेरायटी जिसको हम बोलते हैं एसिड लेमन, मतलब
1: जी
0: जिसमें जो अपने रात दिन हम जो नींबू यूज करते हैं उपयोग करते हैं वो आती है, जिसमें
1: जी
0: अपन देखते हैं उसका फल छोटा होता है, रस बहुत ही खट्टा होता है कि अपन जैसे लेते हैं तो बिल्कुल बहुत ज्यादा
1: हाँ
0: कसेलापन टाइप से लगता है, और इसके जो फल लगते हैं वो गुच्छे में लगते हैं, सिंगल भी लगते हैं पर एक ही टहनी में गुच्छे में लगते हैं, और ये जो नींबू की बात कर रहा था स्वीट लेमन, ये इक्के दुक्के फल लगते हैं इसके अंदर, क्योंकि फल
1: जी
0: साइज में बड़ा भी होता है और वजन में भी होता है, और जो खट्टे फल होते हैं इसमें रस भी कम होता है, और रस कम होने के साथ में इसमें गूदा भी कम होता है, और इसमें जो बीज इसके अंदर हमने देखा होगा बीज बड़े बड़े बीज आ जाते हैं, कुछ अगर
1: जी
0: बीज बड़े होते हैं, और वो वाले नींबू होता है स्वीट लेमन इसमें बीज पिचका हुआ होता है और छोटे बीज होते हैं और कम मात्रा में होते हैं। इस तरह से ये दो किस्में चलती है, स्वीट लेमन और एक अपने एसिड लेमन वाली।
1: तो कौन सी किस्म आपने लगाई है?
0: मैंने अपने बगीचे के अंदर कागजी नींबू लगा रखा है, वो लगाने का पीछे उसका उद्देश्य ये था कि वो कागजी नींबू का जो पेड़ होता है ये थोड़ा छोटा होता है, दूसरे पौधों की हम बात करें ये थोड़े हाइट ज्यादा लेते हैं, ये अगर छोटा होता है तो इसको मतलब फल की तोड़ाई करने में बहुत आसानी रहती है, और कटिंग जो होती है काट छाट में जो करना होती है वो आसानी से हो जाती है, और इसमें फल नीचे ही ज्यादातर लगते हैं, तो हम छोटी सी छड़ी वगैरह बना लें, कुछ फलों को अच्छे से जैसे बारिश के समय में कीचड़ में गंदे ना हो तो उसको हम बेड़नी बोलते हैं, तो छोटी सी बेड़नी से भी टूट जाता तो वो हो
1: जी
0: जाता है, और इसका फल दूसरे फलों की अपेक्षा मध्यम आकार का होता है, ज्यादा छोटा भी नहीं होता है और बहुत बड़ा भी नहीं, क्योंकि कुछ वेरायटी ऐसी है जिनके फल बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं जो हमारे उपयोग में नहीं आते हैं, ये
1: जी
0: मध्यम आकार का फल होता है ये, और इसका छिलका जो होता है जो कागजी नींबू का सबसे मेन, तो उसका जो कागजी नींबू का किस्म का नाम का पीछे कारण ही यही है कि उसका जो छिलका जो होता है कागज
1: होता
0: जैसा होता है, इसीलिए इसको कागजी नींबू बोलते हैं, और इसमें गुदे की मात्रा ज्यादा होती है, गुदा
1: जी
0: ज्यादा होगा तो रस भी ज्यादा होगा, तो रस भी ज्यादा मिलता है, छिलका भी चिकना भी होता है, इसलिए उसमें वजन भी अच्छा आता है, तो मांग बाजार में सबसे ज्यादा अधिक इसी की होती है, और सबसे इसमें दूसरी खास बात तो ये तो कागजी नींबू की, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि ये साल भर लगता है, यानी कि इसमें साल भर में तीनों बहारें आती है इसके अंदर, तो आपको जब भी बाजार में मांग हो आपके अपने फल की तो वो हमारी उसकी पूर्ति हम आराम से हो जाती है।
1: जैसे आपने कहा कि मैंने कागजी नींबू लगाया है और उसकी 3 बार तुड़ाई कर लेते हैं, यानी अगर देखे हम किसान की आय की दृष्टि से बहुत अच्छी किस्म है, साल भर में 3 बार इसका उत्पादन मिल जाता है।
0: हमारे खंडवा जिले के लिए तो खासकर कागजी नींबू ही सबसे

0: अच्छा मानता हूं मैं, जो दूसरे किस्मों के बजाय, और हमारे आसपास के बाजार और जो निमाड़ क्षेत्र के लोग जो पसंद करते हैं।
1: पुष्पेंद्र जी, एक और प्रश्न उठता है कि आपने कहा कि ये अपने आसपास अपने क्लाइमेट को देख ले, इसमें 3 बार फल आते, तो कुछ विशेष इसकी देखभाल की भी आवश्यकता होती है?
0: हाँ, इसमें आवश्यकताएं तो होती है, देखभाल तो इसमें लगती रहती है, जिसमें इसकी एक तो कटिंग आ जाती है, सिंचाई भी इसमें आती है कि इसकी सिंचाई कब कब करें, क्योंकि इसमें जैसे हम बगीचे की बात कर रहे हैं तो बगीचे में की जाने वाली हर प्रकार गतिविधि का बहुत अपना एक विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर हमने कटिंग इसकी गलत समय पे करी है तो हमें जो फल चाहिए होता है, खासकर गर्मियों में जिसमें सबसे अधिक मांग होती है नींबूओं की, तो उस समय फल लेट हो जाएगा अगर कभी हमने इसने गलत समय पे कटिंग कर दी है। जल्दी कटिंग कर दी तो फल जल्दी आके खत्म हो जाएंगे, और अगर लेट कटिंग करी तो जब हमें गर्मी में फल चाहिए तब ना आते हुए बारिश के समय में फल लगेंगे तो हमें बाजार भाव कम मिल सकता है। तो कटिंग की बात हो गई, उसके बाद हम अगर इसकी बात करें तो इसमें रोग वगैरह की बात करें तो एक रोग की समस्या का अगर नियंत्रण नहीं करा तो उससे बाजार में भी इफेक्ट पड़ जाएगा। सिंचाइयां इसमें ऐसी होती है, उससे पहले ही इतने चर्चा में कहा कि ये जो नींबू की किस्म जो है ये कम वर्षा में भी क्षेत्रों में भी अच्छे से आ जाती है, क्योंकि हमारे निमाड़ में बारिश का औसत 750 mm से कम होता है जी। तो इसी प्रकार से हमारे कम बारिश होती है तो हमारा जल स्तर वगैरह जो है गर्मियों में जल की उपलब्धता जो है वो कम होती है, तो उस आधार पर ये हमारे से थोड़ा कम में आ जाता है।
1: हम कह सकते हैं कि लागत भी लगभग कम ही होती होगी, क्योंकि हमारी जलवायु और कम पानी में उत्पादन हो जाता है, तो इसमें सिंचाई की उतनी आवश्यकता नहीं रहती होगी।
0: हाँ, मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें गर्मी के दिनों में हम प्रति सप्ताह के लगभग 7 दिन के अंदर भी एक बार सिंचाई कर रहे हैं तो भी चल जाएगा, और ऐसा तो आजकल ड्रिप सिस्टम हो गया है तो हम हर व्यक्ति ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। तीसरा एक चीज ये हो जाती है कि इसमें सिंचाई हम जब करते हैं उसके 15 से 20 दिन के बाद में इसके अंदर नई शाखाओं का फूटना शुरू होता है गर्मी के लिए खासकर, तो हमें सिंचाई को उसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कब उसमें शाखाएं फूट रही है, कब उसमें फल आ रहे हैं, तो कब सिंचाई की जाए, कब उसको खाद दिया जाए। अगर हम नत्रजन यानी नाइट्रोजन वाला खाद अगर हम उसको अगर फ्लावरिंग के स्टेज पे दे देते हैं तो उसमें फूल झड़ जाते हैं और पौधा फिर ग्रोथ करने लग जाता है, तो हरियालीपन और पत्तियां ज्यादा होती है, फल नहीं बनता है। इसलिए जो देखभाल की बात करें तो देखभाल में हमें हर बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इसको खाद कब देना है, सिंचाई कब देना है, इसकी कटिंग कब करना है, इसमें किस प्रकार के रोग लगे हैं, और रोग लगने से पहले दवाओं का उपयोग और कीटों को रोकथाम का उपयोग, तो इसलिए हर प्रकार की गतिविधि पे विशेष ध्यान देके काम करना पड़ता है।
1: और पुष्पेंद्र जी, जैसे आपने कहा जो आपको उत्पादन मिलता है, तो क्या प्रत्येक उत्पादन के बाद इसकी कटिंग की आवश्यकता होती है?
0: नहीं, इसकी कटिंग जो है सबसे मुख्य चीज इसमें यही है कि पौधे के अंदर फल कहाँ पे लगता है, शाखाओं पे, और शाखाएं होती है कटिंग के बाद। हम इसको साल भर में एक बार या दो बार ज्यादा से ज्यादा कटिंग कर सकते हैं, जिससे हम गर्मी में फल ले लेते हैं, फल लेने के बाद में बरसात शुरू होने के लगभग कटिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके बाद ये मैं जो अगली बार जो फल आएगा, बारिश में जैसी कटिंग होती है गर्मी के समय में और बारिश पर एक होती है सितंबर के महीने में, जो अभी जो चल रहा है इस महीने में, इसमें अगर हम अभी कटिंग करते हैं तो इसके 3 महीने या 4 महीने के बाद में इसमें फूल के बाद फल आ जाएंगे, जैसे कि हमारे गर्मी का मौसम शुरू होगा उसके पहले फल शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए हमें इसकी कटिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ता है।
1: ये तो हम कागजी नींबू की बात कर रहे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे आप कई वर्षों से खेती से जुड़े हुए भी हैं, तो आपने ये जो कागजी नींबू लगाए, इसके अलावा भी कभी आपने संकर या विदेशी किस्म, जो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा नींबू आता है, एक संतरे के बराबर पे हम देख रहे हैं कि आज नींबू की साइज है, तो इन किस्मों के बारे में आपका क्या विचार है?
0: आपने जो बड़े नींबू के बारे में पूछा है तो मैं आपको बता दूं, इस जो किस्म होती है इसमें दो तरह की किस्म है अपनी अपने यहाँ चलती, एक जिसको बोलते हैं सीडलेस, तो मतलब उसके अंदर बीज नहीं आता, बीज रहित नींबू होता है, उसका आकार इसी प्रकार से बड़ा होता है, और दूसरा होता है महानींबू बोलते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि नींबू संतरे के आकार का होता है और संतरे जैसा ही मतलब खुरदुरा त्वचा वाला और मोटे छिलके वाला होता है, तो ये उस तरह का होता है। और रही बात नींबू के मतलब और भी किस्मों के बारे में कागजी नींबू के अलावा, तो बहुत सारे अच्छी हमारे भारत में है, और खासकर नागपुर महाराष्ट्र वाले जो नागपुर में जहाँ पे सिट्रस फल जो होते हैं, नींबू वर्गीय पौधों के ऊपर जो केंद्र है जहाँ पे अनुसंधान क्या होता है, वहाँ से कई प्रकार की वेरायटियां निकली है, जिसमें अपन देखते हैं जैसे एक बालाजी है, बालाजी वेरायटी भी एक आती है नींबू की, वो भी बहुत अच्छी है, नागपुरी नींबू होता है वो भी बहुत बढ़िया नींबू होता है। उसके बाद सीडलेस के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि आकार में बड़ा होता है, ये स्वाद में कम तीखापन होता है, मतलब खट्टा कम होता है ये। फिर एक होता है कुंभकाट नींबू होता है, ये सबसे अधिक उत्पादन देने वाली वेरायटी होती है कुंभकाट वाली नींबू। इस तरह की ये वेरायटियां हैं जो हमारे मध्य भारत में भी और महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है। और विदेशी किस्म के बारे में बात करें तो वो विदेशी किस्मों का जो जलवायु है और जो फलों का स्वाद है, फलों का आकार है, फलों का वजन है, ये हमारे जलवायु के अनुकूल नहीं है।

0: जिसमें अंगूर आता है, एक लिस्बन करके वेरायटी आती थी बहुत, वो भी अच्छी वेरायटी मानी जाती है, लेकिन पर उनका उत्पादन हमारे यहाँ पे नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो बहुत गर्मी होती है, जिसमें इस टाइप की वेरायटियों के अंदर बिल्कुल भी गर्मी सहन करने या पाला सहन करने की क्षमता नहीं होती, तो इसलिए हम इन किस्मों का चयन नहीं करते।
1: जैसे आपने बताया कि किस्मों का उत्पादन तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे अनुकूल जलवायु भी उस तरीके की नहीं है और उसकी मांग भी कम है।
0: जी
1: और भी कई प्रकार की जो किस्में हैं
0: जी
1: उसमें भी समस्याएं आती है क्या, और ये इससे कृषक को कहीं हानि की संभावनाएं होती है?
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा है तो एक बुरा भी होता ही है। तो मैं दूसरे पहलू के पर बात करूँ तो इसमें दो चीजें आती है, जिसमें एक रोग की बात करें और एक कीटों के बारे में बात करें। तो उसके अंदर जो किसी भी प्रकार के अधिकतर जो किस्म जो लगाते हैं, तो हर किस्म के अंदर दो जो है रोग, जिनसे हर कृषक को मतलब समस्या आती है और कृषक ने उस समस्या का सामना हमेशा किया ही किया है। जिसमें सबसे पहले आता है कैंकर रोग, जिसमें क्या होता है कि फल के ऊपर आपने देखा होगा कि एक भूरे रंग के और गेरुआ रंग के धब्बे पड़ जाते हैं उसके ऊपर, पत्तों पे भी आ जाते हैं, तने पे भी, पेड़ पे भी दिखते हैं और फल पे भी दिखते हैं। छोटा मोटा होता है तो ठीक है ढक जाता है, अगर बड़ा वगैरह होगा पौधे के फल के ऊपर अधिक मात्रा में वो लग गया तो फिर वो बाजार में बेचने लायक की स्थिति में नहीं रहता है, तो इसको हम कैंकर रोग बोलते हैं। ये रोग जो है ये हमेशा समस्या देते ही देता है, तो इसके लिए जब पौधा जो होता है फल लगने की शुरुआत जैसे होती है इसके पहले ही इसकी रोकथाम करना होती है। इसके लिए हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का उपयोग, हम एंटीबायोटिक होता है, जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें पैरासिटामोल दवाई तो देता है बुखार कम करने के लिए और बुखार को खत्म करने के लिए एक एंटीबायोटिक दवाई या इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। उसी प्रकार पौधे में भी रोग आने से पहले ही इसको एक एंटीबायोटिक का स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का हम प्रयोग करते हैं, और फिर इसके अलावा जो और भी दूसरे रोग आते हैं जिसके लिए हम COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC करके जो आता है एक इसका भी स्प्रे करते हैं, इससे इसके अंदर दूसरी और भी समस्या होती है उनका भी प्रभावी नियंत्रण मिलता है। एक तो कैंकर रोग हो गया था, दूसरा रोग होता है इसमें डायबैक। डायबैक रोग जो होता है ये लगभग हर किस्म में भी देखा ही गया है, इसमें यह होता है कि टहनी ऊपर से नीचे की ओर सूखना शुरू होती है, तो और जब वो टहनी सूख जाएगी जिसके लिए हमने फल जो अगर टहनी देगी तो हम फल किस पे लगाएंगे, फल नहीं होगा तो हमारा फूल किस पे आएंगे, फूल नहीं होगा तो फल किस पे लगेंगे, जिससे हमारा उत्पादन प्रभावित होगा। तो इसलिए ये दो रोग जो है ये बहुत ज्यादा समस्या खड़ी करते हैं हम किसानों के लिए। और कीटों के बारे में अगर हम बात करें तो कीटों में भी दो तरह के कीट जो है वो थोड़ा ज्यादा नुकसान करते हैं। एक होता है नींबू की तितली, ये जो नींबू की तितली होती है ये पत्तियों को खाती है और इसके खाने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसकी क्षमता मतलब इतनी ज्यादा है कि ये मतलब अगर छोटा सा पौधा अगर नर्सरी अगर हमने तैयार करी तो इसके पूरे पत्ते को दो दिन में ही खा जाएगी। अगर पौधे में पत्तियां नहीं रहेगी तो भोजन कैसे बनाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, पौधा सूख जाएगा, तो एक वो समस्या आ जाती है अगर कभी इसकी ज्यादा मात्रा में हो गई है। और उसी प्रकार से एक मकड़ी होती है जो मकड़ी जाला बनाती है, वो जाला इस प्रकार से बनाती है कि पत्तों को गुच्छों को मतलब जाले में कर लेती है, अगर वो जाले में अगर आ जाएंगे तो फिर पत्ते के ऊपर फूल नहीं आएंगे और फल भी नहीं आएंगे जो हमारे उत्पादन को फिर प्रभावित करेंगे। तो ये दो प्रकार के कीट और ये कुछ रोगों से समस्या हर किसान को आती है।
1: उपेंद्र जी, आप हमारे किसान भाइयों को इन समस्याओं से निदान करके एक अच्छा उत्पादन किसान कैसे प्राप्त कर सकता है, हमारे किसान भाइयों का अंत में ये बता दीजिए।
0: किसानों को यही बताऊंगा, नर्सरी से कभी भी पौधा खरीदें तो विश्वास पात्र नर्सरी से ही खरीदें, क्योंकि समस्या ये हो जाती है कि कई बार हमको फ्री में कोई पौधा दे गया है या कहीं से उखाड़ के ले आए हैं या कहीं से और बीजों को कोई सा भी कहीं से मिल गए फ्री में तो उखाड़ के ले आए या कुछ भी हो जाए जैसे भी, तो हम अगर इसकी मेहनत करें 2-3 साल मेहनत करो पता चला कि फल बिल्कुल एकदम छोटे छोटे गोटियों जैसे हो गए हैं तो हमारी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए अगर हम कभी व्यवस्थित और अच्छी प्रमाणित नर्सरी पौधे खरीद के लेकर आएंगे तो उसके बाद में हमें उत्पादन प्रॉपर मिलेगा तो हमारे पास उम्मीद और हमें लाभ भी अच्छा सा मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले ये कि कभी भी पौधा या बगीचा लगाए तो किसी अच्छी नर्सरी से पौधे लेके खरीदें। और किस्मों के चयन की मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि फल भले कम हो लेकिन फल की मांग बाजार में बनी रहना चाहिए। जैसे मैंने अभी एक बात करी थी कुंभकाट नींबू की वैरायटी के ऊपर में, तो ये जो फल होता है ये बहुत अच्छा उत्पादन देती है, ये 4 साल में ही कम से कम इसके 4 वर्ष का जो पौधा होता है उसपे कम से कम 15-20 किलो और 5 वर्ष या 6 वर्ष में ही कम से कम 30 किलो के ऊपर फल उत्पादन देना चालू कर देता है प्रति पौधा। तो इसका जो फल होता है इस फल का जो छिलका बहुत पतला होता है और ये बहुत जल्दी सड़ जाता है, और इसमें ऐसा होता है कि हमारे जो दूसरा कागजी नींबू है जैसे अगर हम तोड़ते हैं और इसको हमको 8 दिन तक भी अगर हम कभी किसी ट्रक में गार्डन में रख के यहाँ से बाहर पहुंचाना हो तो पहुंचा सकते हैं, और दूसरी जो वैरायटी जिसे मैंने बताया उनको वैरायटियों की नींबू में ट्रांसपोर्टिंग यानी इसको बोलते हैं ट्रक गार्डनिंग, इसकी क्षमता कम होती है। तो हमें ऐसे फलों का जो कि उत्पादन उसका अधिक है पर उसकी मांग कम होती है दूसरा ये कि फल ऐसे होना चाहिए, जैसे हमने कागजी नींबू की बात करी, इसमें तीनों बहारें आती है और कुछ वेराइटियों में ऐसा होता है जो वर्ष में एक या दो बार ही फल आते हैं। हाँ, दूसरा ये है कि इसमें रोग कम लगे, इसमें हमें स्प्रे कम करना पड़े।

0: पौधे की हाइट कम होना चाहिए, जिसमें कटिंग शटिंग कम की आवश्यकता कम हो, अधिक होगी तो कटिंग ही करते रहेंगे बार बार, तो हमें लागत बढ़ेगी, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा आएगा। तो इन सब बातों को विशेष ध्यान रख के किसी भी किस्म का चयन करें, और खासकर अपनी जलवायु को देखते हुए।
1: पुष्पेंद्र सिंह मौर्य, आपने नींबू के बगीचे के लिए किस्म का चयन कैसे करें, इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: भाई बहनों। ने अभी सुनी रहा था भेंट वार्ता, विषय तो नींबू की किस्मों का चयन। इना विषय पर प्रगतिशील कृषक पुष्पेंद्र मौर्य से सीमा कराए की बातचीत सुनी रहा था। भाई बहनों ने खेत की मिट्टी का अप्रैल माह या मई माह में मिट्टी पलटना का हल की सहायता से गहराई पलटना ही ग्रीष्मकालीन जुताई कहे जाए। बार बार गहराई पर जुताई करने से कठोर परत की तहत ख तोड़ी करना जड़ को विकास को अनुकूल बनाने में लाभदायक रहे। ग्रीष्म काल में जुताई हर 3 वर्ष में एक बार जरूर करनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन जुताई लगभग 9 से 12 इंच गहरी करनी चाहिए और खेत की जुताई खेत की ढाल का विपरीत दिशा में करनी चाहिए। फसल कटाई के बाद खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। एकालेना फसल की कटाई का तुरंत बाद जुताई करने कार्य करनी चाहिए। गहरी जुताई करता समय खेत की मिट्टी का बड़ा बड़ा ढेला बननी चाहिए। एका ढेला सी वर्षा जल जमीन के अंदर अधिक मात्रा में जाए, जेका सी भूमि को जल स्तर में वृद्धि हो। हल्की और रेतीली जमीन में ज़्यादा जुताई नहीं करनी चाहिए। एका सी मिट्टी की भुरभुरी भी जाए और हमारा बरसात सी मिट्टी को कटाव भी बढ़ जाए। जुताई के बाद खेत के चारों ओर उठी हुई मेड़ बनाने से वायु जल द्वारा मिट्टी को कटाव नहीं होता ही और खेत वर्षा जल का सोख तो लेज। जुताई से मिट्टी का भौतिक गुण में सुधार हो और मिट्टी का हानिकारक लार्वा अंडा भी नष्ट हो जाए। देखा लेना भाई बहन होनी, हमका हमारा खेत में जुताई जी छे एक नियमित अंतराल से करता रहना चाहिए। और हम आपको बता देवा आज का कृषि समाचार के बारे में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसान भाई बहन का लेना डबल कमाई का लेना अच्छो विकल्प छे, जेका सी किसान भाई कम लागत में अच्छी आमदनी अर्जित कर सकेगा। साथ ही इन्हीं योजना का तहत शासन मछली पालन से जुड़ा उपकरण और ट्रेनिंग का लेन आर्थिक सहायता देज। इन्हीं योजना में लोन सुविधा सामान्य वर्ग का किसान भाई का लेना 40% तक सब्सिडी मिले और महिला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का किसान भाई बहन के लिए 60% तक की सहायता प्रदान करी जाए। तो ये था आज का कृषि समाचार। हम आपको बता दें आज का मौसम जानकारी के बारे में, आज को अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज सूर्य उदय 5:31 पर हुई और सूर्यास्त 6:41 पर हुई। ये था आज का मौसम जानकारी। अब सुनी लिया एक निमाड़ी लोकगीत जेका गाय गंगाबाई मसानी और साथीना।

भाई बहनों ने कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न पूछे थो, मूंग की फसल ख सफेद मक्खी से कसा बचाव करा। देखो उत्तर छे, सफेद मक्खी की पत्ती न की निचली सतह पर रही कना रस चूसस और साथ ही मूंग का पीला मोजेक वायरस का फैलावत। एक लेना एसीटामिप्रिड 20% 50 से 80 ग्राम ख 150 से 200 लीटर पानी का साथ पौधा पर छिड़काव करना चाहिए।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। भाई बहनों ने एका साथ है किसान वाणी कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने जा रहा है, तो देव आज्ञा। आपका भाई ओम प्रकाश चौरेखा, राम राम।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां, पत्नी का पत्र। इस कहानी का चौथा और अंतिम भाग लीजिए आज प्रस्तुत है। वाचन स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का।

दोस्तों, पिछले हफ्तों में आपने सुना, बिंदु का रंग काला होने से उसके विवाह में अड़चनें आती हैं, लेकिन एक पागल व्यक्ति से उसका विवाह तय हो जाता है। बिंदु कतई नहीं चाहती शादी करना, लेकिन उसकी शादी एक पागल व्यक्ति से हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो मृणाल के घर वापस शरण लेती है, लेकिन उसके ससुराल से उसके जेठ आते हैं और हंगामा खड़ा करते हैं। अब आगे। मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ता था। तुम तो जानते हो, तरह तरह से वॉलेंटियरी करना, प्लेग वाले मोहल्लों में चूहे मारना, दामोदर में बाढ़ आ जाने की खबर सुनकर दौड़ पड़ना, इन सब बातों में उसका इतना उत्साह था कि एफए की परीक्षा में लगातार दो बार फेल होने पर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद, जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे ही करना पड़ेगा। बिंदु को मुझे चिट्ठी भेजने का साहस नहीं होगा, वो भेजे भी तो मुझे मिल नहीं सकेगी। शरद के साथ बातचीत कर रही थी तभी तुमने मेरे कमरे में आकर कहा, तुम फिर ये क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हो? मैंने कहा, वही जो शुरू से करती आई हूं, जब से तुम्हारे घर आई हूं। लेकिन नहीं, वो तो तुम्ही लोगों की कीर्ति है ना। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहीं छिपा रखा है क्या तुमने? मैंने कहा था, बिंदु अगर आती तो मैं जरूर छिपा कर रख लेती, लेकिन वो अब नहीं आएगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहाँ आना जाना तुम लोगों को

0: पसंद नहीं है। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नजर है, अगर कभी किसी राजनीतिक मामले में फंस गया तो तुम्हें भी फंसा डालेगा। इसीलिए मैं भैया दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसी के पास भिजवा देती थी, अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमसे सुना कि बिंदु फिर भाग गई है, इसीलिए उसका जेठ हमारे घर उसे खोजने आया है। सुनते ही मेरी छाती में शूल चुभ गया। अभागिनी का असह्य कष्ट तो मैं समझ गई, पर फिर भी कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। शरद पता करने दौड़ा। शाम को लौटकर उसने मुझसे बोला, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर उसी वक्त उसे फिर ससुराल पहुंचा दिया। इसके लिए उन्हें हर जाने का और गाड़ी के किराए का जो दंड भोगना पड़ा, उसकी खार अब भी उनके मन से नहीं गई है। श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहाँ आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति ये श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें इस बात का भी ध्यान था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे मारे तुम्हें बड़ी परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना था, रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाकर कहा, जैसे भी हो बुधवार को पूरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना पड़ेगा। शरद का चेहरा खिल उठा था। वो बोला, डर की कोई बात नहीं जीजी, मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पुरी तक चला चलूंगा, इसी बहाने जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है शरद, शायद कोई रास्ता नहीं निकला। वो बोला, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने पूछा, क्या उसे राजी नहीं कर पाए? उसने कहा, जी जी अब ज़रूरत भी नहीं है। कल रात अपने कपड़ों में आग लगाकर वो आत्महत्या करके मर गई। चलो छुट्टी मिले। बिंदु! गांव भर के लोग चीख उठे, कहने लगे, लड़कियों का कपड़ों में आग लगा कर मर जाना तो अब एक फैशन सा हो गया है। तुम लोगों ने कहा, अच्छा नाटक है। ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही तनिक भी यश नहीं मिल सका, न रूप का न गुण का। मरते वक्त भी ये नहीं हुआ कि सोच समझकर कुछ ऐसे नए ढंग से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। बिंदु!
1: आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर।
0: जीजी कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी, लेकिन उस रोने में जैसे एक सांत्वना। कुछ भी सही, जान तो बची, मर गई, यही क्या कम है? अगर बची रहती तो न जाने क्या क्या हो जाता। मैं तीर्थ में आ पहुंची हूं, बिंदु के आने की तो जरूरत ही न रही, लेकिन मुझे जरूरत थी। लोग जिसे दुख मानते हैं वो तुम्हारी गृहस्थी में मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारे यहाँ खाने पहनने की कोई कमी नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कट जाते और मैं अपनी सती साध्वी बड़ी जेठानी की तरह पति देवता को दोष देने की बजाय विश्व देवता को ही दोष देने की चेष्टा करती। इसलिए मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण

ये नहीं है, लेकिन मैं अब माखन बड़ाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौटकर नहीं जाऊंगी। मैं बिंदु को देखती हूँ। इस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है ये मैं पा चुकी हूँ। अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। और फिर मैंने ये भी देखा है कि वो लड़की ही क्यों न हो, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। उस पर तुम लोगों का चाहे कितना ही जोर क्यों न रहा हो, वो उसका अंत नहीं था। वो अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी। तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उनसे दबा कर रख सकते। मृत्यु तुम लोगों से भी बड़ी है। अपनी मृत्यु में वो महान है। वहां बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल चचेरे भाइयों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागल पति की प्रवंचिता पत्नी नहीं है। वहां वो अनंत है। मृत्यु की उस वंशी का स्वर उस बालिका के भग्न हृदय से निकलकर जब मेरे जीवन की यमुना के पास बजने लगा, तो पहले पहल मानो मेरी छाती में कोई वाण बिंध गया हो। मैंने विधाता से प्रश्न किया, भगवन, इस संसार में जो सबसे अधिक तुच्छ है वही सबसे अधिक कठिन क्यों है? इस गली में चार दीवारी से घिरे इस निरानंद स्थान में ये जो तुच्छतम बुदबुद है वो इतनी भयंकर बाधा कैसे बन गया? तुम्हारा संसार अपनी षट नीतियों से क्षुधा पात्र को संभाले कितना ही क्यों न कोई पुकारे, मैं उस अंतपुर की जरा सी चौखट को क्षण भर के लिए भी पार क्यों नहीं कर सकी? ऐसे संसार में ऐसा जीवन लेकर मुझे इस अत्यंत तुच्छ काठ पत्थर की आड़ में ही तिल तिल कर क्यों मरना होगा भला? क्यों? कितनी तुच्छ है ये मेरी प्रतिदिन की जीवन यात्रा, इसके बंधे नियम, बंधे अभ्यास, बंधी हुई बोली, बंधी हुई मार, सब कुछ कितनी तुच्छ है। फिर भी क्या अंत में दीनता के उस नागपाश बंधन की जीत होगी? और तुम्हारे अपने इस आनंद लोक की, इस सृष्टि की हार? लेकिन मृत्यु की बंसी बजने लगी। कहाँ गई राजमिस्त्रियों की बनाई हुई वो दीवार? कहाँ गया तुम्हारे घोर नियमों से बंधा वो कांटों का घेरा? कौन सा है वो दुख, कौन सा है वो अपमान मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है? ये लो, मृत्यु के हाथ में जीवन की जय पताका उड़ रही है। अरे मझली बहू, तुझे डरने की अब कोई जरूरत नहीं। मझली बहू के इस तेरे खोल को छिन्न होते एक निमेश भी नहीं लगा। तुम्हारी गली का अब मुझे कोई डर नहीं। आज मेरे सामने नीला समुद्र है, मेरे सिर पर आषाढ़ के बादल। तुम लोगों की रीति नीति के अंधेरे ने मुझे अब तक ढक के रखा था। बिंदु ने आकर क्षण भर के लिए उस आवरण के छेद में से मुझे देख लिया। वही लड़की, अपने मृत्यु द्वारा सिर से पैर तक मेरा वो आवरण उघाड़ दिया। आज बाहर आकर देखती हूँ, अपना गौरव रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। मेरा ये अनाहत रूप, जिनकी आंखों को भाया है वे सुंदर आज संपूर्ण आकाश से मुझे निहार रहे हैं। अब मछली बहू की खैर नहीं। तुम सोच रहे होगे मैं मरने जा रही हूँ। नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तुम लोगों के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मीराबाई भी तो मेरी ही तरह नारी थी। उनकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं थी। मीराबाई ने अपने गीत में कहा था, बाप छोड़े माँ छोड़े जहाँ कहीं भी जो भी हैं

लेकिन मीरा की लगन वहीं रहेगी प्रभु। अब जो होना है सो ये लगन ही तो जीवन है। मैं अभी जीवित रहूंगी, मैं बच गई हूँ, जीवित रहूंगी मैं, जीवित रहूंगी। तुम लोगों के चरणों के आश्रय से छूटी हुई मैं जीवित रहूंगी।

0: सुनो कहानी में इन दिनों आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ, पत्नी का पत्र। इस कहानी का ये था चौथा अंतिम भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
1: सुनो कहानी।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म सूबेदार से, आवाज़ जी डी कौर की थी। गीत के बोल यंगवीर, रोहिताश और गैक्सिनिया की थी। संगीत ऋत्विक और शाइन और राज मावेर का था।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म ओ रोमियो से। आवाज़ें सुखविंदर सिंह, रेखा भारद्वाज की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत विशाल भारद्वाज का।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: समय एक छोटे से अंतराल का, शेष कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म पुष्पा टू द रूल से। आवाज़ जावेद अली और मधुबंती बागची की थी। गीत के बोल रकीब आलम, सिजू थरवूर के थे। संगीत देवीश्री प्रसाद का था।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए

0: एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्गति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता

0: सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047, जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से

0: मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउसिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित 2047 की ओर एक कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली मियांनगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेको से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का

0: रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म भूल भुलैया 2 से। आवाजें अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत प्रीतम का।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। एक अभिनेत्री जो अपने अभिनय की शुरुआत स्कूल और कॉलेज के थिएटर से करती है, धीरे धीरे टीवी सीरियल की ओर बढ़ती है, बॉलीवुड में आकर अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाती है और आज OTT की क्वीन कहलाती है, वो है शेफाली।

बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 22 मई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी शेफाली बचपन से ही अभिनय करना चाहती थीं। वे एक मॉडल, अभिनेत्री और चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं।

उनके पिता का नाम सुधाकर शेट्टी और माता का नाम शोभा शेट्टी है। वे अपने माता पिता की इकलौती लाडली संतान हैं और उनका पालन पोषण एक गैर फिल्मी पृष्ठभूमि में हुआ। साल 2000 में उन्होंने निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह से शादी की, जिनके साथ उनके दो बेटे आर्यमन और मौर्य हैं।

0: निभाना हो।
1: शेफाली शाह का अभिनय करियर गुजराती मंच से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें कला की ओर बहुत झुकाव था, जिसमें गायन और नृत्य शामिल थे। उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया। उनकी अभिनय यात्रा 10 वर्ष की आयु में गुजराती मंच पर किए नाटक द ओमेन से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने डेमियन थॉर्न पर आधारित चरित्र को बखूबी निभाया। इंटर कॉलेजिएट नाटकों में काम करने के साथ साथ उन्होंने गुजराती रंगमंच में काम करके अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दे दिया था।

शेफाली शाह ने थिएटर करने के बाद साल 1993 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। बनेगी अपनी बात सीरियल से छोटे पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया, फिर आरोहण, हसरतें, पतझड़, कभी कभी, सी हॉक्स, राहें और रामायण जैसे सीरियलों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेफाली शाह कमाल की एक्ट्रेस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उनके नाम 25 से ज्यादा फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में उनका काम बोलता है। उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी।

1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीकू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज बाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला। होय होय।

फिल्म सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में शेफाली को एक

ठीक एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त माँ की थी जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला। अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाल दी।

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माय फादर का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया, जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं, और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आती है।

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्यालय की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आई। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

करण मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घायवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है।

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कमल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

सैफ अली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, सैफ अली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में सैफ अली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत के रीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड्स मिले। शेफाली ने सर्व

इस फिल्म को जसमीत के रीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड्स मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच सांठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों समडे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार है और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी, ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

0: तेजश्री कांबली।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

आइए छाया गीत सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। कहते हैं जिसे मोहब्बत हो गई उसे अपने महबूब के अलावा दुनिया में कुछ नजर नहीं आता। इश्क में डूबे इंसान को अपने महबूब की हर चीज दुनिया जहान की सबसे खूबसूरत चीज नजर आती है। उसकी मासूमियत, उसकी सादगी, नाजुकी, उसका हुस्न, उसकी नजरें। जिसने तेरी नजर को देख लिया उसको दुनिया नजर नहीं आती। सच उन्हें देखकर ये लगता है जैसे हर अधूरी मोहब्बत मुकम्मल हो गई हो।

तसव्वुर एक जहनी जुस्तजू का नाम है शायद। ये दिल उनको ढूंढ कर लाता हुआ महसूस होता है। उनकी बातें मुझे खुशबू की तरह लगती हैं, फूल जैसे कोई सहरा में खिला करता है। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। मुझको महबूब है आपकी हर अदा, तू मेरा रंग है, तू मेरा रूप है, मेरी छांव है तू, मेरी धूप है तू। जिनकी यादों से रोशन है मेरी आंखें, जिनकी यादों से रोशन है मेरी आंखें, दिल कहता है, उनको भी मैं याद आता हूँ।

अब तक मेरी यादों से मिटाए नहीं मिटता, भीगी हुई एक शाम का मंजर, तेरी आंखें। आप इश्क में हैं और दिल में जख्म ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन तमाम दर्द और जख्म के बाद भी दिल लगाना भला कौन छोड़ पाता है। जख्म झेले, दाग भी खाए बहुत, दिल लगाकर हम तो पछताए भी बहुत। वो तमाम पन्ने जिन पर लिखी है तेरी मेरी कहानी, सच कहूं इश्क हो जाएगा मेरी दास्ताने इश्क से। रात भर जागा करोगे इस कहानी के लिए।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मुद्दत के बाद आज उसे देखकर एक बार दिल तो धड़का मगर फिर संभल गया। उनके आने के बाद भी देर तलक उनका इंतजार रहा। कभी चांदनी रातों में तेरे ख्वाबों में खो जाते थे हम, अब अकेले रातों में तेरी यादों में बिखर जाते हैं हम। शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ, दिल ही काफी है तेरी याद में जलने के लिए। उजड़ उजड़ कर संवरती है तेरे हिजर की शाम, उजड़ उजड़ कर संवरती है तेरे हिजर की शाम। न पूछ कैसे गुजरती है तेरे हिजर की शाम।

न जाने क्यों हमें इस दम तुम्हारी याद आती है, जब आंखों में सितारे चमकते हैं शाम से पहले। दिल की चाहत होती है तुम बैठो कुछ देर हमारे सामने यकीन के लिए। दवा जरूरी तो नहीं हर वक्त सुकून के लिए। तुम्हें पता है जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है। ये शाम की तन्हाइयां तेरी यादों के काफिले, एक कसक, एक टीस, एक सूनापन, एक अधूरी सी आहट। दर्द खामोश रहा, टूटती आवाज रही। दर्द खामोश रहा, टूटती आवाज रही। मेरी हर शाम तेरी याद की हमराज रही।

जुगनू जले बुझे मेरी पलकों पे सुबह तक, जब भी तेरा ख्याल सरे शाम आ गया। एक ही मिट्टी से हम दोनों बने हैं, तुझ में और मुझ में मगर फासला यूं कितना है। पूछते हो तो सुनो, है और तो कोई सबब उसकी मोहब्बत का नहीं, बात इतनी है कि वो मुझसे जफा करता है। वो मुझको टूट के चाहेगा, छोड़ जाएगा, मुझे खबर थी उसे ये हुनर भी आता है। कब लौटा है बहता पानी, बिछड़ा साजन, रूठा दोस्त, हमने तो उसको अपना जाना जब तक हाथ में दामा था। वक्त के बदलने से दिल कहाँ बदलते हैं जाना, वक्त के बदलने से दिल कहाँ बदलते हैं जाना, आपसे मोहब्बत थी, आपसे मोहब्बत है।

काश कोई होता। साथियों, इन्हीं अफसानों के साथ पूरा होता है आज के छाया गीत का सफर। गीत संगीत की ऐसी ही सुरीली महफिल में फिर होगी मुलाकात। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। प्राइम मिनिस्टर